जी के दरबार में विभीषण ने ताना मारा, हे बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और सीना फाड़ डाला।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपियो जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: BMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में JPSC और JSSC उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
3: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी CGL को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने JSSC CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
2: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और JPSC JSSC न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की CBI जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद JSSC CGL के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। भविष्य रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमेरिकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
6: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर B.R. अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री V.D. सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
7: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति M. पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
8: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी टेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
2: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
9: धन्यवाद मुनीश। देश के राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद NTA ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Jharkhand government cancels JSSC CGL examination after 24-day students protest.
11: Sustain your love.
12: Hum jab bhi milte hain, it's like falling in love all over again.

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल

0: 9760304534।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
2: दो दिन मिलना कैसे कर लेते हो यार? हाउ टू सस्टेन योर लव?
3: हम जब भी मिलते हैं इट्स लाइक फॉलिंग इन लव ऑल ओवर अगेन।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: कहा मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। बिंदास मॉर्निंग शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राम राम जी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज का मौसम भी बहुत ही औसम है। समय की बात करूं तो 8:00 यानी कि 23 मिनट हो चुके हैं और बहुतों की अभी आंखें यही कह रही है, बस यार थोड़ी देर और सो लेते हैं, उसके बाद उठते हैं, क्योंकि आज का मौसम कुछ ज्यादा ही सुहाना है। यानी कि रात भर की अगस्त की सुबह, रात भर की बारिश, मौसम भी आज कुछ सुहाना सुहाना है। कहीं रिमझिम फुहारे, कहीं बादलों की आवाज। इसी खूबसूरत मौसम के साथ आपकी अपनी आरजे रीना भी आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है श्रोताओं, बिंदास मॉर्निंग शो में। यानी कि 2 घंटे आप सभी के साथ रहने वाले हैं, ढेर सारी बातें करने वाले हैं। आखिरकार अपने शहर से लेकर यानी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। हलचल मचने वाला है सच में, और गाने आए हाय आपके पसंद के ही होंगे श्रोताओं, सो बिंदास रहिए। और साथ ही साथ चाय की चुस्की हो या बारिश की बूंदे, बस रेडियो का वॉल्यूम आपसे यही कहना चाहता है कि यार हल्का सा बढ़ा लो और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर बिंदास हो तो पूरा दिन अपने आप शानदार हो जाता है। और आज की तारीख 18 अगस्त, इस बारिश वाले सुबह को बनाते हैं एकदम बिंदास और गाना सुनते हैं एक और झकास वाला श्रोता, और फिर आप सभी के साथ कनेक्ट रहेंगे। यानी कि जुबिन नौटियाल जी की आवाज में ये गाना सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। और बाकी आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हाँ, आपने ये भी बताया ना कि अभी राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं, ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं, बहुत से निकल भी गए होंगे, बहुत से यही कह रहे होंगे अरे यार जल्दी नाश्ता दे दो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। चलिए जी, फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद के निकल

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: देखिए श्रोताओं, फिलहाल आरजे आनंद तो यहाँ पर नहीं है। आप सभी के बीच आरजे रीना कनेक्ट है और बिंदास वाली मॉर्निंग है जी आप सभी को। समय की बात करूँ तो 8:31 हो चुके हैं और आज का टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि कूल वाला टेम्परेचर है। और एक प्यारा यानी कि पॉजिटिव थॉट जो मैंने सोचा कि आप सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कभी कभी जिंदगी में ना बारिश जैसी मुश्किलें भी आती हैं, रास्ते गीले होते हैं, कदम थोड़ा रुकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं कि हम चलना छोड़ दें। हमें चलना नहीं छोड़ना है, चाहे बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो। याद रखिए, बारिश की बूंदें जितनी देर बरसती है उसके बाद आसमान उतना ही साफ दिखाई देता है। तो अगर आज कोई परेशानी है, कोई काम मन यानी कि आपके मन के जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, या दिल थोड़ा उदास है, तो हिम्मत मत हारिए। बस खुद को एक बात कहिए, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं रुकूँगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जीत हमेशा उसकी होती है जो मुश्किल वक्त में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते हैं। और यूं ही मुस्कुराते रहिए, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। आरजे आनंद भी बहुत जल्द आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे। थोड़ी इशू हो गई है, प्रॉब्लम हो गया है, तो इसकी वजह से वो हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा कि उनके घर जा रहे थे वो सुबह के टाइम, तो उनके फादर साहब है जो दूसरे ट्रेन में बैठ गए थे, जो 24 घंटे हो गए हैं अभी तक उनका कोई मतलब मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं है। इसी के सिलसिले में आनंद थोड़ा बिजी भी है, बाहर है, तो वो अपने पापा के लिए बस यही है, सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्रार्थना करिए कि उसके पापा जल्दी मिल जाए। बुज़ुर्ग है और बीमार भी है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो बस वही परेशानी है। फिलहाल आप भगवान से ही प्रे कर सकते हैं कि बस जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उसके पापा मिल जाए। चलिए श्रोताओं, एक गाना सुनते हैं और इसके बाद यानी कि जानेंगे आज की तारीख यानी कि 18 अगस्त है और यानी कि आज हिस्ट्री क्या कहती है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन कुछ मैसेज आए हैं, वॉइस मैसेज भी आए हैं, सुन लेते हैं कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं। इनकी मधुर आवाज आप सभी तक पहुंचाते हैं श्रोताओं।
1: नमस्कार, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ और बचाते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं आपका दोस्त भूपि शर्मा, नगर पंचायत बागबड़ा से बोल रहा हूँ। सुप्रभात, राधे राधे। जीवन की रीत अतीत के कार्यों को परिष्कृत करने का सरलतम तरीका है वर्तमान में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना। वैसे भी आज का अखबार आज का समाचार होता है और बीते हुए कल में वृद्धि होता है। स्वस्थ सुखी एवं सुरक्षित रहें, अच्छे से ड्राइविंग करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं और सभी को मेरा राधे राधे।
0: आपको भी सर राधे राधे। अगले मैसेज की बात करूं श्रोताओं, तो ये मैसेज आता है हमारे पास,

जो जिंदगी में प्रयास करना नहीं जानते उन्हें समस्या बड़ी ही लगती है। इसी विचार के साथ आपको प्रणाम, आपको भी जी प्रणाम। आपका संदेश इंसानीय जीवन की सफलता की ओर अग्रसर रहे, सुख शांति एवं समृद्धि की कामना हो और अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, कोई बात नहीं, इनके यानी कि नंबर के 4 डिजिट है 5234। अगले मैसेज की बात करूं तो दुर्गे सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ। अगले मैसेज की बात करूं तो राजेश जी कनेक्ट हो गए हैं मीना बेंगलुरु से। और हर हर महादेव रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से। इनका कहना है कि हमें बड़ा गम है, आज यानी कि आनंद भाई के पिताजी नहीं मिल पा रहे हैं। हम महादेव से यही कामना करते हैं कि उनके पिता जितनी जल्दी हो सके मिल जाए। हर हर महादेव जी, बिल्कुल कामना कीजिए। और एक और गाना सुनाते हैं आप सभी के बीच और फिर कनेक्ट होती हूँ श्रोताओं, यानी कि आज की हिस्ट्री जानेंगे।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में आर्जरीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं। और हम बात करने वाले हैं, यानी कि अब जानने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में, यानी कि 18 अगस्त को हिस्ट्री में, यानी कि देश में क्या हुआ था और हिस्ट्री के बनने क्या कहते हैं। यानी कि आज ही के दिन 18 अगस्त को, यानी कि 1800 को, यानी कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज शुरुआत हुई थी। यहाँ लोगों को अलग अलग भाषाओं और जरूरी विषयों की पढ़ाई होती है इसके, और इसमें भारत में भाषाओं की पढ़ाई को बढ़ावा मिलता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़े आगे बढ़ने के रास्ते उतने ही खुल जाते हैं, उतने ही समूद हो जाते हैं। और साथ ही साथ यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी एक घटना सामने आई थी, यानी कि आज ही के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें भारत की आज़ादी के लिए उनके साहस और संघर्ष के लिए याद किया जाता है। उन्हें आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। उनका संदेश था देश के लिए हिम्मत से आगे बढ़ना। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किल रास्ते हो फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज़ादी का जश्न, यानी कि 1947 में पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में आज के दिन 18 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, यानी कि और वहीं सीमा तय होने के बाद भारत का तिरंगा फहराया गया। लोगों ने खुशी के साथ आज़ादी का स्वागत किया। उनके लिए तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं बल्कि नई उम्मीद की पहचान था। आज भी तिरंगा हमें एकता और देश के लिए गर्व की याद दिलाता है। गर्व है हमारे लिए। और असम का भूकंप, यानी कि 18 अगस्त 1950 को असम में बहुत तेज भूकंप आई थी इस दिन। इसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में लोगों ने एक दूसरे की मदद बिल्कुल नहीं छोड़ी। उन्होंने एक दूसरे की मदद करते रहे। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल में साथ रहना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मुश्किल समय गुजर जाता है लेकिन इंसानियत हमेशा याद रहती है। और अभी भी असम में भी बाढ़ इतनी ज़्यादा आ गई थी, अभी कुछ नहीं कह सकते। यानी कि सभी ने उनकी बहुत मदद की है, और मुझे लगता है कि मदद करना बहुत ज़रूरी है। इंसानियत, यानी कि देखिए, आप किसी की लाइफ में भले ही आप खुशी में उनके साथ शामिल हो ना हो, लेकिन दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए श्रोताओं, मैसेज भी है, वो भी ज़रा शामिल

मेरे मित्र आरजे रीना जी को वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। रीना जी, मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनता हूँ। मैंने कल आपकी हरियाणवी तड़का, नहीं है सर, हरियाणवी तड़का अब चेंज हो चुका है, यानी कि अब है इवनिंग मस्ती शो, यानी कि ये कनेक्ट थे और इन्होंने मेरे शो में कल विनर भी बने, लेकिन ये खुद सुनना भूल गए और इन्हें खुद भी याद नहीं कि विनर किस टॉपिक पर बने थे, यानी कि मैंने म्यूजिक प्ले किया था सर, वो गाना था ये शाम मस्तानी, ये शाम कुछ इस तरीके से गाना था वो, और इसमें विनर बने थे और इनका कहना कि हमें उसमें क्या मिलेगा, प्लीज बताइए। मिलेगा कुछ नहीं सर बस आज बारिश हो रही है, पकौड़े खाइए, क्योंकि जब ऐसे कुछ वाउचर होते हैं तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली हम बताएंगे। और ये नवनेश कुमार जी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं श्रोता, यानी कि देखिए अगर आप मेरे शो में कनेक्ट होना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, यानी कि 2 घंटे आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूँ मैं, तो आप बिल्कुल वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। और अगले मैसेज की बात करूँ तो मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं। हमारी तरफ से आपको और आपके सभी FM मुरादाबाद सुनने वाले श्रोताओं को हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, राधे राधे। हेलो दी, गुड मॉर्निंग। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है आशिया फातिमा जी। हेलो रीना जी, कैसी हो आप? गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे हैं जी। विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं और इनका कहना है कि आनंद जी के पिता के बारे में कुछ पता चला? नहीं जी, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है। आप सभी सपोर्ट करिए उनका, क्योंकि देखिए हमें लगता है कि मुश्किल घड़ी में हमें साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि खुशी में खड़े रहे ना करे, दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए। चलिए श्रोता, फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद

जब ऐसे ऐसे गाने भैया सुनने को मिल जाते हैं ना, सच बताऊं यानी कि मॉर्निंग तो वैसे ही बिंदास हो जाती है। अलका याग्निक जी की आवाज में और सोनू निगम जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत वाला गाना एंजॉय किया है आपने। अंदाज मूवी से ये मूवी 2000 यानी कि 3 में रिलीज हुई थी श्रोताओं। और यानी अपने मुरादाबाद की बात करूँ यानी कि लोकल फॉर वोकल, देखिए आज वैसे भी मौसम बहुत ही औसम है, बरसात हो

0: रही है बाहर, यानी कि, और ये कहा जा रहा है यानी कि चौथे सोमवार को, यानी कि सावन के चौथे सोमवार को, यानी कि जो पड़ रहा है 24 अगस्त को, उस दिन यानी कि कांवड़ियों के लिए बहुत ही यानी कि जो व्यवस्था है वो स्मूद की जाएगी। जगह जगह पर शिविर लगाए जाएंगे और भंडारों की भी व्यवस्था की जाएगी। और खासकर यानी कि 23 से 24 तारीख का आपको सड़कों पर ना, एक तरफ की जो सड़कें हैं वो से साफ सीधा यानी कि बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों के लिए ही वो सड़क रहेंगी। और साथ ही साथ दूसरी वाली जो सड़क है वो आम लोगों के लिए यानी कि हम सभी के लिए। तो उस दिन यानी कि 2 दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम आपको मिलने वाला है। और उनकी सुविधा के लिए हर जगह जगह पर शिविर, और देखिए आपके पास अगर अभी तक आपने उनकी सेवा नहीं की है तो आपको लास्ट मौका मिलेगा यानी कि 24 अगस्त को, जो कि पड़ रहा है चौथा सोमवार, तो आप उस दिन कांवड़ियों की सेवा कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, जो कांवड़ अभी लेने जाने वाले हैं फिर से, यानी कि जल लेने जाने वाले हैं और महादेव पर जलाभिषेक करने वाले हैं, तो आप देखिए कहीं भी कुछ भी खाते हैं तो मुझे, मेरा मानना है कि आपको, आप कांवड़ लेकर जा रहे हैं और कहीं पर शिविर पे आप रुकते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो आपको वहाँ पर 10 रुपये कम से कम ज़रूर रख कर आना चाहिए। क्योंकि जो आपका पुण्य है ना, मुझे लगता है कि क्योंकि आप इतनी दूर से आते हैं जल लेकर, तो आपके पुण्य अभी आप तक रहने चाहिए। क्योंकि जब आप कहीं पर शिविर लगाते हैं और खाते हैं या पानी पीते हैं तो जो आप पुण्य कमा कर लाते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि कहीं भी, देखिए हम शादी में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो दान, तो यानी कि कन्यादान भी करके आते हैं, कुछ ना कुछ जरूर देकर आते हैं, गिफ्ट देकर आते हैं। इसी तरह जब आप कांवड़ लेकर आते हैं और जगह यानी कि खाना खाते हैं, शिविर जहाँ पर लगते हैं, तो वहाँ पर 10 रुपये जरूर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए आपको। और कुछ मैसेज है उसके बाद, यानी कि 9:01 हो चुके हैं श्रोताओं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई। हेलो, गुड मॉर्निंग रीना दी, कैसी हो आप? बहुत अच्छे जी। निकट फातिमा जी कनेक्ट होती हैं। जय श्री राम जी। लेकिन सर आप अपना नाम भी बताया करिए ना कि आपका नाम क्या है। इनके नंबर है यानी कि 2108। गुड मॉर्निंग रीना मैम, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। मोहसिन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं बनारस से। और बताइए सर, बनारस का वेदर क्या है आज का? और श्रोताओं इसके बाद जानेंगे यानी कि आज का स्पेशल डे क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

बात है जी, राजा हिंदुस्तानी मूवी से आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, उदित जी की आवाज में, अलका याग्निक जी की आवाज में। गुड वाली मॉर्निंग है जी, बिंदास मॉर्निंग शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 9:10, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी आईने में खुद को देखकर ये बोला है, हाय भगवान ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है, प्यारी आंखें और ये प्यारा खूबसूरत चेहरा। आपने कितनी बार, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब रेडी होते हैं ना, तो बार बार शीशे में, आईने में अपना चेहरा देखते हैं और खुद को कहते हैं, हाय ये मैं ही हूँ क्या, इतनी प्यारी। तो मुझे लगता है कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान जिसको बनाता है ना, सोच समझ कर बनाते हैं। तो कभी अपने आप से ये मत बोलिए कि मेरे में ये खराबी है, मैं अच्छी नहीं हूं। अरे आप हो बेस्ट। तो आज की तारीख यानी कि 18 अगस्त, और देखिए आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं श्रोताओं कि आप कितनी बार आईना देखकर खुद को बेहद ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर है 9823789689 पर आपने बताना है। और यानी कि आज मनाया जाता है वर्ल्ड नेवर गिव अप डे। यानी कि क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब लगा हो कि बस हिम्मत जवाब दे रही है? तो आज का दिन आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात याद दिला देती है, कभी हार मत मानो। यानी कि वर्ल्ड नेवर गिव अप डे, यह दिन हमें सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और सफलता आए तो उसे सीखिए, रास्ता मुश्किल हो तो थोड़ा रुकिए, लेकिन अपने सपनों को पीछे मत छोड़िए और कभी पीछे मुड़कर मत देखिए। क्योंकि देखिए मुश्किलें तो आती रहती है, रास्ते में आपको कांटे भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप उन कांटों पर चल जाते हैं तो आपसे बड़ा यानी कि हिम्मत वाला कोई भी नहीं होता है। और समझिए जब आप कांटों पर चलना सीख जाते हैं तो फिर फूल कलिया जो भी है आपको वहां से खुशबू ही खुशबू आएगी। तो याद रखिए, जीत हमेशा उसकी होती है जो गिरने के बाद फिर खड़ा होता है। लेकिन इसीलिए आज खुद से एक वादा भी कीजिए, मुश्किल समय आएगा लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, कोशिश करता रहूंगा, कोशिश करती रहूंगी। क्योंकि हार मान लेना अंत नहीं है दोस्तों, लेकिन कोशिश जारी रखना एक नई शुरुआत है। और साथ ही साथ आई होप कि आप सभी का ब्रेकफास्ट भी हो गया होगा, लेकिन बरसात के मौसम में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी रीना बताएगी आपको। बस बने रहिए आरजे रीना के साथ, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 9:13 हो चुके हैं जी। चलिए गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार वाला, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं। और फिलहाल यहाँ पर एक मैसेज आया है तो चलिए उनको भी शामिल।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: are tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.
2: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओं, बिंदास मॉर्निंग शो में. और समय की बात करूं तो 9:23 हो चुके हैं और आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट. और अब बात कर लेते हैं यानी कि सुबह के ब्रेकफास्ट के बारे में, क्योंकि बरसात का मौसम है और इसमें हर किसी का दिल यही करता है बस तला भुना चटपटा हो जाए, पकौड़ी हो जाए या कुछ और हो जाए सुबह सुबह के नाश्ते में. लेकिन सुबह सुबह के नाश्ते में तला भुना खाना है उसको अवॉइड करना चाहिए. आप अपने सुबह के नाश्ते में यानी कि पोहा ले सकते हैं, दलिया, साथ ही साथ वेजिटेबल वाला उपमा जो कि बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है क्योंकि सारे वेजिटेबल्स उसके अंदर होते हैं. साथ ही साथ बेसन या मूंग दाल का चीला भी ले सकते हैं. और इस मौसम में मतलब जितना हो सके आप ज़्यादा तला भुना चटपटा चीज़ें ना खाएं क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है और पेट भी खराब हो जाते हैं इस मौसम में. और साथ ही साथ सुबह सुबह बहुतों की आदत होती है भैया, चाय का अगर ना मिले ना तो उनकी नींदें नहीं खुलती है. लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी भी खाली पेट चाय हमें नहीं पीना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह आप वो भी शक्कर डाल ज़्यादा कहते हैं ना, यानी कि पानी रो के दूध ठोके और इलायची यानी कि बहुत ज़्यादा डाल दीजिए उसके अंदर. तो अगर आप ज़्यादा शुगर वाला अगर आप चाय पीते हैं, ज़्यादा चीनी वाली आप चाय पीते हैं तो वो एसिडिटी और जहर का दूसरा नाम माना जाता है. इसीलिए सुबह सुबह यानी कि खाली पेट ज़्यादा हमें चाय नहीं पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीजिए ताकि आप आसानी से आपको भी हल्का फील होएगा, आप पॉजिटिव भी फील करेंगे. और साथ ही साथ आपको सुबह सुबह चाय के बजाय देखिए आप नाश्ता करते हैं तो उस टाइम दूध ले लीजिए. और साथ ही साथ बच्चों को चाय अवॉइड करिए क्योंकि छोटे बच्चों को चाय नहीं देना चाहिए. बहुत से घरों में छोटे बच्चों की भी इतनी गंदी लत लग जाती है ना कि वो भी चाय के बिना रह नहीं पाते. दूध का नाम लो तो बोलते नहीं नहीं नहीं नहीं हम दूध नहीं पियेंगे, दूध अच्छा नहीं लगता. लेकिन दूध पीना बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं. अगर आप ड्राई फ्रूट्स अकेला नहीं खाना चाहते, सिंपल नहीं खाना चाहते, तो आप उसको यानी कि मिक्सी में ग्राइंड करके दूध में मिक्स करके अगर आप पीते हैं तो पूरा दिन आपको एनर्जेटिक फील कराता है, आपको लो फील नहीं होने देगा. और सुबह का ब्रेकफास्ट आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि कहते हैं ना, बहुत से कहते हैं कि नहीं मेरी आदत है जब तक 10-12 नहीं बजते मैं खाना नहीं खा पाता हूँ. लेकिन ये गलत बात है. सुबह का ब्रेकफास्ट यानी कि भरपेट खाना खाना चाहिए, राजा महाराजा की तरह खाना चाहिए. उसके बाद चाहे आप हल्का फुल्का खाइए, लंच हल्का फुल्का करिए, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए. श्रोताओं, पहले के टाइम में क्या होता था भैया, 8 बजे तक ना हर घर में ब्रेकफास्ट कर लिया जाता था और यानी कि 12 बजे तक वो खाना खा लेते थे. शाम को हल्का फुल्का चाय के साथ कुछ खाना ले लेते थे वो. और रात को यानी कि 8 बजे से और 9 बजे तक डिनर भी कर लेते थे. लेकिन आज के टाइम में हम उठते ही लेट है तो शेड्यूल भी हमारा पूरा गड़बड़ हो चुका है, पूरा लेट हो चुका है. सो आप बने रहिए आर्जरीना के साथ और देखेंगे यानी कि बॉलीवुड में कौन सी मूवी है जो यानी कि सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे श्रोताओं. और साथ ही साथ नीम की दातुन के बारे में बात करने वाले हैं. तो एक गाना सुनते हैं उसके बाद लौट कर आते हैं.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओं। बिंदास मॉर्निंग शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट। और समय की बात करूँ तो 9:35 हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में, कैसे दातुन के बारे में, जो इंडिया में आसानी से आपको मिल जाती है, जगह जगह पर मिल जाती है, लेकिन वही अगर मैं विदेश की बात करूँ तो वो बहुत महंगी मिलती है। यानी कि हमारे इंडिया में उसकी अब कद्र बहुत कम की जाती है, लेकिन विदेशों में उसकी कद्र जमकर की जाती है। आखिरकार क्या है वो? जरा सोचिए, जिस नीम की दातुन को हम भारत में सालों से आसानी से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन वही अब हम कहते हैं कि नहीं यार, दातुन नहीं करेंगे, बस हम ब्रश से ही यानी कि अपना माउथ दांत साफ कर लेते हैं। लेकिन वही अमेरिका की बात करूँ तो मॉल स्टोर में वो बहुत महंगी मिलती है। यानी कि अमेरिका की बात करूँ तो नीम की दातुन एक पैकेट करीब यानी कि 9.95 से लेकर यानी कि $15, यानी लगभग ये हो गए 800 से लेकर यानी कि 1300 रुपये तक की मिलती है वहाँ पर। और हम जाए पेड़ से तोड़ कर ले आते हैं, लेकिन उसमें भी हमें लगता है, आलस आता है कि नहीं यार छोड़ो, क्या ही पेड़ के यानी कि दातुन करनी है इसकी टहनियों से। लेकिन आपको नहीं पता वो कितना हमारे लिए फायदेमंद होता है। यानी कि इसकी कीमत पैकेजिंग, ब्रांड और स्टोर के हिसाब से अलग अलग, यानी कि विदेशों में अलग अलग इसके मोल भाव होते हैं। सोचिए अगर इंडिया में ऐसा मिलने लग जाए तो हर कोई कहेगा यार यार ये भी इतनी महंगी मिलती है। अरे बिल्कुल, वही हमारे भारत में नीम के पेड़ यानी कि गांव शहरों में आपको हर जगह मिलेंगे। इसकी दातुन हमें बहुत कम यानी कि बहुत कम जगह अब यूज होता है। पहले बुजुर्ग होते थे वो नीम के ही दातुन करते थे, और इससे क्या होता था यानी कि दांतों और मसूड़ों की सफाई होती थी। साथ ही साथ ये नीम की प्राकृतिक एंटी बैक्टीरिया गुण भी पाए जाते हैं, यानी कि पेट में आपके जो भी कीड़े होते हैं या फिर ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिससे फेस पर, हाथ में दाने निकलने लग जाते हैं, यानी कि नीम साफ साफ काम करता है हमारे ब्लड को साफ करने में। अगर आपका ब्लड साफ है तो आपको कोई भी परेशानी फेस पर या हाथ पर या बॉडी में कहीं भी एलर्जी नहीं दिखाई देगी, नहीं इचिंग आपको होएगा, और साथ ही साथ जो रेड रेड दाने निकल जाते हैं वो भी आपको नहीं होंगे। इसीलिए नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत से जो बड़े हैं बच्चे तो आजकल बिल्कुल कहते हैं कि नहीं नहीं कड़वी होती है। जो उसकी छोटी छोटी कलियां होती है, कोपल होती है, अगर आप उसको डेली चबाते हैं तो वो आपको ब्लड को साफ रखता है और आपको हेल्दी भी रखता है। और साथ ही साथ देखिए, डॉक्टर्स की सलाह भी ले लेनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसलिए डॉक्टर भी सलाह लेनी चाहिए। और जिनको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आसानी से इसका, आप सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं उसमें बॉयल करके पीजिए, या फिर ऊपर की छोटी छोटी जो कोपल होती है, कलियाँ होती है, उसको वॉश कर कर 1 से 2 खाना है, मतलब 3 से 4 पत्तियां आप खा सकते हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना। वही जिस चीज की कीमत विदेशों में सैकड़ों हजारों रुपए है वही हमारे घरों में मिल जाते हैं आसानी से, तो उसकी कद्र कीजिए श्रोताओं। और एक कड़क अपडेट भी लेकर आएंगे आप सभी के लिए, यानी कि कड़क सवाल भी लेकर आने वाले हैं, बस आप बने रहिए। लेकिन उसी के साथ मैसेज भी है, जय श्री राम का जिन्होंने मैसेज किया है, उनका नाम है जीतू। ओके, अगले मैसेज की बात करूँ तो मोहसिन अंसारी जी बनारस से कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि बनारस का मौसम बहुत ही अच्छा है और हमारे यहाँ कावड़ यात्रा भी बहुत अच्छे से निकलती है काशी में, यानी कि बहुत दूर दूर से कावड़ लेने आते हैं। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि आनंद भाई साहब के पिताजी फादर जी जल्दी मिल जाए और वो हमारे साथ बिंदास मॉर्निंग शो में जल्दी कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल जी। अगली मैसेज की बात करूँ तो सैफी अहमद अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, रईस दूल्हा इनके दोस्त है। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन बिंदास। मॉर्निंग इज
यानी कि वेरी नाइस सो, थैंक यू सो मच। कश्मीर से मिराजुद्दीन जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि आपकी आवाज बहुत ही बेधड़क बिंदास अच्छी लग रही है, मिस यू। ओके जी, चलिए जी एक गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार। जैसे हमें नीम कड़वे लगते हैं ना, वैसे ही नींबू की बात कर लेते हैं। जो एक ही बात बोलते हैं, निमुड़ा रे निमुड़ा, काचा काचा छोटा छोटा।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: चलिए जी, हम आपको लेकर चलते हैं अब यानी कि कड़क सवाल की तरफ। एक यानी कि म्यूजिक प्ले करने वाली हूँ आप सभी के बीच श्रोता, और आपने सुनना है और गैस करना है यानी कि गाने का आपने नाम बताना है म्यूजिक सुनकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शादी में बहुत ज्यादा प्ले किया जाता है, बस इतना ही हिंट आप सभी के लिए इनफ है, काफी है। और आप सोचिएगा और मैसेज करिएगा कि आखिरकार, प्लस आपने मूवी का नाम भी बताना है श्रोताओं, गाने के साथ साथ मूवी का नाम बताएंगे तभी आप विनर माने जाएंगे, अदरवाइज आप विनर नहीं माने जाएंगे। चलिए मैं प्ले करती हूँ आज की कड़क म्यूजिक।
1: गुड मॉर्निंग।
0: चलिए जी, सोचिए सोचिए आखिरकार गाने का क्या नाम है जो मैंने म्यूजिक प्ले किया आप सभी के बीच। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है श्रोताओं कि आखिरकार जो ये म्यूजिक प्ले किया है कौन से फिल्म से है और गाने का क्या नाम है। वंस अगेन एक बार और सुनिए।
1: गुड मॉर्निंग।
0: चलिए जी, इतना ही इनफ है, सोचिए और मैसेज करिए एक और गाना बहुत ही शानदार।

0: हेलो जी, लेकिन मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है आपके बीच, यानी कि म्यूजिक प्ले करना है, क्योंकि अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज के ही होंगे श्रोता। तो अभी आपके पास समय है, यानी कि मैसेज करके बता सकते हैं कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक आप सभी के बीच प्ले किया है, यानी कि मूवी और गाने का नाम बताना है। तो सुनिए।
1: गुड मॉर्निंग।
0: चलिए जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी मैसेज करिए, सोच कर बताइए कि आखिरकार कौन सी मूवी से हैं और गाने का क्या नाम है, क्योंकि अगली बारी सिर्फ आपकी मैसेज की होने वाली है और फिर मैं लेने वाली हूँ यहाँ से जाने की।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: जी, गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओ। बिंदास मॉर्निंग शो में आज रीना के साथ आपके निकटे समय की बात करूँ तो 10:01 हो चुके हैं और आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज आ गए हैं ना भैया, अब उसकी बारी है कि किनका हमारे पास सबसे पहले राइट आंसर आ गया। आज का कड़क म्यूजिक एक बार और हम प्ले करते हैं और देखेंगे सबसे पहले किसका मैसेज आ रहा है। चलिए जी, तो अब देखना ये है कि किन्होंने हमें राइट आंसर पहुंचाया है। राइट आंसर होता है यानी कि विवाह मूवी से है, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते हफ्ते हफ्ते चार। ये हमारे साथ कनेक्ट होती है निखत फातिमा जी का राइट आंसर आया है। सो आप बनती है बिंदास मॉर्निंग शो के विनर और इन्होंने सबसे पहले मैसेज किया है तो आप विनर बन गई है निखत फातिमा जी, यानी कि आपने राइट आंसर दिया है। चलिए श्रोताओं और भी देखते हैं किनका क्या मैसेज आता है। बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट हो गई है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती, वेरी गुड मॉर्निंग जी। राजा कश्यप जी कनेक्ट हो गए हैं 2009 चौराहा गली से अंकल जी।
1: चार चार सौ बरस लगे ये हफ्ते कैसे होंगे पार
0: नहीं। अंकल जी आपको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सर अंकल कौन है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है।
1: ये पहना
0: मुझे लग रहा है कि आप रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं। आरजे आनंद जी नहीं है, आरजे रीना है।
1: पहना दे तेरी गोरी।
0: मोहसिन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं बनारस से और इनका कहना है कि हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार, फिल्म है विवाह। ओके चलिए, आपने भी राइट आंसर दिया है। अगले मैसेज की बात करूं तो बबली सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट हो गए हैं और इनका भी राइट आंसर आता है।
2: समथिंग सर,
0: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार। ओके जी, फिल्म है विवाह और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बेंगलुरु से राजेश जी। सलीम अंसारी जी कनेक्ट हो गए हैं सीएल गुप्ता मुरादाबाद से और मूवी का नाम है विवाह और हमारी शादी में, यानी कि ये भी राइट आंसर पहुंचाते, गुड मॉर्निंग पहुंचाते, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आयुब जी कनेक्ट होते हैं रामपुर से राइट आंसर के साथ कनेक्ट हो गए हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते, वेरी गुड मॉर्निंग।
1: मिलन की जल्दी है, प्लेन की धीमी है रफ्तार, मेरा बस चले तो मैं उसकी छत पे प्लेन।
0: उस्मान टेलर जी कनेक्ट हो गए हैं और इनका कह ये भी राइट आंसर पहुंचा
1: पूरा वहाँ गुजार उसे।
0: मसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट हो गए हैं, सैयद शारिक अली जी, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, गुड मॉर्निंग। प्रीना जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, बिंदास मॉर्निंग शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं आप और विवाह मूवी और हमारी शादी में अभी बाकी हफ्ते चार राइट आंसर के साथ कनेक्ट।
3: Want to go in?

0: पहना दे।
1: मनोज कुमार जी कनेक्ट हो गए हैं राइट आंसर के साथ।
0: आज ही पहना दे।
1: हरे कृष्णा, राम गोपाल गुप्ता मुरादाबाद बुद्धि बिहार से कनेक्ट होते हैं विवाह मूवी से। हमारी शादी में अभी बाकी हफ्ते।
0: जन्म हो
1: हाना जी रामपुर से कनेक्ट होंगी। ओके जी, चलिए श्रोताओं, अब मैं इसी के साथ लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। अब हम मिलेंगे आपको शाम को, यानी कि इवनिंग मस्ती शो में, ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अगली आरजे भी यहाँ कनेक्ट हो गई है, आरजे खुशी, अब आप सभी के साथ वो कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच तहे दिल से इतने सारे मैसेज पहुंचाने के लिए, और ये गाना आप सभी के लिए। बाय।

0: फासन योर सीट बेल्ट सर।
1: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और श्रोताओं, आज दिन है मंगलवार का, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। मौसम भी बाहर कभी बारिश हो जाती है तो कभी थम जाती है। और बात करेंगे समय की तो वक्त हुआ है अभी 10:16। और दोस्तों, आज ट्यूजडे मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल थॉट मेरे माइंड में आ रहा था तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। दोस्तों, हार मत मानिए जिंदगी में ना, महान कामों को पूरा होने में ना समय लगता है। डोंट गिव अप ग्रेट थिंग्स एंड टेक टाइम। याद रखिए, हर खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगता है। कभी रास्ता मुश्किल होगा, कभी लगेगा कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोशिश बेकार जा रही है। क्योंकि दोस्तों, पेड़ को फल देने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, और सपनों को हकीकत में बनने में भी समय लगता है। तो इसीलिए आज अगर आपकी जर्नी में थोड़ा स्लो है तो परेशान मत होइएगा, बस खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और गिव अप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है आपकी सफलता आपसे बस एक कदम, एक कोशिश और थोड़ी से पेशेंस की दूरी पर हो। हैव अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और याद रखिए दोस्तों, जो लोग चलते रहते हैं ना, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। हम भी अपनी मंजिल तक आ गए हैं। आप सभी का आरजे खुशी बहुत बहुत स्वागत करती है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में हमेशा खुशियाँ आएँ, सब अपनों के साथ रहें, खुश रहें। और आज क्या कुछ स्पेशल है शो में, सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत। अगर आप भी कुछ थॉट, कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत इजी सा आपको काम करना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज पहुंचाना है। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, अगर तुम गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ एवरीवन, अगर आप कहीं भी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप केयरफुली ड्राइविंग कीजिए एंड सीट बेल्ट ज़रूर बांध लीजिएगा। और देखिए एवरीवन, बारिश का अभी मौसम है, मानसून चल रहा है, एंड इस समय अगर आप बाहर कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं भी जाने के लिए सोच रहे हैं, तो पहले प्लीज़ सारी अपडेट वहाँ के बारे में ले लीजिएगा। क्योंकि मौसम पल पल बदल रहा है, पता नहीं चल रहा है कब बारिश हो जाती है, कब रुक जाती है। और रेनकोट, छाता हमेशा अपने पास रखें अभी अवश्य, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी वेदर ठीक ठाक है तो क्या नीड है।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। वक्त हुआ है अब स्टूडियो की घड़ी में 10:27 राइट नाउ। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और दोस्तों आप भी इस शो में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। जो मोबाइल आप इस वक्त चला रहे हैं ना, ये आपके साइड में रखा है, तो उसी पर आपको बस व्हाट्सएप करना है। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और दोस्तों आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए नेताजी ने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व के माध्यम से भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष को नई दिशा दी और ऊर्जा दी। उनके ओजस्वी शब्द, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये देशवासियों में त्याग साहस और राष्ट्रीय भक्ति की भावना को प्रबल किया। वही उनका अभिवादन जय हिंद आज भी हर भारतीय के दिल में देश प्रेम और एकता की भावना जागती है। एंड दोस्तों नीता जी का जीवन हमें सिखाता है कि देश के लिए समर्पण साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं सब मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए आप मेरे साथ। और आप सभी के यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी लगातार आ रहे हैं तो उन्हें भी मैं शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है मधुबनी बिहार से, हमें मैसेज पहुँचाते हैं मोहम्मद शाबिर परवाना जी आज की सुबह। और ये कहते हैं आरजे खुशी जी गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? सर हम बहुत ही अच्छे हैं, आपके ब्लेसिंग्स हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आदरणीय आरजे जी को हमारा नमस्कार आदाब, आपको भी आदाब। और ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया आयान बाबू जी का। एंड ये कहते हैं आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं रईस दूल्हा अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी शक्ति, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। बिल्कुल सुनवाएंगे सर। और जब हम ईश्वर से कोई भी प्रार्थना करते हैं ना सच्चे मन से, तो वो एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आरजे खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खुशी मैम मैं ठीक हूँ सर। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं विकी सागर जी मुरादाबाद से। तो चलिए दोस्तों मैं बस वापस आती हूँ अभी कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पार और बताने वाली हूँ कि आज और कौन कौन से स्पेशल डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो बस आप बने रहिएगा खुशी के साथ, जुड़े रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। अपने संदेश भी हमें पहुँचाएगा, हमें भी सब्र से इंतज़ार है आपके मैसेज का। और दोस्तों कोई ऐसा थाट, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि मेरे एक थाट से शायद किसी की लाइफ चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ अच्छा यू नो मोटिवेशन या फिर कोई अपने दिल के थॉट आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं जो हम लाखों श्रोताओं तक पहुंचाएं, तो पहुंचा सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ, आप बस कहीं मचाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए।
1: प्रार्थना है हर रोज शाम को घर में दिया जलने के वक्त हम गाते हैं, माई तो बचपन से गाती आ रही।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:41। जी हाँ, 10:41 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में टाइम हो गया है। और दोस्तों, जिंदगी में ना कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है ना, जहाँ रास्ता मुश्किल दिखाई देता है, मंजिल दूर लगती है और मन कहता है बस अब और नहीं। लेकिन शायद उसी पल जिंदगी हमसे सिर्फ एक बात कह रही होती है कि थोड़ा और चलो, क्योंकि आपकी मंजिल शायद बस आपके कुछ कदम दूर ही पर है। एंड दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी खुशी हूँ और आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज 18 अगस्त को नेवर गिव अप डे यानी कभी हार ना मानने का दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है लोगों के अंदर दृढ़ संकल्प, हिम्मत और मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की भावनाओं को मजबूत करना। कहा जाता है कि इस वैश्विक आंदोलन की शुरुआत 2019 में हुई थी। एंड ये दिन उन सभी लोगों को सम्मान देने का, एक खूबसूरत संदेश देने का है जिन्होंने जिंदगी में मुश्किलें देखी हैं, असफलताएँ झेली हैं, कई बार गिरे लेकिन फिर भी उठकर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हार जाना और हार मान लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हार जाना सिर्फ एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन हार मान लेना हमारा फैसला होता है। कभी परीक्षा में कम नंबर आते हैं, कभी नौकरी नहीं मिलती, कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी हमारा कोई सपना पूरा होने में वक्त लग जाता है। एंड लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी ख़त्म हो गई है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी हो। तो आज नेवर गिव अप डे को पर खुद से एक वादा, एक छोटा सा प्रॉमिस ज़रूर कीजिए कि मैं गिरा तो हूँ लेकिन उठूँगा भी, थका तो थोड़ा आराम करूँगा लेकिन अपने सपनों से कभी हार नहीं मानूँगा। और अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक छोटा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आज की सुबह मेरा। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा था कि अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आपने खुद को संभाला और फिर से शुरुआत की है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, आप अपना थॉट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा था कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आपने खुद को संभाला और फिर से शुरुआत की? तो प्लीज़ आप अपने मैसेज हम तक डिलीवर कीजिएगा। उसके लिए आप हमारा जो मैजिकल नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आपकी कहानी सुनकर किसी और को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद मिल जाए। और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से संदेश भी आ गए हैं आपके, तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि सभी को इंतज़ार होता है कि जब खुशी आती है तो हमारे संदेश को, हमारे मैसेज को शामिल करेंगी। बिल्कुल सर। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हर हर महादेव खुशी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी, और ये आज एक गाना सुनना चाहते हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी करण अर्जुन से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, शहीद शादी अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। कहते हैं कि आपका शो हमें बहुत पसंद आता है एंड बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी इस शो के माध्यम से मिलती हैं, और एक ही ट्रैक सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी गुड न्यूज से। बिल्कुल सुनाएंगे सर, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग नफीस अहमद जी का हमारे पास मैसेज आया है। मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। एंड इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कश्मीर से आए हैं महराजुद्दीन जी का, और ये कहते हैं, आरजे खुशी जी गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना मैसेज पहुंचाया है। अच्छा लगता है जब दूर दूर से हमारे श्रोता हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाइए। बेसब्री से मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, एंड अभी लौट कर आऊंगी तो नेक्स्ट क्या अपडेट है वो आपको मैं लौट कर आऊंगी तभी बताऊंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: विजिट करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, आज की मॉर्निंग मैंने आपसे एक थॉट शेयर किया था एंड मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि आप उसका आंसर मेरे को दीजिएगा, क्योंकि आज सेलिब्रेट किया जाता है नेवर गिव अप डे। और बहुत सिंपल सा आज कई सुबह मैंने आपसे सवाल पूछा था। मैंने आपसे पूछा था दोस्तों कि क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा था कि अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आपने खुद को संभाला और फिर से शुरुआत की। तो बताइएगा जरा अपनी जर्नी के बारे में, अपने उस सिचुएशन में जब आप बहुत ज्यादा हार गए थे लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने कहा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। कहते हैं ना, एक छोटी सी उम्मीद अगर होती है ना, उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। ऐसे ही नहीं कहते हैं, क्योंकि एक छोटी सी आस हमारे जीवन को बदल देती है। तो विश्वास और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और हमारे पास यहाँ पर बैक टू बैक सभी के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें यहाँ पर मिला है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं शफी अहमद जी। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। आसिया फातिमा जी का मैसेज आया है एंड ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं आज की सुबह। अफरोज फातिमा जी हैं, लाइबा हैं, दरक्षा हैं और रामपुर से शबनम जी हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज हमें पहुंचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यूपी मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का, और ये कहते हैं हमारी तरफ से आपको और FM मुरादाबाद के सभी सुनने वाले श्रोताओं को हरे कृष्णा। आपको भी हरे कृष्णा सर, राधे राधे। और आज की सुबह ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, काली घटा छाई प्रेम रुताई। ठीक है सर, ये गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया यहाँ पर जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से रजा हुसैन जी आज की सुबह हमारे साथ जुड़े हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है खुशी मैम, गुड मॉर्निंग। ये मुरादाबाद सीएल गुप्ता से सलीम अंसारी जी मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, और साथ में इनकी फैमिली मेंबर्स भी हैं। इनके मैसेज हैं चमन जी और इनकी डॉटर हैं अनाया सनाया, इनके सन भी हैं सुहान अंसारी जी एंड साथ में इनकी फ्रेंड्स भी हैं, दोस्त हैं कासिम अलवी जी। और कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, आपको सुन रहे हैं हम अपनी फैमिली के साथ, आपकी आवाज़ सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद आपका सर। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी फूल और कांटे का, बिल्कुल सुनवाएंगे सर आपको। तो बस मैं लौट कर आती हूँ दोस्तों, प्यारे से गीत के उस पार। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा और अपने संदेश हमें पहुँचाइए, इंतजार है हमें। लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सी गीत जो अभी पेंडिंग में थे, इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी ने। और नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पर आई है इरशाद हुसैन अंसारी जी की, फ्रॉम द मूवी गुड न्यूज से गाना सुनना चाहते हैं, सौदा खरा खरा, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। तो बस मैं आती हूँ वापस, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ, मैं लौट कर आने वाली हूँ। अपने थॉट भी शेयर कीजिएगा आज की सुबह।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ, और ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना श्रेया झा की रिक्वेस्ट पर, एंड ये मैसेज अपना पहुंचाती हैं सूर्य नगर लाइन पर मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं, एंड ये मैसेज कहती है कि एक तू ही भरोसा है, ये हमें ट्रैक सुना है मैम, एंड कहती है हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप मैम, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। और कहती है कि खुशी मैम आपने सही कहा, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, अगर कुछ हमारे खिलाफ भी हो रहा है तो परमात्मा हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहे होते हैं, तब चाहे वो पल कितना ही कठिन क्यों ना हो, परमात्मा अपने बच्चों की हर पल रक्षा करता है। अगर कभी कभी वो मुसीबतों में डाल कर परीक्षा ले भी रहा होता है, एंड उस पल को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। आई एग्री विद यू। थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, बट इन्होंने नाम नहीं लिखा है। सच में आपका मैसेज एकदम दिल को टच कर गया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रामपुर से शबनम जी का, साथ में लाइबर काजमी है, अफरोज फातिमा जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहती हैं कि मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। ओके, बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। और आज की मॉर्निंग उन्होंने एक थॉट लिखा है, एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है, सॉरी। कहती हैं कि दिल उदास हो तो बात कर लेना, दिल उदास हो तो बात कर लेना, दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना, हम रहते हैं आपके दिल में, वक्त मिले तो तलाश कर लेना। अरे वाह क्या बात है, बड़ी खूबसूरत सी लाइन है आपकी, एंड अच्छा लगता है जब आप हमें एवरी डे मैसेज करती हैं। शुक्रिया शबनम जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर लाइन पार से आए प्रतीक्षा का, और ये गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाती है आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, इन्होंने नाम लिखा है, ये मंझूला से अपना मैसेज पहुँचाते हैं बट नाम नहीं लिखा। ऐसा मत किया करो, मैं आपसे कितनी बारी कहती हूँ, आप अगर जब भी मैसेज पहुंचाएं तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर मेंशन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज लिखने से पहले आप अपना नाम ज़रूर लिखें, उसके बाद जो भी आपको कहना है, जो भी थॉट, कोई बात अगर हम तक पहुंचानी है तो वो पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, सीमा अंसारी जी का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, और आज की सुबह ये गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और दोस्तों आज महिला शक्ति और सशक्ति नेतृत्व की प्रेरणा स्त्रोत्र भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें और देश सेवा में इसी तरह अपना अमूल्य योगदान देती रहें। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कैसी अदाकारा की जिन्होंने बचपन से ही कैमरे का सामना किया है और अपनी मेहनत से और शानदार अभिनय से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं अरुणा ईरानी जी की। अरुणा ईरानी जी का

उनका जन्म 18 अगस्त 1946 को हुआ था। करियर की अगर उनकी बात करें, करियर की मुख्य उपलब्धियां, अभिनय की शुरुआत उन्होंने 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना में 9 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू किया। फिल्म की संख्या हिंदी, कन्नड़, मराठी और गुजराती सिनेमा में 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और उन्हीं की फिल्म का हम एक खूबसूरत गीत आपको सुनवा रहे हैं। और हम सब उनको जानते हैं, वो माँ के किरदार को बखूबी निभाती हैं। तो चलिए उन्हीं की फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवा देते हैं। याद है वो आपको फिल्म दूध का कर्ज, जैकी श्रॉफ जी एंड साथ में मैम बहुत ही खूबसूरत नजर आई थी, अरुणा ईरानी जी, उनकी जबरदस्त एक्टिंग। तो मैं बस वापस आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, आप भी अपने मैसेज हमें पहुंचा दीजिएगा। एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और उनकी एक और बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म है एंड उसी का मैं आपको गीत सुनवाती हूँ, शायद आपको भी पसंद आए।

तो बस मैं वापस आती हूँ एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश खुशी को पहुँचाइएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ।

0: करो।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों अभी समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 11:30। और आज है 18 अगस्त। एंड देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हर दिन अपने आप में स्पेशल होता है, लेकिन आज टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है उस आवाज़ के नाम जिसने भंगड़ा और इंडी पॉप को एक ऐसी पहचान दी जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुना और पसंद किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर गायक दलीर मेहंदी जी की। दलीर सिंह यानी दलीर मेहंदी जी का नाम उनको दलीर सिंह मतलब उनका नाम है, लेकिन इंडस्ट्री में दलीर मेहंदी जी के नाम से उनको जाना जाता है। और आज 18 अगस्त 1967 को पटना बिहार में उनका जन्म हुआ था। एंड संगीत उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि बचपन से ही उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा। उनका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था और उन्होंने बचपन में ही राग और शब्द की शिक्षा मिलने लगी थी। आगे चलकर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की बाकायदा तालीम भी ली। कहा जाता है कि वे बहुत छोटी उम्र से ही मंच पर गाने का सफर उनका शुरू हो गया था। किशोर अवस्था में ही उन्होंने संगीत की गहरी शिक्षा हासिल करने के लिए घर से दूर जाकर उस्ताद राहत अली खान जी से परीक्षण लिया। यही शास्त्रीय आधार आगे चलकर उनकी आवाज की सबसे बड़ी ताकत बन गया। फिर आया साल 1995 और दलीर मेहंदी जी की आवाज ने भारतीय पॉप म्यूजिक की दुनिया में हलचल मचा दी। उनका पहला चर्चित एल्बम था बोलो तारा रारा। इस एल्बम ने उन्हें रातों रात बड़ी पहचान दिला दी और चैनल बी का बेस्ट इंडिया मेल पॉप आर्टिस्ट अवार्ड भी मिला। इसके बाद दर्दी रब रब बल्ले बल्ले और फिर एक से बढ़कर एक उनके गाने उनकी लोकप्रियता और ऊंचाई तक पहुंच गई। एंड खास तौर पर तुनक तुनक तुन जो 1998 में रिलीज हुआ, बाद में इंटरनेट की दुनिया में भी एक ग्लोबल नाम उनका बन गया। एंड दोस्तों, दलीर मेहंदी जी की खास अंदाज वाली प्रस्तुति ने भारत की सीमाओं से बाहर भी खूब लोकप्रियता हासिल की है और उनकी पहचान सिर्फ पॉप और भंगड़ा तक सीमित नहीं रही। उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी अपनी आवाज़ दी। नाना नाना नारे से लेकर रंग दे बसंती, दंगल और बाहुबली 2, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने ट्रैक अपने गाए हैं। जैसे फिल्मों तक उनका संगीत सफर दिखाई देता है। और दलीर मेहंदी जी की खासियत सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं, उनका पूरा अंदाज ही उनकी पहचान बन गया। रंग बिरंगी पगड़ी, लंबे कुर्ते, दमदार आवाज़, ऊर्जा से भरी प्रस्तुति और ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस कि सामने बैठा हर इंसान झूमने लगता है। उन्होंने पंजाबी संगीत और भांगड़ा को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय इंडी पॉप को भी एक अलग पहचान दिलाई। आज हमारी पूरी एफएम की टीम की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दलीर मेहंदी जी को और उन्हीं की आवाज में सुनते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक। बस मैं लौटकर वापस आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुशी आती है कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: अगर

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी यहाँ पर। श्रोताओं, वक्त हुआ है अभी 11:49 और आपके खूबसूरत लगातार बैक टू बैक मैसेज भी आ रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, माया देवी जी, ऋतिक जी और आदित्य कसाना जी, जिला लदावली मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। लदावली जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं, कहते हैं हमारा मन पसंद प्लेटफॉर्म है फिर मुरादाबाद 89.6 एंड गाने तो बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर, बातें भी बहुत प्यारी होती हैं। और आरजी खुशी जी, हम आपका प्रोग्राम रामपुर में इंजॉय कर रहे हैं एंड हार्ट टचिंग प्रेजेंटेशन है आपकी, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नवीन नगर मुरादाबाद से गौरव टेलर जी का, और साथ में ये कहते हैं खुशी जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम, आपका कार्यक्रम हमें अच्छा लगता है, शुक्रिया आपका। और इन्होंने एक थॉट लिखा है आज की सुबह कि किसी को भी दुख पहुँचाए बिना जीवन जीने से सुंदर इस संसार में और कोई दूसरा काम नहीं है। एग्जैक्टली पर आज के टाइम में ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं जो तकलीफ उनको पहुंचाने में खुशी मिलती है। वो सोचते हैं अगर कोई इंसान, कहते हैं ना आज का जो टाइम है उस समय में क्या होता है कि लोग ना अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरों की खुशियों से परेशान है कि सामने वाला इंसान क्यों हंस रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज उसके लिए बारे में उसके लिए कुछ गलत भी मत सोचिए, क्योंकि जो हम करते हैं वो रिटर्न में हमें मिलता है। तो किसी के प्रति ना गलत सोचिए ना गलत बोलिए, अगर कुछ कहना है तो अच्छा कहिए, जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी जो लाइफ हमारी है बहुत प्यारी है, खूबसूरत है, और बहुत लकी हैं हम लोग कि हमें इंसानी रूप में हमें जन्म मिला है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता नहीं ये जीवन मिले या ना मिले, तो जो भी करो अच्छा करो, अपने लिए भी औरों के लिए भी, और बाकी लाइफ में खुश रहो हमेशा ऑलवेज।

और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है. गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. ये मैसेज हमें पहुँचाती है आज की सुबह विकास नगर से पूजा जी, और कहती है कि मैम आप कल क्यों नहीं आए थे. एक्चुअली मैम कल थोड़ा सी हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए हम

थैंक यू, आपने हमें मिस किया। वैसे हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे, हमारा भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, कभी कभी ना कुछ सिचुएशंस ना हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं, बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमेशा प्रेजेंट रहें। और आप सभी के लिए ऐसे ही खूबसूरत कार्यक्रम करते रहें, बस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, आज की सुबह आपने अपने खूबसूरत मैसेज पहुंचाए उसके लिए दिल से शुक्रिया। और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द 3 से 5। आप ऐसे ही बने रहिएगा और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद, आपके लिए ऐसे ही और खूबसूरत यहाँ पर कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते रहेंगे। तो दोस्तों अभी फिलहाल मुझे दीजिएगा अनुमति, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिएगा, यूं ही मुस्कुराते रहिए। खुशी बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेगी, तब तक के लिए बाय।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। अगर

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा खास है, सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रीना। आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दे सके तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
1: धन्यवाद आरजे रीना, और मेरे सभी प्यारी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही एक ऐसे विषय हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफा जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उसकी प्रक्रिया को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलत फहमियाँ झिझक मौजूद है।
0: सच कहूँ सियतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड्स शब्द बोलना भी आसान नहीं होता, लड़कियाँ चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों है?
1: देखो आरजे रीना, ये एक सामाजिक सोच का मामला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जिससे ये कोई गंदगी या शर्म की बात नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हर लड़की और हर महिला के जीवन में एक सामान्य जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
0: मतलब ये सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
1: हाँ, माँ पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
0: ये तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
1: देखिए आरजे रीना, मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड्स को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधनों का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की साफ सफाई रखना और इस्तेमाल की गई सामग्री को सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
0: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम संसाधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती हैं क्या?
1: बिल्कुल आरजेरीना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिलते हैं, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार वे समुदाय मिलकर सुविधाएं सुनिश्चित करें।
0: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
1: बिल्कुल आरजे रीना, बिल्कुल सही समझाया आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी जैसे चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: तो एक और संतुलित आहार कैसा होना चाहिए और हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
1: देखिए आरजे रीना, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विधिवद्धता, आधी थाली में सब्जी हो, साथ में दाल या प्रोटीन जैसे अनाज, रोटी, चावल, और अगर संभव हो तो दूध, दही या हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए, पानी भी पर्याप्त मात्रा में ही पीना चाहिए।
0: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता, बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
1: बिल्कुल आरजे रीना, हमारे गाँव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है वही सबसे अच्छा है, बस हम उसे सही तरीके से अपनाते हैं तो।
0: सेहतिया भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझ पाते जब तक वे किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
1: बिल्कुल आरती रीना जी, मेरे पास एक कहानी है और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ श्रोताओं। हमारे ही एक गांव में एक लड़की रीना की कहानी। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुए तो वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी खुलकर बात ही नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया और कहा, किसी को बताओ मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए और ना ही उसे ये पता था कि कितनी बार बदलना है। वो भी बस उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रहती थी। धीरे धीरे उसे खुजली और जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद ये भी नॉर्मल है। इसी के साथ एक और समस्या थी, रीना का खान पान। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियाँ, फल, ये सब तो बहुत ही कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था, इवन उसे चक्कर भी आते थे। कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आई। उन्होंने लड़कियों से इस विषय में खुल के पीरियड्स के बारे में बात की। पीरियड्स क्या होता है, उसे कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतना खुलकर सब कुछ बता पा रही थी और सारी बातों को सुन पा रही थी। शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्यकर्ता ने उसे समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। उसे सैनिटरी पैड दिए गए और ये भी बताया गया कि आयरन की कमी उसे क्या क्या प्रॉब्लम दे सकती है। और उसके बाद आशा दीदी द्वारा उसे आयरन की गोली दी गई और खाने में हरी सब्जियाँ, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह भी दी गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, समय समय पर पैड बदलना सीखा और अपने खाने में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण हमें इसे आसानी से संभाल सकने में हमारी हेल्प कर सकता है।
0: सच में सिहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
1: बिल्कुल आरजी रीना, और हमारा मकसद भी यही है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
0: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आरजे रीना। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों में भी पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, दहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता है। कई बार वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं। इसका असर उनकी ताकत कम करना, उनकी क्षमता कम करना और उन्हें लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर असर भी पड़ता है। इसका
0: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझते हैं, उसके पीछे भी पोषण की ही कमी हो सकती है।
1: बिल्कुल आरजी रीना, यही बात हम विश्व पोषण दिवस के माध्यम से समझाते हैं और विश्व पोषण दिवस की संदेश से हमें ये बात जोड़ देती है। इसी दिन का मकसद है सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए जरूरी है। और जब हम आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, तो इसका मकसद भी यही है कि सही पोषण पुरुष हो या महिला, हर किसी को मिलना चाहिए। और जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर अ पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड, तो इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसे समाज की योजना बनाएं जहां जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और बिना झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। और इसमें पोषण भी एक बहुत बड़ी कड़ी है श्रोताओं, और बहुत ही मजबूत कड़ी है, यानी कि ये दोनों ही विषय एक दूसरे को जोड़ते हैं।
0: सेहतिया भैया, आपने अनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
1: देखिए अर्जेंटीना, अनीमिया भारत में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य समस्या है, खासकर किशोरी लड़कियां और महिलाओं में इसकी दरें काफी ज्यादा हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं में यह समस्या ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हर मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो ये कमी और भी बढ़ जाती है।
0: तो इसका सीधा मतलब है, अगर हम पोषण पर ध्यान देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही कहा अर्जेंटीना, और बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए दोस्तों जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, दाल और चना, गुड़, मूंगफली, तिल, और अगर संभव हो तो दूध, दही या अंडा या अन्य प्रोटीन के जो स्रोत हैं उनको भी आप आहार में जरूर शामिल करें। फल जैसे केला, अमरूद, संतरा, ये भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज को रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
0: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
1: बिल्कुल सही कहा अर्जेंटीना आपने, और यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक और बात, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वो भी हमें बीमारी का कारण बना सकता है।
0: साथियों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि यह हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती हैं। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
1: याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज की यही शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है,
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए, और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, नमस्कार।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहीं और मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी, उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भाभी ये अभियान क्यों आरंभ किया जा रहा है?
2: देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान दे। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण, स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
1: भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बताइए कि इन शिविर में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी?
2: देखिए, इन शिविर में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी अनीमिया की जांच भी की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
1: शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी क्या?
2: हाँ बिल्कुल, यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चों की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी, साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीका लगवा दिया जाएगा तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
1: भाभी, ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
2: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तिल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तिल कम खाएं, सब्जी, दाल, हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
1: भाभी, पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
2: देखिए, छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जियां, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में रहेगा, बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जियाँ, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहाँ बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहाँ उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
2: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
1: तो भाभी, सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
2: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
1: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
2: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ना पानी, ना शहद, ना दाल, ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
1: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
2: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल, मैश करके खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
1: यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
2: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
2: देखिए, बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दें तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को 2 गुना सहारा मिलता है।
1: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
2: बहुत आसान है। बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें। इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
2: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
1: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
2: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर हैं। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
1: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
2: फायदा सीधा है। स्थानीय पौष्टिक खाद संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गांव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र क्रिया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
2: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकत्र क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
1: और डिजिटलकरण क्या होता है?
2: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
2: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
1: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान, आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
1: दोस्तों, आज के सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं,
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
1: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत से ही लाभ कई प्रोग्राम में दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक विशेष खास मुद्दे पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत से ही लाभ कई के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
3: शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
4: बिल्कुल। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है।
3: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
4: अरे, मतलब बच्चों का भविष्य स्कूल से भी पहले शुरू हो जाता है।
3: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
4: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
3: नहीं, उससे भी पहले।
4: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रही हैं। आखिर कब से?
3: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चों को भी जीवन की मजबूत शुरुआत मिलती है।
4: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वस्थ और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
3: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की ओर ले जाती है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
4: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर इतना जोर दिया जा रहा है।
3: बिल्कुल सही कहा। हाल ही में समापन हुआ पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर से नहीं, बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
4: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
3: बिल्कुल। और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने सेहतिया सिंह और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद आरजे रीना जी। आप सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम।
3: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण है?
5: बिल्कुल महत्वपूर्ण है आरजे रीना, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोज संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है और वह बीमार भी कम पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसी के शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी ही बेहतर होगी।
2: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
5: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसके शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसका मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
2: यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
5: बिल्कुल सही कहा टीकन जी।
3: सिहतिया जी, आपने पोषण तत्वों की बात की, आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, अनीमिया, यानी खून की कमी। आखिर यह समस्या कितनी गंभीर है?
5: आर्जेरीना, ये समस्या बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी चिंता है इस बात की है कि यह महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उनमें खून की कमी है। वे कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता और इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
2: इसीलिए उन्हें हमेशा थकान रहती है।
5: बिल्कुल आरजे, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिलाओं में हो तो जोखिम और भी बढ़ जाता है।
3: किस तरह का जोखिम?
5: बिल्कुल आर्जेरीना, समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चों का जन्म हो सकता है और प्रसव के समय अगर ज्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
3: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोर महसूस करना।
2: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरनाक बन सकता है। अगर माँ अनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
3: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधित जानकारियां पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
3: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए, क्या तैयारी उससे पहले भी जरूरी है?
5: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है, उसे आयरन की कमी नहीं है तो भविष्य में गर्भावस्था में अधिक सुरक्षित रहती है।
2: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
5: बिल्कुल आपने सही कहा।
3: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था, क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध है?
5: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन और डीएच जैसे पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले हजार दिन, आखिर इसका मतलब क्या है?
2: पहले हजार दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के दो साल का होने तक का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौरा मानते हैं। इस दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेज विकास होता है। अगर इस समय पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले, बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है।
5: टीकन जी, अब हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
2: बच्चे के जन्म से पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना, बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जिसे कैलोस्टम कहा जाता है, बच्चे के लिए पहले प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है। ये उसे कई संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, गुट्टी या कोई दूसरा भोजन देने की जरूरत नहीं होती।
3: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए,
5: बिल्कुल आरजे, तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियाँ, फल, अंडे और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए,
5: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जी, मौसमी फल, अंडा, जहाँ परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में करें, धीरे धीरे बच्चे की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता को बढ़ाया जाए।
3: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिलता है।
2: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात यह है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
3: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ हो और पोषित हो।
5: बिल्कुल, अक्सर हम बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह याद रखना हमें चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
3: और शायद इसी वजह से कहा जाता है, अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे होते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है हम ये सोच बदलें, अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वह अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
3: और इसमें परिवार की बाकी सदस्यों की भी बराबरी जिम्मेदारी है। पति, सास, ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें, तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
5: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती है।
3: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
5: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे रीना, जब सही जानकारी और सही व्यवहार के साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
2: श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों का अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन, फॉलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
3: हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
2: और मैं सभी बहनों और परिवार से यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज ना करें, समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
5: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, A&M, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
3: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही याद रहे, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
2: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
5: धन्यवाद आरजे। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
2: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है और जाने से पहले लेंगे हम अपने सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
3: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
5: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
5: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
6: सेहत सही तो लाभ सही।
3: तो श्रोताओं मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
7: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
8: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट

0: 99% with making charges पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
1: नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों, तो आज हमारे साथ हैं आरजे रीना, आरजे कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
2: थैंक यू आनंद। सच कहूँ तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
3: बिल्कुल सही कहा, पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते।
4: रीना जी और कुमकुम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदी हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम होती जा रही है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा,
2: बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी, मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
0: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के अरीना कुमकुम के साथ नहीं है, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदि हो गए कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है, जब वो खुद ही इतना बिजी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
3: बिल्कुल सही कहा, और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसे लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन उसका जो मजा था ना वो एक अलग ही था। अगर मैं शैली जी सबसे हटके बात करूं आप लोगों से गाइज, तो अभी जो ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया और उससे पहले जो चिट्ठियों का ट्रेंड था उसमें क्या था शैली जी, कितना मजा आता था उसमें?
3: उसमें बहुत मजा आता था, उसमें हम वेट करते थे।
0: करेक्ट, और हम भेजने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती थी।
3: अब तो क्या है कि मतलब एक बेचैनी रहती थी, वो हमने आज मम्मी को लेटर भेजा है या पापा हमारे बाहर है उन्हें लेटर भेजा है, तो रिप्लाई क्या आएगा, कब रिप्लाई आएगा, और जो वो रिप्लाई पर तो उन्हें सजो के रखते थे। आज भी लोग पोस्ट कार्ड को सजो के रखे हुए हैं, लेटर बॉक्स जो आज भी हम देखते तो हमें खुशी से महसूस होती है।
0: तो मुझे लगता है कि देखिए सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं। बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं, उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी आपको क्या लगता है?
3: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है।
0: करेक्ट,
3: किसके मन में क्या बात। आजकल लोग आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग, इतना स्ट्रेस बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
0: क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी
3: है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, बेटा आज क्या हुआ ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, या आज आप उदास क्यों है।
0: सही कहा आपने।
2: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
3: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग में होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है, तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
1: जी। और आज बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
3: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे।
1: बिल्कुल,
3: अब बातें ज्यादा होती हैं,
1: रिश्ते कम टिकते हैं।
0: क्या बात है। चलिए दोस्तों ये बातें चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे।
4: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैच टच।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो, और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी, और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है, नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था। Correct. अब सबके कमरों में ही पहुंचा देगा
0: और
1: रूम पे टाइम नहीं है बेटा, हम तुम्हारा रूम में मतलब
0: हाँ, आप रेस्ट करो,
1: आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ, क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था, अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे,
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग
1: तो लेट नाइट आ रही होंगे। लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती
0: हैं,
1: अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है,
2: टाइम ही नहीं है बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट। पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को हमने स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब हो ना कि हम समय पर सोए, समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं। पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है,
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू समझते थे।
0: एग्जैक्टली,
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कही है, तो मतलब सोच बदलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर चीज फोन में ही मत ढूंढो,
2: बिल्कुल।
0: अगर आप घर पे हो, परिवार के साथ हो, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आजकल चैट जीपीटी जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं,
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं। आप लोगों को पहले, अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं थामाया, अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे, डिक्शनरी कम हो गई है, क्योंकि आपने इतनी बातचीत कम हो, आप एवरीथिंग के लिए आप डिपेंड हो गए हो सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, इस पे और उस पे, तो फिर क्या ही होगा, आपके अपने पर्सनल व्यूज ही नहीं रह गए, आप अपने माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, और जहाँ यूज कर रहे हो आप कहाँ कर रहे हो ये तो पता ही है।
0: नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, तो मुझे लगता है कि देखिए दिक्कतें टेक्नोलॉजी से नहीं है, दिक्कतें मोबाइल चलाने से नहीं है, दिक्कतें सिर्फ बात करने से है, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली होनी चाहिए, हम इस इजी के चक्कर में मोबाइलों में इतना घुस गए हैं। आजकल आप देखो ना, घर बैठे बैठे हम चाहते हैं हर चीज आ जाए, आजकल दूध लेने का एक बहाना होता था कि हम सुबह दूध लेने जाएंगे, आजकल ये दूध लेने भी नहीं जाते, क्यों, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
1: पहले चलो ठीक है, कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं निकलना है, कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है, हम लोग पैदल स्कूल जाते थे,
0: सोचो
1: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
2: छोड़ने जाते हैं,
1: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
0: सही कहा आपने, तो दोस्तों मतलब कुल मिला के यह है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार, हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं, हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ पे अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाए तो कौन एक दूसरे से बात करेगा,
2: कोई भी
0: सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
1: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ जाके लोग वहाँ की खूबसूरती नहीं देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए वहाँ की कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये वो ये कोशिश कर रहे हैं कि या कौन सा व्यू हम देख लें, यहाँ पे हमारा फोटो सबसे
2: फोटो,
1: बेस्ट
2: वीडियो
0: कैप्चर करो उसको ही,
1: खाने के टेबल पे खाना रखा है लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने आठ ठीक था, बाद में अगर एक डिश चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट कर लिया वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए,
2: क्यों, हमारा ध्यान तो फोन में होता है, पहले हम फोटो खींचते हैं स्नैप भेजते हैं और फिर वही टाइम हो जाता है चलो चलो ठीक है।
1: टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में, ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
3: जी,
1: तो वो हर मतलब जब भी देखो वो एक सबसे

0: रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में वो, तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोग को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोग को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है।
1: बिल्कुल,
0: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या नेगेटिव चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव भी है इसमें नेगेटिव भी है।
2: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: इस गाने के बाद वेलकम बैक है शहर जाते जाते। रीना कुमकुम, आप लोग क्या कहना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी से, जो लोग घर में बैठ के बातें कम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उन लोगों?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए हर घर में जितने भी मेंबर्स है ना, हर घर में सभी के पास फोन है। तो पहली बात पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास फोन है तो जो बच्चे हैं जो 12th तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको फोन ना दे। अगर आप उनको फोन नहीं देंगे तो वो देखिए और भी आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हमें तो ये पता है ना कि हमने बच्चों को फोन दे दिया, वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आप देखने नहीं जा रहे कि उस कमरे में वो पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप फोन दे भी रहे तो उस चीज का ध्यान रखें कि बच्चा कब क्या किस टाइम क्या कर रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, फोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कई टाइम ना हमें टीचर्स ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों को काम होता है फोन से, इसलिए पेरेंट्स उनकी सुविधा के लिए देते हैं, पर वो ना फोन
1: यूटिलाइज हमें अच्छे तरीके से करना
2: सुविधा
1: चाहिए।
2: के लिए दिए जाते हैं क्योंकि उन सुविधाओं से हम आगे बढ़ सके, अपने अपने करियर के लिए सोच सके, अपने फ्यूचर के बारे में आगे देख सकें कि हमारा पढ़ाई में और चीजों में क्या क्या कर सकते हैं। पर वो डिपेंड इतने हो जाते हैं उस फोन पे, उसके आदि बन जाते हैं एक तरह से।
3: मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब भी वो बच्चों के सामने मोबाइल देखें या खुद भी देखें तो मोटिवेशनल चीजें ज्यादा देखें, जिससे उन्हें कुछ लगे कि हाँ मम्मा या पापा हमें ये चीजें देख दी है, तो उनके दिमाग पे भी वही छाप पड़ जाती है।
4: बिल्कुल,
3: तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे लगे कि हाँ ये चीज ठीक है।
4: और बच्चों को भी टाइम दीजिए, आप खुद नहीं फोन में रहेंगे बच्चे। अब आजकल मैम ये होता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप काम में बिजी होते हैं या फिर फोन चला रहे हो या फिर मासी का फोन आ गया, तो भैया तो समझो बेटा।
3: तो सबसे ज्यादा यंगस्टर को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है इस समय, सबसे ज्यादा स्ट्रेस लोग काउंसलिंग ले रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, कि मुझे उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है। साइड चल गई है, आइए बात करिए।
4: बिल्कुल, अब इंसान वहाँ टाइम दे रहा है लेकिन अपने फैमिली को कम।
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना ड्रामास देखते हैं या कोई भी ड्रामा आप देखते हो कंट्री के बाहर का, उसमें ना एक टाइम दिया जाता है कि नो मोबाइल टाइम, फैमिली का टाइम जो रहता है उस मोबाइल को ना एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप सबको अपनी फैमिली में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए, यहाँ सब फैमिली एक साथ रहेगी, मोबाइल को एक बॉक्स में रख दिया जाए कुछ टाइम के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं यहाँ से जाने की विदा।
0: बिल्कुल, इजाजत लेंगे, लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच जब बदलेगी जब हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी शुरुआत मुझे और आपको ही करनी है श्रोताओं। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है हमारी फैसिलिटी के लिए, इस गवर्नमेंट ने बनाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपने रिश्तों को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए, परिवार को क्वालिटी टाइम दीजिए। और फैमिली से भी कहना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप मुझे सुन रही हैं, वर्किंग लेडी हैं, आप वुमेन वर्किंग वुमेन हैं, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप जो भी कर रही हैं करती रहिए, ऑल द वे बेस्ट। बट उसके साथ ही साथ अगर आप घर जा रही हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के साथ जरूर बिताएं, उससे पूछें आज उसने स्कूल में क्या किया, उसके स्कूल में कैसा रहा उसका टाइम, उसने किसके साथ टाइम बिताया। अगर आप फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्पेशल टाइम डेफिनेटली सेलिब्रेट करें और एक वीकेंड में एक ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें नो मोबाइल, एटलीस्ट एक घंटा ही सही, बट वो आप जरूर करें, कहीं बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, फन करें, बट मोबाइल को थोड़ा सा तवज्जो कम दें, मतलब जब आपको लगता है स्पेशली परिवार के लिए टाइम है। तो ये चीज आप कीजिए, सोच अपने आप बदलेगी, बाकी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी, हम भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं प्रोग्राम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं और आपको जगाएं। बाकी के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनते रहिए, है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिर से बोलेंगे रेडियो
2: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बाय।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: विजिट करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिसपे हम कुछ ना कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, और बहुत ही अल्टीमेट सी वाइब आ रही है मुझे इनके साथ बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
2: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
3: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में, और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
3: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
2: एब्सोल्युटली।
3: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
2: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको definitely मजा आएगा इस conversation में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत happy feel कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम situation में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे doctors होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो questions आप हमें भेजते हैं basically, और आज हमारे पास आप ही के questions हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
3: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जिसे पुराने जमाने में दाई का
2: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
3: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीज, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
2: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबॉडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल दी है, बट उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
3: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली, कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
2: बच्चे को दिखा लाते
3: हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ, देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है, अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो, तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है, शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड,
2: वेरी बैड,
3: तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट, ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे, तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकते, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
2: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं, आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच, आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
3: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर,
2: ठीक है,
3: ठीक है। अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर, ठीक है। इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है, इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले, पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्ट

0: जीरो टू सिक्स मंथ के इंटरवल पे। और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर हैं तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन, ठीक है, और ये लगवानी चाहिए। इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं, और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स आप प्लीज इसे लगवाएं। दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप इयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाई ईयरली आप मेमोग्राफी करा ले। प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
1: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है। आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
0: आई वुड से कि प्लीज लगवाइए, ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही, कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए।
1: Absolutely.
0: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
1: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
0: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम, इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
1: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज HPV का वैक्सीन आप जरूर कराएं। ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को, कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं? पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
0: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से, ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना, जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी।
1: Correct.
0: मंदिर ऊपर हुआ करते थे,
1: right.
0: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं। दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोगों का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की, ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल्स। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते, थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट, पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग, व्हाई कांट वी अपडेट ना।
1: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं.
0: Exactly.
1: तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं.
0: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज. आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज. ठीक है, अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमिनोरिया, यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज.

0: ये सब बीमारियां हैं, अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है। बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा। हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम।
1: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे। आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं। एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज़ से कहीं ना कहीं।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: कांग्रेस गई थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे, तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC CGL परीक्षा 2024

0: 24 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी TDPL को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने TDPL को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो AI द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी दो दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसैया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमार की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
5: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
4: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
5: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
4: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
8: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है महिला मंच शो में और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो लगभग हर घर, हर उम्र और हर महिला की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज का टॉपिक है सोशल मीडिया का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं, लेकिन इनके कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो आज हम जानेंगे सोशल मीडिया महिलाओं की जिंदगी कैसे बदल रहा है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और सबसे जरूरी, इसे स्मार्ट वर्क में कैसे इस्तेमाल करें।
1: हाय दोस्तों, गुड वाली आफ्टरनून है और आपको ही पता है कि अकेले नहीं आते महिला मंच शो में, खुशी और आरजे रीना जरूर आते हैं। जिस दिन आरजे रीना आएगी खुशी भी आएगी, खुशी आएगी उस दिन आरजे रीना भी आएगी, तब हम दोनों आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। और कहते हैं ना, तकनीकी तभी खूबसूरत बनती है जब वह हमारी जिंदगी को आसान बनाए। मुश्किल नहीं, इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन समझदारी के साथ करना होता है। श्रोताओं, कभी कभी हम आपके पास, जैसे हमारे पास फोन आ जाता है, हम क्या करते हैं, फोन में इतने लीन हो जाते हैं कि जो हम काम एक्चुअल में करने वाले थे उसको तो बीच में ही भूल जाते हैं। कम से कम 2 घंटे के बाद हमें याद आता है, अरे यार मतलब क्या काम करना था अबे। तो इसीलिए फोन हमारे लिए, सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और नुकसान वाला है। नुकसान इसलिए है कि हम काम की चीजें ना देखकर रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं। सोचिए, जिस रील्स को आप देख रहे हैं, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा डालिए जहाँ से आपको अर्न भी होएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलती हैं। तो इसीलिए वेस्ट टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप कुछ अच्छा करिए।
0: बिल्कुल रीना, आपने सही कहा है कि सोशल मीडिया पर अपना हम टाइम को हमें खराब नहीं करना है, उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। और हमारे साथ देखिए, मैं खुशी तो हूँ, लेकिन एक खुशी और हमारे साथ में है, तो वो भी कुछ कहना चाहती है इस ब्यूटीफुल सेशन में। तो खुशी, आप क्या कहना चाहेंगी आज सोशल मीडिया को लेकर, हमने ये कार्यक्रम चुकी है।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ आपकी अपनी खुशी, और आज मैं आपको बताऊंगी सोशल मीडिया के फायदे। तो आजकल सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है। महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं, होम वर्कर्स, मेकअप आर्टिस्ट, टीचर्स और आर्टिस्ट अपनी पहचान बना रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग के जरिए नई स्किल्स सीख रहे हैं, हेल्थ, फिटनेस और मेंटल वेलनेस की जानकारी ले रहे हैं, अपनी आवाज और टैलेंट दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यानी अब पहचान सिर्फ शहर तक नहीं, दुनिया तक बन सकती है।
0: अरे वाह, आपने तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है और बताया भी है। अच्छा ये बताइए खुशी, आप सोशल मीडिया यूज करती हैं? ओके, तो सबसे ज्यादा कौन सी एप्लीकेशन आप चलाते हैं?
2: मैं सबसे ज्यादा यूट्यूब यूज करती हूँ। एक्चुअली अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा माध्यम है। देखिए दोस्तों, हमारी ये प्यारी सी सखी भी अभी YouTube से स्टडी कर रही है, सीख रही है, और आप भी फालतू का टाइम ना वेस्ट करके कोई ऐसी चीजें आप देख सकते हैं जिससे आप अपनी चीजों को और ज्यादा, अपनी स्किल को इनहेंस कर सकते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करें सोशल मीडिया। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की चुनौतियों के बारे में। और कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सोशल मीडिया की कुछ परेशानियां भी हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा स्क्रीनिंग टाइम, दूसरों से कंपेयर करना, फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड एंड ऑनलाइन फ्रेंड, प्राइवेसी की समस्या। कई बार लोग सिर्फ दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखकर अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं, होता है ना ऐसा खुशी?
2: बिल्कुल ऐसा होता है।
0: रियल लाइफ हमेशा सोशल मीडिया से ज्यादा खूबसूरत होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? लोग देखिए सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, लड़कियां हों चाहे लड़के हों, तो सब देखते हैं कि अरे ये फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, मुझे भी करना चाहिए, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी स्किल्स हैं, अपने टैलेंट हैं, तो आपकी कॉपी ना करके आप खुद का करें, वो ज्यादा बेस्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
2: मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हर किसी में अलग अलग टैलेंट होता है, तो अपने अपने टैलेंट के हिसाब से सब चीजें यूज कीजिए, क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। जरूरी नहीं है कि कोई और बंदा अगर उसके अंदर टैलेंट है और वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है या कुछ भी ऑनलाइन कर रहा है, तो आपके लिए भी वही ना हो। हो सकता है आप बेस्ट टीचर बन सकते हैं, बेस्ट लॉयर बन सकते हैं, इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है। तो अपने अपने टैलेंट को पहचानिए, ना कि दूसरों की सरीकत कीजिए।
0: बहुत सुपर। अब रीना को भी बोलने का मौका दे देते हैं, वो भी मुस्कुरा रही है बैठी बैठी। तो रीना, आप क्या कहना चाहेंगी, जरा बता दीजिएगा।
1: देखो मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे लिए सोशल मीडिया अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आज के समय में ना चैट जीपीटी भी आ गया हमारे बीच में,
0: एआई का जमाना है।
1: हाँ, और हम कभी कभी सोचने बैठते हैं तो सोच नहीं पाते, तो यही सोचते हैं यार क्या करें। तो देखिए आज के टाइम चैट जीपीटी एआई सबसे अच्छा दोस्त है, जो कि आपको दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जाने ही नहीं देगा जब आपसे आप उनसे बात करेंगी, क्योंकि आज के टाइम में वो सबसे अच्छा वाला दोस्त बन गया है। क्योंकि हर कोई अपनी माँ का अगर नहीं सोच पा रहा है तो चैट जीपीटी से कुछ ना कुछ आइडिया जरूर लेता है, और चैट जीपीटी भी उतना ही काम करता है जितने आप उसको बताते हो। इसीलिए उसको ग्रो करने के लिए आपको भी ग्रो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप सोशल मीडिया से जो चीजें आप कॉन्टेक्ट उठा रहे हो वो सही हो, क्या पता आपके जो आइडिया है जो आपने सोचा है वो और भी ज्यादा उससे बेटर हो जाए। तो इसीलिए सोचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। फोन का इस्तेमाल जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ रील्स देखें, आप वहां से स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे कि खुशी ने भी बताया कि मेरे पास फोन है लेकिन मैं उसको स्टडी के लिए यूज करती हूँ। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ने जा सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, तो उनके पास फोन है घर में, बल्कि उस फोन से देखिए। फोन हमारे पास ये नहीं है कि वो सिर्फ आप कॉल पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, बल्कि आप वहां से स्टडी भी कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल वहां से सीखिए। वहां से कोई भी आपको पैसे नहीं लगेंगे, आप फ्री में, ऑफ कोर्स आपके पास, आप उसको चाहे जितनी बार रीटेक करके देखे आप देख सकते हैं। फोन है, आप उसको स्किप करके भी देख सकते हो, रीटेक भी ले सकते हो, हजार बार करो कुछ नहीं कहेगा वो, बल्कि आपको वहां से सीखने के लिए ही मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप सीख क्या रहे हो, क्योंकि अच्छी चीजें सीखनी है, जरूरी नहीं कि आपको कुछ और चीजें सीखनी है। तो हमारे घर में भी फोन बहुत यूज होता है भैया, और सबसे ज्यादा यूज करने वाली मैं ही लड़की हूँ।
0: अच्छा, आप सबसे ज्यादा, आपने बोला है कि रीना मैं ही फोन यूज करती हूँ, तो आप सबसे ज्यादा क्या फोन में रिसर्च करते हो, क्या देखते हो आप?
1: मैं यही देखती हूँ कि मतलब मैं ज्यादातर न्यूज पर फोकस करती हूँ, क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पे क्या
0: अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। अपडेटेड रहना भी।
1: बिल्कुल, देखो आपके पास फोन है तो उसका यूटिलाइज करो, कि हमें पता नहीं होता ना कि अगले दुनिया में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आपके आस पड़ोस में भी कुछ हो जाता है आपको नहीं पता रहता, लेकिन फोन एक ऐसा जरिया है जो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहता है। तो फोन है उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन अच्छे के लिए इस्तेमाल करिए। और आजकल पता है फोन सिर्फ कॉल चैटिंग के लिए, मैंने जैसे बोला भी था, आप वहां से शॉपिंग भी कर सकते हो, खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, मतलब फोन सिर्फ एक आसान चीज नहीं है, वो आपके लिए बवाल है। घर बैठे बैठे आपके लिए हर चीज वो आपके पास पहुंचा सकता है, बस आपने यूटिलाइज कैसे करना है वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखिए महिलाओं की सफलता की अगर बात करें हम रीना, तो आज हजारों महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट बेच रही हैं, कोई कुकिंग चैनल चला रही हैं, कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है, तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है।
1: अगर आप इनमें से बन चुके हैं तो आपके पास जो भी आइडिया है वो YouTube से आप अर्न भी करने के लिए सीखिए। जरूरी है जो आपके पास स्किल है वो आप ही तक सीमित रहे, आपके आस पड़ोस तक सीमित रहे। सोशल मीडिया और डिजिटल जमाना है, देश दुनिया तक अपनी बातें पहुंचाइए, क्योंकि आपके पास एक आसान जरिया है पहुंचाने के लिए।
0: बिल्कुल, और कहते हैं कि टैलेंट को अब सिर्फ मंच नहीं मोबाइल भी मिल गया है, सबसे अच्छा माध्यम है। और मोबाइल, ऐसा कोई इंसान नहीं है आज के टाइम में खुशी जो जिसके पास मोबाइल ना हो, जो एजुकेटेड है उसके पास भी फोन है, जो अनएजुकेटेड है उनके पास भी फोन है, हर कोई फोन का इस्तेमाल कर रहा है। और आपको पता है कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन हमारे इंडिया में ये अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन इंडिया से बाहर ये चीजें बैन हो चुकी
1: है। नहीं, बैन हो गई है,
0: इंडिया में भी बैन हो गया है ना।
1: कि 16 साल के जो बच्चे हैं, 16 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं।
0: बिल्कुल 18 प्लस नहीं होंगे तब तक वो फोन नहीं इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो ये सबसे अच्छा अच्छी बात है ना यार,
1: पढ़ाई पे फोकस करिए। बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं फिर वो काम नहीं कर पाते, इसीलिए पहले एक चीज पर फोकस करिए। आगे आने वाले समय में आप और अच्छे काम कर सकते हैं, क्या पता और अच्छा प्लेटफॉर्म आ जाए आप सभी के लिए। इसीलिए अभी का जो समय है उसे अपने काम के लिए यूटिलाइज करिए। लेकिन और भी ढेर सारी बातें करने से पहले हम यहाँ पर लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। श्रोताओं, एक बहुत ही प्यारे गाने के बाद लौट कर आते हैं, तब तक बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: हेलो एवरीवन, देखिए प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं। ये खुशी तो यहाँ पर है, एक खुशी और हमारे साथ है, वो भी कुछ कहना चाहती है। आज हमने शो में इतना अच्छा टॉपिक चुना है तो मैंने कहा हम अकेले ही क्यों बातें करें, अपनी खुशी को भी इधर पकड़ कर लेकर आते हैं। तो खुशी आप क्या कहना चाहती हो?
1: जी थैंक यू मुझे यहाँ पकड़ के लाने के लिए। और जो सेगमेंट अभी चल रहा है हम उसी के बारे में,
2: देखो एक मिनट, हम पकड़ के नहीं लाते हैं, जिसके अंदर जो टैलेंट होता है वो हमारे पास अपने आप खींचा हुआ आ जाता है।
1: कि टैलेंट पकड़ के लाया है।
2: अगर श्रोताओं आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो आप भी हमारे स्टूडियो में आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, आपको भी यहाँ पर बोलने का भरपूर मौका मिलेगा।
1: जी तो मैं अब आपको बताऊंगी मेंटल हेल्थ के बारे में, इसके वजह से क्या इशू होते हैं एंड इसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं। सो अगर आपको लगे कि बार बार फोन देखने की आदत हो गई है, बिना वजह एंग्जाइटी हो रही है, लाइक्स और कमेंट्स से मूड बदलता रहता है, तो थोड़ा डिजिटल ब्रेक लेना भी जरूरी है। क्योंकि कभी कभी जब हम एक कप चाय परिवार के साथ बैठ के पीते हैं और बातें करते हैं या खुली हवा में वॉक करते हैं, तो वो जो चीज होती है ना, वो हमें हजार रील्स से ज्यादा खुशी सकती है। तो एक छोटी सी शायरी भी है जिसे मैं बताना चाहूंगी कि स्क्रीन की चमक में खुद को मत खो देना, असली मुस्कान अपनों के बीच ही मिलती है। फॉलोअर्स बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों का साथ कभी मत खो दे देना।
2: क्या बात है,
0: बहुत खूब, बहुत प्यारी लाइनें आपने कही हैं।
2: ये तो बिल्कुल सही बात कही है। और जहाँ तक तुमने फॉलोअर्स की बात करी है, बहुत से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाते हैं, सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो हर तक पहुँचे और आगे बढ़े, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फॉलोअर्स और लाइक्स नहीं बढ़े हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक मन में एक ही झिझक आती है, यार छोड़ देते इस काम को ना, क्या ही जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मतलब वो तो एक तरीके से ये हो गया कि आप वहाँ पर हार मान गए, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। कहते हैं ना, जो आपकी मेहनत है वो एक ना एक दिन रंग जरूर लेकर आती है। आपको कुछ नहीं पता कि आपकी छोटी सी पॉइंट कब किसी को अच्छा लग जाए और आप उसी से ऊपर ग्रो कर जाओ। तो इसीलिए अपने काम को जारी रखिए, हारिए मत, क्योंकि हारना तो जिंदगी में लिखा ही नहीं है। अगर हार गए तो समझिए आप खुद को भी आपने खो दिया है। इसीलिए आगे बढ़ते रहे और सुनते रहिए हमारे रेडियो, जो आप सभी के लिए सुबह से लेकर शाम तक एंटरटेनमेंट करता रहता है। तो खुशी कुछ कहना चाह रही थी।
0: हाँ तो दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही याद रखिए, सोशल मीडिया ना अच्छा है ना बुरा, उसे इस्तेमाल करने का तरीका तय करता है। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर ना मेरा भी कुछ असर हो गया, उसका मेरे ऊपर कुछ असर हो गया है, इस तरह से कि जब भी मैं कोई स्टोरी लगाती हूँ ना अपने इंस्टाग्राम पर, तो मैं क्या करती हूँ, एक घंटे तक तो मैं पहले गाना डिसाइड करती हूँ कि अपने स्टोरी पर गाना कौन सा लगाना है, ट्रैक कौन सा लगाना है। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ, उसके बाद कहाँ जाके मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरी फोटो पर, मेरी डीपी पर, मेरे को मतलब फोटो पर ये गाना शूट कर रहा है, तब मैं उस स्टोरी को गाती हूँ।
2: अच्छा ये बताओ, तुम सिर्फ गानों पर सर्च करती हो स्टोरी लगाने के लिए या कुछ और चीज के लिए भी फोन यूज करती हो?
0: नेक्स्ट मैं अपना कंटेंट निकालती हूँ जो मुझे रेडियो पर प्रेजेंट करना होता है, बहुत सारी तैयारियां मैं सोशल मीडिया से करती हूँ। एंड उसके अलावा मैं न्यूज वगैरह भी पढ़ती हूँ और थोड़ा सा मैं फोन भी चलाती हूँ, लाइक कुछ वीडियोस वगैरह देखती।
2: स्टोरी लगाती हूँ फोन से? नहीं लगाती हूँ,
0: नहीं लगाती तो फोन से ही, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मैं देखो कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा यू नो लाइक कि हाँ बोर हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कपिल शर्मा शो,
2: कपिल शर्मा जब ये खाना खाती है ना तो इसका खाने का जो निवाला है वो कपिल शर्मा के शो देखने पर ही अंदर जाता है, अदरवाइज वो ऊपर ही रह जाता है।
0: अरे अरे ऐसा तो नहीं है यार।
2: अच्छा एक और खुशी है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी खुशी कि आप फोन किस चीज के लिए यूज करती हो?
1: मैं सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए यूज करती हूँ, नेक्स्ट मुझे फोटोज क्लिक करना भी बहुत पसंद है, तो मैं कुछ न तो अपनी या तो खुद की सेल्फीज लेती रहती हूँ या किसी भी जो चीज मुझे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है तो उसकी पिक्चर क्लिक करती रहती हूँ।
2: देखो तुमने अभी पिक्चर की बात करी है ना
1: जी,
2: तो कहते हैं इंसान डेली आपके पास नहीं रह सकते, लेकिन जो गैलरी पिक्चर से भरी हुई है ना वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, यानी कि यादें बन जाती हैं हमारे पास। देखो आज अभी मैं हमारे साथ हो, कल के लिए पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा,
1: सही बात,
2: लेकिन जब चीजें दिमाग में घूमेंगी तो आप उस फोटो को जरूर देख सकते हो कि यार मैं यहाँ गई थी, है ना।
1: वो फोटो सिर्फ एक फोटो नहीं होती है, वो बहुत सारी
2: एहसास होता है हमारा,
1: बिल्कुल
0: यादें जुड़ी होती हैं,
1: एकदम से उसको देख के सब रिमेम्बर हो जाता है, हाँ हमने इस टाइम पे ये किया था, ऐसे मस्ती की थी, वैसे इसको स्पेंड किया था।
2: तो वही बात है ना, पिक्चर सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, महसूस एहसास करने के लिए होता है कि जब भी आप उस पिक्चर को देखते हो आपका जो दिमाग है आपका जो ब्रेन है वो संदेश वही देता है कि आप इस दिन कहाँ पर थे, क्या मूवमेंट चल रही थी आप। तो गैलरी में जो पिक्चर है ना दोस्तों वो भी हमारे याद से डबल दुगना होता है।
1: जी
2: कहना चाहोगी आज हमारे स्टूडियो में आई हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? और जो आजकल के जेन जी हैं जो फोन यूज करते हैं, कुछ रील्स बना रहे हैं वो हार मान जाते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगी?
1: देखिए हार तो कभी माननी ही नहीं चाहिए, चाहे रील्स में हो चाहे रियल में हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश ना वहाँ तक करनी चाहिए जहाँ तक सफलता ना मिल जाए। कोशिश का मतलब ही ये होता है कि जब तक मतलब वो कोशिश सफल ना हो जाए तब तक हमें उसे करते रहना चाहिए। अगर हमने बीच में ब्रेक लगा दिया तो वो हमारी कोशिश है ही नहीं, वो सिर्फ एक ट्राई था जो हमने किया और ठीक है हो गया।
2: मतलब वही बात है ना, सपने सिर्फ बंद आंखों से देखे जाते गाइस, खुली आंखों से देखे जाते हैं और खुली आंखों से देखे जाते हैं सपने वही पूरे होते हैं।
1: बिल्कुल, और सपनों को सिर्फ देखना ही नहीं है, उन्हें हर रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करके पूरे करने की भी कोशिश करनी है,
2: क्योंकि जिंदगी जीने का मौका आपको हर दिन मिल रहा है। हर एक उगता हुआ सूरज आपको एक जिंदगी दे रहा है, नई जिंदगी दे रहा है कि कुछ करो आगे बढ़ो, कुछ पीछे चीजें छूट गई है उसको आगे लेकर आओ, क्योंकि जिंदगी आपको मौका दे रही है। और देखिए श्रोताओं, चाहे आप घर पर काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी करते हैं, चाहे टीचर है, व्हाटएवर आप जो भी जिस फील्ड में हैं, अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया से हम जुड़े रहे आगे बढ़े तो उसके लिए आपको समय तो निकालना पड़ेगा। देखिए समय इतना तो किसी के पास भी नहीं होता है, लेकिन उन्हीं में से अपने लिए समय निकालना पड़ता है, क्योंकि अक्सर जो हम नहीं

0: सुश्री जी की मुझे भी यार ये बोलने का मौका दें, दोनों लड़कियां अपने आप ही बातें की जा रही हैं। मैं
1: देखिए जब हम बोलते हैं तो मौका नहीं देते किसी को, मौका उनको खुद लेना पड़ता है।
0: पर कहते भी है ना कि जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो थर्ड पर्सन को बोलना नहीं चाहिए।
1: नहीं नहीं नहीं, जहाँ काम की बातें हो वहाँ आप घुस जाओ भैया, ये मत देखो कि थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है, जहाँ आपको मौका मिले काम के लिए वहाँ पीछे नहीं हटना चाहिए।
0: अच्छा ठीक है, तो हम पीछे नहीं है, हम आगे आ गए हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे रीना जी भी बात कर रही थी सोशल मीडिया को लेकर, इतनी सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, खुशी ने भी इवन यहाँ पर बताई है, तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि देखिए अगर आपके अंदर कोई स्किल है, चाहे आप मेहंदी आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, या फिर यू नो कपड़े पर आप डिजाइन बनाती हो, और उसके अलावा अच्छा कुकिंग करते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं आप उसको सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाइए, और जो भी आप चीजें, जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं डांस बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मैं बातें बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मैं शायरी बहुत अच्छी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो आप अपना अकाउंट वहाँ सोशल मीडिया पर बना सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो या फिर वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो आपका फेवरेट ऐप हो, आप उस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, और ये चीजें जो भी मैंने भी आपको बताई, कोई भी स्किल जो आपके अंदर है आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे कंटिन्यू जब आप उस चीजों को अपलोड करेंगे तो वो आप तक नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में पहुंचेंगे, और जब पूरे वर्ल्ड में पहुंचेंगी तो आप ऑलरेडी पॉपुलर हो जाएंगे, और वहां से आपको अर्न भी होगा, आपकी स्किल्स फिर आपकी नहीं रहेगी ना, फिर काफी लोगों को आपकी हेल्प, उनको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो चीजें तो चाहिए लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पाती हैं, शायद आपकी एक स्किल किसी और की भी स्किल बन जाए।
2: बिल्कुल, क्या पता जो आप कर रहे हैं उसको देख के सामने वाला भी सीखे, यार वो तो कर रहा है, शायद मुझे भी अपनी स्किल आगे बढ़ानी चाहिए।
0: और वो बड़ी एक प्यारी सी लाइन है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
2: बिल्कुल, क्योंकि इंसान की ना एक फितरत है, वो ज्यादातर देखकर ही सीखता है, एक्सपीरियंस उसे इतने मतलब मिलते हैं उनसे नहीं सीखेगा, लेकिन सामने वाला जब कुछ कर रहा होगा ना तो उससे देख के वो बहुत जल्दी सीख जाता है। तो हमेशा अच्छा करिए, और हो सके तो सिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी स्किल तभी और ज्यादा डेवलप होगी जब आप अपना सीखा हुआ दूसरों तक सिखाएंगे। कहते हैं ना विद्या बांटने से बढ़ती है, तो आपके अंदर कोई भी टैलेंट है उसको छुपाइए मत, निकालिए, निखारिए और दूसरों तक पहुंचाइए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने खुशी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैंने देखा है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर स्किल्स तो बहुत हैं लेकिन वो किसी के सामने नहीं बयां कर पाती हैं।
2: बिल्कुल,
0: कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है जो परमिशन नहीं होती है, लेकिन कुछ लड़कियों को मैंने ऐसा देखा है कि वो चोरी चोरी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करती है, एनहेंस कर रही है, और सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर रही है, काफी अच्छे व्यूज उनके आ रहे हैं, फैमिली की परमिशन नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना और उसमें अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है, आपको करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, अगर गलत कर रहे हैं तो डरना ठीक है, लेकिन जब आप गलत नहीं है तो क्यों डरना, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि चार लोगों का काम तो है कहना, वो कहेंगे, लेकिन आप अगर पीछे रह गए उनकी सोच के तो फिर आप पीछे ही रह जाएंगे, तो इसलिए उनकी मत सोचिए, क्योंकि कभी वो भी उस मुकाम पर थे जहाँ उन्हें भी ऐसी ही चीजों का सामना करना पड़ा, इसलिए शायद आज वो वही है, तो आप उनको मत देखिए, आप अपने आप पे फोकस कीजिए।
1: चलिए श्रोता, हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जित करा है। और
0: अच्छा ये चार लोग कौन है?
1: पता नहीं यार, वो दिकास तक दिखे नहीं है,
0: मैंने सबकी जुबान भी देखा है, मतलब सबकी जुबान से मैंने सुना है कि वो चार लोग क्या बोलेंगे, वो चार लोग कौन बोलेंगे,
1: एक्चुअली में कोई नहीं होते वो।
0: वो चार लोग कौन होते हैं दोस्तों, हमें भी नहीं पता है, अगर आपको पता है तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा।
1: नंबर बता दो पहले, तभी बता पाएंगे।
0: नंबर बता देते हैं 9237896896, ये हमारा मोबाइल नंबर है, और अगर आपका इन चार लोगों से सामना हो गया होगा ना तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा,
1: कॉन्टेक्ट करिए, हम भी मिलना चाहते हैं कि आखिरकार कौन है ये चार लोग, जो कुछ भी बात हो बीच में जरूर आती है, चार लोग क्या कहेंगे,
0: वो लोग क्या कहेंगे।
1: एक्चुअल में देखिए ये हमारी सोच बन गई है कि चार लोग क्या कहेंगे, कोई मतलब बात वही करता है जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है, वो बीच में दूसरों के आगे टांग अड़ाता रहता है कि तुम ये मत करो वो मत करो, तो उनकी मत सुनो यार, वो हमेशा बोलेंगे आपको, वो बोलने के लिए बने हैं, आप काम करने के लिए बने हो, आप काम करो सीधा बात, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपने। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ से फिर होने की इजाजत, श्रोताओ फिर मिलेंगे आपको अगले कार्यक्रम में और अच्छे टॉपिक के साथ, जहाँ पर हमारी गपशप होगी, क्या पता अगली मुलाकात आपसे ही हो जाए हमारे स्टूडियो में। तो आप सुन रहे हैं हमारा रेडियो, तो कोई स्किल है तो आइए, मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में आपका, अपनी
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा।

इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो हेलो फरमाइश में, और मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजे। एंड दोपहर के खूबसूरत सा वक्त, और इस वक्त अगर साथ हो आपके पसंद के गीतों का और आपकी प्यारी प्यारी फरमाइशों का और रेडियो पर अपने जैसी बातों का, तो फिर और भी हसीन हो जाती है ना खूबसूरत सी दोपहर। तो आज आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं श्रोताओं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। क्योंकि दोस्तों, आपकी फरमाइश सिर्फ एक गीत नहीं होती, उसके पीछे छिपी होती है आपकी कोई याद, कोई एहसास, कोई खास इंसान, और हम उन एहसासों को संगीत के साथ आप तक पहुंचाने वाला काम करते हैं। दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते, दिल के बेहद करीब होते हैं। शुरू में छुपी होती है कोई याद और वही गीत पर सबसे खास होते हैं। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं मुझे कॉल करके बताइएगा। मोबाइल नंबर मैं अगेन रिपीट करती हूँ 9837896896। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:05, और बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज मंगलवार का। बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: जय श्री महाकाल।
0: क्या नाम है आपका? सर
1: शिवा लोहर, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ। आपका नेम है श्रोता
0: जी, बताइए कैसे हैं शिवा आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, और आपकी मधुर मधुर आवाज सुन के और भी बढ़िया लग रहा है।
0: जी धन्यवाद सर, बताइएगा कैसा मौसम है आपके साइड?
1: जी मैम देखिए, मौसम तो पानी का बना हुआ, पर पानी गिर नहीं रहा है अभी।
0: अच्छा, मतलब बादल उड़ रहे हैं, बारिश नहीं हुई है?
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओके, तो बताइएगा सर, इतना अच्छा सा मौसम तो है, बस बारिश का इंतजार है आपको, वो भी आ जाएगी। बताइए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मैम मूवी का नाम है एक लड़का एक लड़की
0: जी,
1: और उसमें कुमार सानू जी की आवाज में गाना है, कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ।
0: तो ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवा देते हैं। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, मोस्ट वेलकम
0: जी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आशा भोसले और साथ में कुमार सानू जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर हैं आनंद मिलन जी और लिरिक्स हैं समीर जी के। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। मैं इंतजार कर रही हूँ आपकी कॉल का भी, तो आप बस कॉल लगाइएगा, हमें कोई बहाना नहीं चाहिए।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। कहते हैं ना कि रेडियो की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ आवाज़ अनजान हो सकती है लेकिन एहसास बिल्कुल अपने लगते हैं। आपका एक छोटा सा मैसेज, आपकी एक छोटी सी फरमाइश और उस फरमाइश के साथ जुड़ी आपकी कहानी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और कहते हैं ना दोस्तों कि रिश्तों का नाम देना ज़रूरी नहीं होता, रिश्तों को नाम देना ज़रूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते बस महसूस किए जाते हैं। एक आवाज़ सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए, बस वही रिश्ते दिल में बस जाते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार।
1: दिल का हाल बताना नहीं आता, हमें ऐसे किसी को तड़पाना नहीं आता, सुनना तो चाहते हैं हम उनकी आवाज़ को पर हमें कोई बात करने का बहाना नहीं आता।
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं सर। अपना नाम बताइएगा।
1: जिला रामपुर ग्राम खेचांड से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: एकदम अच्छे मैम, आप बताएं आप कैसे हो और एफएम मुरादाबाद 89.6 में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी सब बहुत ही अच्छे हैं सर। एफएम मुरादाबाद में आप बताएगा कैसा मौसम है आपके साइड?
1: देखिए मैम, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और आपकी दुआएं हैं और ऐसे प्रोग्राम सुन रहे हैं, बरसात हो रही है यहाँ पर रामपुर में, काफी सुहाना मौसम में आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा।
0: अच्छा, बारिश बहुत ज्यादा है?
1: जी मैम, दो दिन हो गए लगातार बारिश हल्की हल्की बरसा हो रही है यहाँ पर।
0: अच्छा, कंटिन्यू हल्की हल्की बारिश हो रही है। ओके, तो बताएं क्या
1: मौसम में आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं तो काफी अच्छा होता है, साथ में चाय पी रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं मैम, आ जाइए यहाँ पे चाय चल रही है मैम।
0: जी शुक्रिया सर, आपने हमें इनवाइट किया। बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं, गर्मा गर्म चुस्कियों के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: देखिए मैम, मैं कहना चाहूंगा हुस्न ए बेनजीर को तलबगार हुए बैठे हैं, हुस्न ए बेनजीर को तलबगार हुए बैठे हैं, उनकी एक झलक को बेकरार हुए बैठे हैं, उनके नाजुक हाथ से सजा पाने को कितनी सदियों से गुनाहगार हुए बैठे हैं।
0: बहुत खूबसूरत है आपकी शायरियां सर, बताइएगा कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: देखिए मैम, जब हेलो फरमाइश कार्यक्रम में रामपुर सुपौल शामिल हो रही है तो मूवी का नाम है बरसात।
0: हाँ जी,
1: और उसमें सुने दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा, कुछ टाइप से बोले।
0: ओके,
1: और जी मेरे साथ में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं।
0: हाँ जी बताइएगा।
1: डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेटंड से मोहम्मद कामिल, मोहम्मद तालिब, और मैं कहना चाहूंगा कि गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे, गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे, और जिंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते हेलो फरमाइश में आपसे फिर कभी मिले।
0: श्योर सर, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं आपकी पसंद के प्यारा सा गीत। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं खूबसूरत सा गीत, लौट कर आते हैं हम, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, 98 378 96 896। बस मैं वापस आती हूँ प्यारे सी गीत के उस पार।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और श्रोताओं, अभी आपने सुना बरसात मूवी का बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक ट्विंकल खन्ना, साथ में बॉबी देओल जी इस खूबसूरत गाने में नजर आए एंड फिल्म भी बहुत ही अच्छी थी। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं आज की दोपहर। हेलो फरमाइश।

0: हेलो, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं राबिया बात कर रही हूँ,
0: जी राबिया जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गोदी से।
0: जी बताइएगा, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी। मैम आप कैसी हो?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा, क्या सुनेंगे आज राबिया?
1: ऐसा दीवाना हुआ ये दिल आपके प्यार में।
0: ओहो, ये तो हमें पता ही नहीं था, अभी पता चला है। अच्छा राबिया, ये गाना किनके साथ आप सुनना चाहते हैं, जरा बताइएगा हमें।
1: जी मेरी दोस्त है रक्षा फातिमा, रुकैया फातिमा, फोस फातिमा, लाइवा काजमी और नजमा।
0: इतने सारे दोस्त हैं आप और हमें भूल गई? लो, कितनी गलत बात है आपकी। ऐसे
1: मैम
0: मत किया
1: आपको
0: करो।
1: भूलते नहीं है हम।
0: अच्छा, आप कहना चाहती हैं अगर भूलती तो मैम आपको कॉल क्यों करते हैं ना?
1: जी मैम आपको तो याद रखती है, 3-3 बजते ही मैम आपकी याद आने लगती है। मैं
0: ओहो, 3 बजे से पहले भी याद कर लिया करो।
1: जी मैम सुबह 10 बजे से याद आने लगती है आपकी।
0: अच्छा चलिए,
1: जी
0: तभी हम बोले कि हमें इतनी हिचकियां क्यों आती हैं, हम पानी पी पी के परेशान हो जाते हैं।
1: जी मैम मैंने सुना था आपकी तबीयत खराब हो गई है।
0: हाँ मैम, तबीयत खराब हो गई थी लेकिन अभी ठीक हो गई है।
1: अच्छा मैम अपना ख्याल रखे करो।
0: जी शुक्रिया, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार हमारे साथ है तो हम ठीक हो गए हैं।
1: जी मैम आप
0: जी
1: ठीक रहती है तो हमें भी अच्छा लगता है।
0: हाँ जी बिल्कुल। और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
1: बाय मैम।
0: बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। मैं बस लौट कर आती हूँ अभी, छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। आप भी मुझे कॉल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और अभी आपने प्यारा सा गाना सुना, सोनू निगम जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़, साथ में अलका याग्निक जी दे रही थी साथ। और अभी हम भी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनका नाम है, वो हम उन्हीं से जान लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका?
1: मैम जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका नेम इशरता मोहम्मद इशरत, आपसे बात कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कैसे हैं इशरत जी आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो जाती है और भी अच्छे हो जाते हैं। मैम कल आप नहीं आई प्रोग्राम में, महफिल अधूरी सी लग रही थी काफी, कल मैंने कॉल नहीं लगाई थी।
0: एक्चुअली कल सर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो इसलिए हम नहीं आ पाए थे, आज आ गए हैं।
1: अब तो सही है मैम तबीयत आपकी?
0: हाँ जी हाँ जी, अभी तो ठीक है
1: मैम, हम आपके लिए बहुत दुआ करते हैं।
0: शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू।
1: और मैम मौसम कैसा मुरादाबाद का, बारिश हो रही नहीं हो रही?
0: सर हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है, मतलब कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि बहुत जोरों से बारिश हो रही है, हल्की बूंदा बांदी कंटिन्यू है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है।
1: कल रात से अभी तक हो ही रही है हल्की मुल्की, रात बहुत तेज थी मैम बारिश।
0: रात बहुत तेज थी हाँ, लेकिन अभी तो फिलहाल करंटली हमारे मुरादाबाद में धूप निकल रही है।
1: हाँ मैम धूप भी निकल रही है, हवा भी चल रही है और हल्की मुल्की बारिश भी हो रही है।
0: हाँ
1: सब रंग का मौसम हो रहा है मैम
0: जी। तो बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे आज इशरत जी?
1: मैम आज दो मूवी है, एक मूवी है बेटा और मैम उसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है सैया से चोरी चुपके, और दूसरी मूवी है मैम बरसात, गाने के बोले आज आजा पिया अब तो आजा देख तो कैसी हालत हुई है। मैम आज हीरो फरमाइश में से, हीरो फरमाइश में इन दोनों में से जो सर गाना पसंद आए प्ले कर दें।
0: ठीक है सर, हाँ जी बताइएगा।
1: सबसे पहले ये है ग्राम खेड़े टांड से मोहम्मद कामिल, और ये है स्वाट से विजय राठौर, और मकसूद भाई ग्राम विजयपुर से साथ में आप।
0: ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं ये खूबसूरत से गाना फ्रॉम द मूवी बरसात से। मैं बस आने वाली हूँ वापस, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, उम्मीद है कि आपका कॉल लग जाएगा, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं ना तो सफलता भी ज़रूर मिलती है दोस्तों।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश शो आरजे खुशी के साथ. और वक्त अभी हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 3:38. हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं बिना किसी देरी के. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश.
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम शमसुल इस्लाम.
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: रामपुर से बात कर रहे हैं
0: मैम. जी बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी आज?
1: गाना सुनना है जान तेरे नाम का, टाइम देगा तुम्हें हमको गया.
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं ये गीत आपको. आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया. तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक. लौट कर आते हैं हम इस प्यारे गाने के उस पार. आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: कोई मिल गया,
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी जान तेरे नाम से। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, हमारे साथ कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा मुरादाबाद से मखदूम होटल बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप? सो
1: अच्छे हैं मैम, आप सुनाओ आप कैसी हो मैम? गर्मी तो फिर हो रही मैम, जैसे बारिश हुई है फिर की गर्मी हो रही
0: है। हाँ जी, उमस बहुत ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, तो बताइएगा। हाँ जी हाँ जी सर, सब बहुत अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा है। आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: मैम एक फिल्म है पद्मिनी, 1942 की बनी, उसकी सहगल जी की आवाज में, बहुत ही पुराना गीत है वो। मेरे माँ जी नेचर पार खादन है उस पार, नैनन मान ओ मेरे माँ जी नेचर पार,
0: नहीं सर आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है ना, ये गाना, ये जो फिल्म आई है ना 1963 में आई थी बंदनी, एस डी बर्मन जी ने मतलब इस खूबसूरत गीत को गाया है एंड साथ में सचिन देव जी ने। जी जी जी
1: जी
0: ओके सर, ठीक है। आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवा देते हैं खूबसूरत सा गीत, आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद आपका। तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा गीत। मैं अभी बस वापस आने वाली हूँ इस प्यारे सी गाने के उस पार।

0: हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और वंदनी मूवी का आपने प्यारा सा गाना सुना जो 1963 में आई थी, और इस खूबसूरत गीत को गाया था सचिन देव वर्मा जी ने एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे सचिन देव वर्मन जी। और अभी हम बात करने वाले हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, आपको भी याद आप से हो, क्या नाम है आपका?
1: मैं जिला रामपुर ग्राम के मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कामिल जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो?
0: जी मैं भी सही हूँ, अच्छी हूँ सर। आप बताइएगा क्या सुनेंगे आज?
1: मैम एक फिल्म का नाम है कोयला।
0: हाँ जी।
1: और गाने के बोल हैं, देखा तुझे तो जीने लगे हम, पाले तुझे तो ना हो मरने का गम।
0: ओके, और ये खूबसूरत से गीत किन के साथ सुनना चाहते हैं आप?
1: सबसे पहले मेरे दोस्त हैं लायबा काजमी, मोहम्मद तालिब परवेज, बसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनीसुर रहमान और मोहम्मद किशर, यही तक सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं कामिल जी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत। ये गीत को खूबसूरत आवाज में गाया है कुमार सानू जी और साथ में अलका याग्निक जी ने। तो सुन लेते हैं ये शानदार गाना, अभी लौटकर हम आएंगे वापस।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आज ये खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, अभी समय हुआ है 4:03 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। आपके पास सभी भी टाइम है प्रॉपर, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कॉल नहीं किया है तो अभी कॉल कर लीजिएगा, कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896 9837896 8 9 6। ये हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर है जिस पर आपको कॉल लगाना है। और अगर आप कोई भी अपने पसंद का गाना सुनना चाहते हैं, इवन किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है। तो बात करते हैं अभी अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार मैम।
0: आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा सर।
1: मेरा नाम अजय कुमार, चाली खत्तर, जिला मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: मैम बढ़िया, आप बताओ मैम, आप कैसे हो?
0: जी हम भी, हाँ जी सब लोग बहुत अच्छे हैं सर। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है काफी समय के बाद, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम काफी समय के बाद कॉल किया, मैम टाइम नहीं लग पाता। बहरहाल आपको 100% रोज ही सुनती हूं।
0: जी थैंक यू सर, बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: मैम आज जंगल लव मूवी का सॉन्ग चला दीजिए। लैला ने कहा जो मजनू से, रांझा ने कहा जो हीर से, वही मुझसे ले दे, ये सॉन्ग सुनना मैम।
0: ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवा देते हैं। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम अजय जी। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी जंगल लव से। और मैं बस वापस आने वाली हूँ लौटकर, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई को बिल्कुल भी मत घुमाइए। और हाँ, मुस्कुराना तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ठीक है।

0: सभी का बहुत बहुत फिर मुरादाबाद 89.6 पर आरजे खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, वक्त हुआ है 4:11। आपने सुना अभी प्यारा सा ट्रैक अनुराधा पौडवाल जी साथ में मनोहर दास जी की आवाज में प्यारा सा गीत। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर क्या नाम है आपका?
1: देवेंद्र यादव बोल रहा हूँ। ये आपका पांडे मुरादाबाद से।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हैं मैम?
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ सर, बताइएगा क्या करते हैं आप?
1: मुझे खेती बाड़ी करते हैं मैम।
0: अच्छा, तो क्या लगाया हुआ है खेती में आपने?
1: खेती में यहाँ पर एक तो पॉपुलर है लकड़ी।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: और गन्ना है।
0: ओके।
1: हाँ बस यही है, गन्ना और गेहूँ वेहूँ कुछ, यही मुख्य फसलें हैं यहाँ की।
0: ओके ओके, चलिए अच्छी बात है सर।
1: मुरादाबाद जिला मुख्यालय से 7-8 किलोमीटर गांव पड़ता है अपना ही रामपुर रोड पर।
0: अच्छा अच्छा, तो कैसा लगता है आपको एफएम मुरादाबाद की कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: बहुत अच्छा लगता है, मैं 2.5-3 साल से रेगुलरली सुनता हूँ इसको सुबह के प्रोग्राम। और हेलो फरमाइश आरजे आनंद के सुबह को।
0: जी जी।
1: और हेलो फरमाइश, दो प्रोग्राम डेली सुनता हूँ मैं।
0: ओके, चाहे कितना भी व्यस्त हो ये दो कार्यक्रम में मिस नहीं करता है ना, ऐसे कहना चाहते हैं आप? ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, ऐसे ही बने रहिएगा। बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: एक मूवी है अनोखा अंदाज, उसका गाना है आपसे पहले ना आपके बाद।
0: ओके, ये गीत आपको सुनवा देते हैं, आपने हमें कॉल किया सर, धन्यवाद आपका। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं सर की पसंद का एक खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी अनोखा अंदाज। एंड इस खूबसूरत से गीत को गाया है अलका याग्निक जी ने। तो बस मैं वापस आने वाली हूँ, लौटकर आप कहीं मचाइए यूं ही मुस्कुराइए। और साथ में अलका जी के कुमार सानू जी भी दे रहे हैं साथ, और ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: लेकिन दोस्तों खुशी यहाँ पर आ चुकी है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये शानदार सा ट्रैक। अभी हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी पसंद का गीत यहाँ पर कौन सा गाना आज सर सुनना चाहते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? असम से बात कर रहे हैं, बताइएगा सर क्या नाम है आपका, दोबारा से बताइएगा एक बार फिर से।
1: मैं रमेश पात्रा हूँ।
0: रमेश जी बात कर रहे हैं, बताइएगा सर कैसा मौसम है असम में?
1: मौसम तो इधर सुहाना है।
0: अच्छा सुहाना सा मौसम है, बताइएगा आप क्या करते हैं?
1: मैं तो टीचर साहब रिटायर हूँ।
0: अच्छा आप टीचर थे अभी रिटायर हैं, अभी घर पर रहते हैं आप फैमिली के साथ?
1: हाँ फैमिली के साथ रहता हूँ
0: जी। और रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं राइट?
1: जो मुरादाबाद सुनता हूँ और मनोरंजक चैनल सब सभी सुनता हूँ।
0: जी जी जी जी, तो बताइएगा सर आज कौन से गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं सुनना चाहूँगा आज मूवी का नाम है आओ प्यार करे।
0: हाँ जी।
1: गाने के बोल होंगे चांद सा पर्दा कीजिए।
0: चांद से पर्दा कीजिए, चुरा ना ले चेहरे का नूर। ठीक है सर, सुनवा देते हैं प्यारा सा गाना कुमार सानू जी की आवाज में।
1: और डेडिकेशन करना चाहता हूं।
0: जी बताइएगा, दो ही नाम ले सकते हैं आप सर, ज्यादा नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है
1: तीन चार नाम ले लूंगा। नहीं अमोल बसुमतारी, बिमोल बसुमतारी।
0: अच्छा
1: है।
0: ठीक है सर, चलिए आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। आपने कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एवरीवन सुन लेते हैं प्यारा सा गाना, लौट कर आने वाले हैं हम। और हाँ अगर आप कार में इस समय में सुन रहे हैं तो बस खुशी यही कहेगी कि केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीन द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी। बहुत ही प्यारा सा भी आपने गाना सुना, चांद से पर्दा कीजिए चुरा ना ले चेहरे का नूर। तो आप खुद अपने आप में एक चांद हैं एंड खूबसूरत लगती हैं, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा कीजिए। जब आप मुस्कुराते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो चलो अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं अक्का बेगमपुर जिला मुरादाबाद से अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: जी बताइएगा अफरोज जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ जी, आप बताओ आप कैसे हो?
0: जी बिल्कुल, हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा क्या कर रही थी इस वक्त आप?
1: कुछ नहीं थी, बस बैठे हुए आपको सोच कर रहे थे।
0: अरे शुक्रिया आपका। और बताइएगा फैमिली में सब खैरियत से हैं आपके यहाँ पर?
1: हाँ जी मेरी फैमिली में सब ठीक है, आप बताओ आपकी फैमिली में सब ठीक है?
0: हाँ जी हाँ जी सब ठीक है, ईश्वर की कृपा है। आप बताइएगा आज कॉल किया है आपने, क्या सुनना चाहती हैं आज आप?
1: जी आज मैं सॉन्ग सुनूंगी ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया।
0: ओके, और ये गीत क्यों सुनना चाहती हैं?
1: बस मन कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, मन करता है सैड सॉन्ग सुनने के लिए, इसलिए मैंने सोचा आज सैड सॉन्ग सुनते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल सुनने चाहिए और अच्छा लगता है क्योंकि इमोशंस सभी के अंदर होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ गानों के जरिए अपने दिल की बात हम कह पाते हैं, राइट?
1: जी ऐसा है ना जी, मतलब ऐसे सॉन्ग सुनने के बाद हमें मतलब कुछ फील होता है।
0: समझ रहे हैं।
1: इसीलिए
0: जी, तो आज कोई शायरी वगैरह सुनाना चाहेंगी आप?
1: हाँ जी मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल सुनाइएगा।
1: ना मिले अगर किसी का साथ तो हमको याद कर लेना, ना मिले अगर किसी का साथ तो हमको याद कर लेना, जब तन्हाई सताए तो हमसे बात कर लेना, खुशियाँ बांटने के लिए तो आपके हजारों दोस्त होंगे, खुशियाँ बांटने के लिए तो आपके हजारों दोस्त होंगे, मगर जब गम बांटनी हो तो हमको याद कर लेना।
0: क्या बात है यार, सुपर, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं आपकी।
1: जी जी साथ में मेरी कुछ दोस्त हैं।
0: जी बताइएगा।
1: मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा, अगर वो सुन रही हो तो कॉल कर ले।
0: ओके।
1: और साथ में मेरी सिस्टर नजमा आपकी दरअसल।
0: ठीक है आपकी।
1: और रामपुर से सबलम भी।
0: ठीक है आपके प्यारे सी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गाना, कॉल करने के लिए शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं प्यारा सा गीत, बस मैं आती हूँ वापस अभी। आप बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ।

0: हेलो एवरीवन, अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना अरिजीत सिंह जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में। एंड तो झूठा मैं मक्कार फ्रॉम द मूवी। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनकी फरमाइश है, वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं आपका रेगुलर होता हूँ, कर रहा हूँ मालावर लेन पार्क से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: मैम मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ।
0: फिट एंड फाइन ही रहना चाहिए सर, बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: मैम आपने जो गाना सुनाया ना, उसके जो आखिर के अल्फाज अरिजीत सिंह ने गाए, बहुत अच्छे गाए।
0: हाँ जी, लिरिक्स बहुत खूबसूरत थे।
1: और जो भी मैं होता हूँ, जिस गाने पे भी अरिजीत सिंह जी हाथ रखते हैं, मैम शायद लगता है कि वो गाना उन्हीं के लिए था, उनका ही गाना था वो।
0: हाँ जी, एग्जैक्टली राइट। जी जी, बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: मैं उदित नारायण जी का गाना सुनना चाहता हूँ, शायद तारों को मोहब्बत अंबर से।
0: उदित नारायण जी और साथ में अलका याग्निक जी की आवाज़ है। ओके,
1: और मैं शायरी आज करना चाहता हूँ।
0: जी तो इरशाद,
1: तेरी यादों में मैंने सामों को टलते देखा है, तेरी यादों में मैंने सामों को टलते देखा है, मेरे यादों ने मुझको पिघलते देखा है, और जो लोग साथ निभाने की बातें किया करते थे, हाँ मैंने उन लोगों को बदलते देखा है।
0: क्या बात है, बड़ी खूबसूरत सी लाइनें हैं आपकी।
1: जी मैम,
0: तो सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत आपको, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: जी मैम थैंक यू। मैं अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखूँ, मैं मौसम चेंज है ना इस समय।
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया सर।
1: जी थैंक यू वेरी मच मैम।
0: तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं प्यारा सा गीत। मैं बस वापस आने वाली हूँ लौट कर एक छोटे सी म्यूजिकल ब्रेक की। उस पर आप भी अगर कॉल लगाना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: कोई मिल गया,
5: कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: देखिए दोस्तों, हमें तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए हम चले आते हैं आपसे मुलाकात करने के लिए एवरी डे, एवरी मॉर्निंग सुबह 10 से 12 एंड अगेन 3 से 5। और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, अच्छा नहीं जानते हो, हो अभी न्यू लिसनर जो कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी ऑन किया है, तो वो खुशी का नाम नहीं जानते हैं, बट खुशी अपना नाम बता रही है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी, जो आती है ना तो आपके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है ऑटोमेटिकली, नाम सुनते ही आ जाती है ना खुशी। हाँ ऐसे ही बस खुश रहिए आप। बाकी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: जी हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपको बताइएगा।
1: मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं रिजवान जी?
1: जिला मुरादाबाद से मदराया।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छे हैं आप?
0: हम भी ठीक है सर, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
1: जी फरमाइश है, ये गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के।
0: ओके तो सुनवाते हैं प्यारा से गीत आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत, मोहम्मद रफी साहब जी और साथ में हैं आशा भोसले जी, तो ये प्यारा सा गाना सुन लेते हैं। बहुत सारे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका पसंद का ये गाना हो सकता है, क्योंकि ओल्ड दिस गोल्ड। तो सुनते हैं प्यारा गीत, मैं बस आने वाली हूँ अभी।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने ये प्यारा सा गाना सुना फ्रॉम द मूवी धर्मकांटा से। और अभी बात कर लेते हैं अपने लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी,
0: सर क्या नाम है आपका?
1: जिला अमरोहा नई बस्ती फतेहपुर से बहादुर हसन सिद्दीकी बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बस अच्छे हैं।
0: और कैसा मौसम है आपकी तरफ?
1: देखिए मौसम तो लगभग आज गर्मी काफी रही है और रात भर बारिश बरसात रही है।
0: हाँ जी, रात बारिश रही है पूरी रात। सही कहा आपने,
1: हल्की फुल्की धूप भी निकल रही है लेकिन गर्मी का एहसास अब भी है।
0: अच्छा, उमस भरा मौसम है।
1: हाँ जी
0: जी बताइएगा सर, आज क्या सुनेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है जुनून।
0: हाँ,
1: एक गाना था प्रेम प्रेम करके, वो मेरे दिल लगा, ये गाने के शुरू से बोला।
0: ठीक है सर, एक गीत आपको सुनवा देते हैं।
1: कुछ नाम थे?
0: जी बस दो ही नाम ले सकते हैं सर आप। ठीक है,
1: शाकिर अली शान से और काम प्रेमिका राम से।
0: ओके ठीक है सर, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक खूबसूरत सा गीत। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: कुछ लड़कियों के लिए, लड़के सिर्फ एक।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:00 यानी कि 4 मिनट हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो गए श्रोताओ इवनिंग मस्ती शो में। बहुत ही बिंदास वाला आपने गाना एंजॉय किया है, हम तो तेरे हो चुके सनम। लेकिन एक बहुत ही प्यारा यानी कि छोटी सी पॉजिटिव थॉट है मेरे पास, तो चलिए आपके साथ साझा करते हैं। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीद हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। क्योंकि देखिए, डिग्री हम कितने भी क्यों ना हासिल कर लें, अगर किरदार अच्छा नहीं है, इंसानियत नहीं है हमारे अंदर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इस ज्ञान का, इस डिग्री का। क्योंकि डिग्री तो हर किसी के पास होता है, लेकिन इंसानियत बहुत कम के बीच होती है। तो इसीलिए डिग्री के साथ साथ अपने अंदर इंसानियत भी बना कर रखिए, ताकि मुश्किल समय में, मुश्किल परिस्थिति में आप किसी के साथ आ सके, किसी के काम आ सके आप। यानी कि दुख में साथ ना हो के सुख में तो साथ रहिए, इतना अपने आप को ज़रूर बनाइए और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करिए। ये सोचिए कि मेरी वजह से कोई मुस्कुराए आज, बेवजह मुस्कुराए लेकिन मुस्कुराए, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, ये मेरी वजह से कम मुस्कुरा तो रहा है। तो इतने अपने किरदार पर विश्वास रखना है। और इसी के साथ एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर कनेक्ट होंगे श्रोताओं, करेंगे ढेर सारी बातें। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:00 यानी कि 13 मिनट हो गए। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है आज रीना के साथ। और इस वक्त अभी आप ऑन द वे हैं, यानी घर ऑफिस से निकल चुके हैं घर के लिए। तो आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे, जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाना है और साथ ही साथ अपना भी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि ये वेदर है यानी कि बरसात का मौसम है। और इस बरसात के मौसम में बस यही कहना चाहेंगे आप सभी से कि जहां पर अगर पानी भरा हुआ हो तो उस इलाके में जाने से बचे, क्योंकि जो जब पानिया इकट्ठा हो जाता है आपको नहीं पता कि वो पानी किस तरीके से, क्योंकि उसमें गंदे नाले के पानी भी हो जाते हैं और जगह जगह पर यानी कि बहुत से फिर कीटाणु भी उससे फैल जाते हैं और इससे बीमारियां फैलने शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ अगर आप भीग भी जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो कोशिश करिए कि आप जल्दी घर पहुँच कर कपड़ा चेंज करिए, अदरवाइज बीमार पड़ सकते हैं। और इस खासकर इन बरसात के मौसम में यानी कि मलेरिया और बहुत सारे फीवर है जो घर कर लेते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई भी लक्षण अपने अंदर दिखाई देता है, चक्कर आना, गले में खुजली होना, थकान फील होता है, या फिर आपको लगता है कि भाई मतलब लो फील होने लग जाता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हम काम करके आए हैं इस वजह से मुझे लो फील हो रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे लक्षण है वो आपको पहले ही संकेत देते हैं कि आपकी बॉडी यानी कि अब अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि घरेलू नुस्खे से बेटर है कि आप एक बार डॉक्टर की सलाह लें और अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में मच्छर के साथ साथ बीमारियां भी इतनी ही घर कर लेती है। इसीलिए अपना ध्यान रखिए, सेफ ड्राइविंग करिए और ज़्यादा हॉर्न आपने बिल्कुल भी नहीं बचाना है। अपने साथ साथ बाहर वालों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इतना आपके कानों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाहर हैं उनके कानों पर जरूर असर पड़ता है इसका। तो पेशेंस के साथ गाड़ी चलाइए। एक्चुअली ये होता है कि हम जब ऑफिस से निकल जाते हैं तो दिमाग में बस एक ही बात चलता रहता है कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे घर पहुँचना है, जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है, और इस चक्कर में हम जल्दबाजी करते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ गाड़ी चलाइए और अपने घर पहुंच जाइए। चलिए एक और गाना सुनते हैं, अच्छे वाला।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
2: सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज़।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ। और सच में आप सभी की लत तो लगी जाती है जब डेली, अगर देखो जिस दिन शो करने ना हो ना, सच में मन नहीं लगता है। चाहे आप घर पे कितना ही कोशिश करो कि बिजी रहने के लिए, लेकिन बिजी भी किसी काम का नहीं होता है। बस यही मन होता है कि भाई 5 बज चुके हैं शो के टाइमिंग पर, बस आप सभी के साथ कनेक्ट होने आ जाओ। दिस साइड आरजे रीना। और समय की बात करूँ तो 5 बजकर यानी कि 24 मिनट हो चुके हैं। और जैसे यानी कि मॉनसून शुरू होता है श्रोताओं, बीमारी भी शुरू हो जाती है। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ही था, डेंगू का भी खतरा, यानी कि अब डेंगू के खतरे केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। और इसके जो लक्षण होते हैं ना, वो भूल कर भी नज़रअंदाज ना करें। डेंगू के मच्छर यानी कि डेंगू फैलता कैसे है? डेंगू संक्रमित एडिस मच्छर होते हैं जिसके काटने से ये फैलता है। मानसून में जमा पानी मच्छरों के लिए प्रजनन की जगह बनाता है। और साथ ही साथ डेंगू के आम लक्षण होते हैं जो पहचानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको तेज फीवर, तेज सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में या जोड़ों में बहुत पेन होना, मिचली या उल्टी आना, शरीर में यानी कि एलर्जी रिएक्शन दिखना, और कमजोरी, थकान फील होना। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो इन संकेतों को बिल्कुल भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। साथ ही साथ तेज पेट में दर्द, लगातार उल्टी, तेज सांस चलना, मसूड़ों में खून आना और नाक से खून आना, उल्टी या मल में खून आना, बेचैनी या अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, समझ लीजिए कि ये डेंगू के खतरे हैं। यानी कि बुखार उतरने का मतलब ये नहीं कि डेंगू का जो फीवर है वो टल गया है, लेकिन डेंगू के जो बुखार है ना, यानी कि कम होने के बाद भी क्रिटिकल फेज शुरू हो सकता है। आमतौर पर ये शुरुआती लक्षण यानी कि 3 से 7 दिन के आसपास हो सकते हैं, इसीलिए इसे यानी कि नज़रअंदाज आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपने जितना हो सके कोशिश करिए कि आप डॉक्टर से संपर्क करें। और साथ ही साथ डेंगू से बचाव कैसे करना है, इसका भी बिल्कुल साफ समूह तरीका है कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, कूलर या गमले में पानी की इकट्ठा ना होने दे, उनको भी साफ करते रहे, पूरे शरीर को ढक यानी कि फुल स्लीव के कपड़े पहने आप, ताकि आपको आप तक और मच्छर पहुंच भी ना पाए। रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, क्योंकि बरसात के मौसम में आप जितना अपने आप को संभाल कर रखेंगे उतना ही आप ठीक रहेंगे। और देखिए, पानी भी घर में रखते हैं ना अगर आप, तो उस पानी को ढक कर रखिए, खुले में पानी को ऐसा ही मत छोड़ दीजिए। और बासी खाना मत खाइए, क्योंकि ये सब आपको बीमार कर सकता है। शाम होते ही यानी कि खिड़की दरवाजे को कोशिश करिए कि बंद करके रखें, और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, और अपने आसपास की सफाई बहुत मैटर रखता है श्रोताओं, तो सफाई इसमें जितना हो सके उतना रखिए। और अगला गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:35 हो चुके हैं। और देखिए, आप मूवी देखने के शौकीन हैं तो यानी कि 14 अगस्त को ही रिलीज हो गई है बंटवारा 1947 कि जो हिस्ट्री है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और ये मूवी यानी कि सनी देओल और प्रीति जेंटा कि इसमें बहुत ही शानदार इन्होंने किरदार निभाया है। यानी कि 1947 में बंटवारे के समय किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और कैसे उस समय इंसानियत और भाईचारे का संदेश था, यानी कि भाईचारा उस टाइम बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम में क्या है कि बस दिखावे के लिए भाईचारा स्टेटस लगा देंगे बस इससे आज। और साथ ही साथ दुख में कोई अगर फ़ोन करेगा ना, किसी को फ़ोन नहीं उठाते और कहते हैं अरे भाई मेरे पास ना अभी काम है तो अभी मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जो ये बंटवारा मूवी 1947 के जो रिलीज हुई है इसकी बहुत तारीफ की जा रही है। उसका ये जो मूवी है बहुत ही शानदार है और साथ ही साथ इस मूवी ने अभी तक यानी कि 25.15 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, वो भी एंजियाम में। तो अभी तक आपने बॉर्डर यानी कि बंटवारा 1947 मूवी नहीं देखी है तो बिल्कुल जाइए, देख कर आइए। सन्नी पाल जी की मूवी है और भाई इन और प्रीति जेंटा इनके साथ है तो ये मूवी तो वैसे भी खूबसूरत और शानदार होने वाली ही है। और साथ ही साथ निर्माता की बात करूँ तो इसमें आमिर खान यानी कि बेहतरीन फिल्म के लिए बधाई दी गई है। और इसके निर्देशक हैं यानी कि संतोष जी। तो भाई ये मूवी तो देखना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार जरूर चलेंगे मूवी देखने। आप सभी चलेंगे मेरे साथ तो बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं, श्रोताओं नंबर है 9837896896। लेकिन टिकट के जो पैसे होंगे ना वो आपको ही देने पड़ेंगे, ये याद रखिएगा। चलिए लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे। बने रही आर्जरीना के साथ और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हाँ, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया था कि कुड़िया शहर दिया। दिलेर मेहंदी जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना, और आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे है जी, यानी कि 18 अगस्त आज ही के दिन इनका जन्म, यानी कि ये इनका जन्म हुआ था बिहार पटना में 1967 में, और ये सिंगर है यानी कि पंजाबी पॉप के मशहूर। जोशीली आवाज में इनके, दिलेर मेहंदी जी की आवाज यानी कि हर लोगों के दिलों में राज करती है, और जो इनके गाने होते हैं ना भाई साहब, बड़े ही लाजवाब होते हैं। संगीत उन्होंने परिवार से ही सीखा, यानी कि उनके फैमिली मेंबर में थे संगीत में, तो इन्होंने अपने घर से ही संगीत सीखा, और बचपन से ही इनको संगीत सीखने की मतलब एक लगन थी। जब फैमिली में ऐसा बैकग्राउंड होता है ना, तो सच बताओ थोड़ी लगन भी जाती है कि हाँ मुझे भी संगीत सीखना है, गाना सीखना है, सिंगर बनना है। तो फैमिली बैकग्राउंड आपको बहुत कुछ सिखाता है श्रोताओं। और इनका जो गाना आया था 1995 में एल्बम, यानी कि बोल तरा रा रा रा, हर कोई गाने के शौकीन है, और साथ ही साथ जो घरों में भी ये गाना बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद तुरुक तुरुक तुरुक इनका गाना आया, हो जाएगी बल्ले बल्ले गाने जैसे, बहुत दिलों के, हर किसी के दिलों पे राज करते हैं। और शादी में इनके गाने ना प्ले हुए भैया, तो मतलब शादी भी अधूरी लगती है। हो जाएगी बल्ले बल्ले तुरुक तुरुक, ये गाने तो बजते ही बजते हैं शादी में। और साथ ही साथ अगर बॉलीवुड की बात करूँ, तो इन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत गाने गाए हैं, लेकिन इनका सबसे फेमस फैंटास्टिक वाला गाना रहा है ना ना ना ना ना ना ना ना नारे नारे, जो गाना मैं आपको सुनाऊंगी अभी, बिंदास रहिए। तो हमारी पूरी रेडियो फैमिली की तरफ से दिलेर मेहंदी जी के, यानी कि उनके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपके गाने हैं ना भाई साहब, माइंड ब्लोइंग वाले इनके गाने हैं, हर किसी को इनके गाने पसंद आते हैं। और श्रोताओं, आज इनका बर्थडे है, तो आपके पास एक लकी और गोल्डन चांस है कि अगर आपके इनके कोई भी गाना पसंद हो, तो आप मुझे बेधड़क बिंदास होकर महसूस कर सकते हैं कि आज मुझे दिलेर मेहंदी जी का ये वाला गाना सुनना है, क्योंकि मैं भी इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो आज मैं इनके गाने आपको सुनाऊंगी, अगर आप महसूस करके बताएंगे कि मुझे इनका ये वाला गाना सुनना है। तो चलिए, बाकी हमारी रेडियो की टीम की तरफ से इनको हैप्पी वाला बर्थडे, आप सभी की तरफ से भी हैप्पी वाला बर्थडे, और आज जिनका जिनका भी बर्थडे है उनको भी अ वेरी वेरी हैप्पी वाला बर्थडे। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, न न न

Let's go crazy.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो देखिए 6 बज चुके हैं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है श्रोताओं। और जानेंगे आगे कि देखिए अगर आप जमीन लेना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम जल्दबाजी कर बैठते हैं और हमें पता नहीं होता, लेकिन बाद में उसका भुगतान काफ़ी ज़्यादा झकझोर देता है। तो अगर आप जमीन लेने जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए, सोच समझ कर खरीदिएगा, क्योंकि जमीन अगर आप खरीदते हैं उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो इसके बारे में हम भी जानेंगे बस एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और लौट कर आएंगे श्रोता। बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि बिल्कुल भी रेडियो की सुई आपने नहीं घुमानी, आरजोरीना के साथ कनेक्ट रहना है। Only on FM Muradabad 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
3: चलो पीछे।

0: इश्क दी गली बिच कर एंट्री, इश्क दी गली बिच कर एंट्री, ओ इश्क दी गली बिच कर एंट्री।
1: लेकिन आप एंट्री कर सकते हैं श्रोताओं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूं तो 6:10 हो चुके हैं। और अब हम बात कर रहे हैं यानी कि प्रॉपर्टी, जमीन आप लेने जा रहे हैं तो किन बातों का आपने ध्यान और साथ ही साथ आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले यह पता करें कि जमीन वास्तव में किसके नाम पर है और बेचने वाला ही उसका असली मालिक है या नहीं, ये जांचना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जमीन के पुराने कागज, कम से कम 30 साल का रिकॉर्ड जरूर देखें। खसरा खतौती और नक्शा देखकर यह भी जांचे कि सरकारी रिकॉर्ड में जमीनी यानी कि किसी के नाम दर्ज है या नहीं। यह भी पता करें कि जमीन पर कोई झगड़ा, मुकदमा या कर्ज तो नहीं है। अदरवाइज ये आप नहीं करते भैया तो मुकदमा भी आप पे लागू हो जाएगा, लोन जो भी कुछ कर्जे हैं वो भी आपको ही भरने पड़ जाएंगे। इसीलिए ये जो बातें हैं आपने जरूर ध्यान रखनी है इसकी। ये नहीं कि थोड़ा सस्ता मिल रहा है भैया चलो ले लेते हैं, सस्ते के चक्कर में आप ऐसे चक्की में पिस जाएंगे ना, सो आपको भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। जमीन खरीदने के बाद यानी कि उसे अपने नाम दाखिल खारिज जरूर करवाए, सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम जरूर दर्ज करवाए। जमीन खरीदने से पहले मौके पर जाकर उसकी लंबाई, चौड़ाई और चारों तरफ की सीमा भी जरूर नापवा ले ताकि कागज और असली जमीन में कोई फर्क ना रह जाए, कोई अंतर ना रह जाए। पता चले कि जमीन नापने पर कुछ और आ रहा है, कागज में कुछ और लिखा है, तो इसमें दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी भी जानकारी बहुत जरूरी है। रजिस्ट्री के समय सरकार के हिसाब से लगने वाला पुराना स्टॉप शुल्क जमा करें और रजिस्टर ऑफिस में सही तरीके से रजिस्ट्री करवाएं। ये करवाना बहुत जरूरी है। और हमेशा याद रखिए, कागज जांचे बिना जमीन ना खरीदें, थोड़ी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। पता चले कल को कि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है तो ऐसा ना हो, क्योंकि इस टाइम स्कैम चला हुआ है बहुत ज़्यादा। सो आपको भी कब आप झांसे में पड़ जाएंगे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। अगला इंसान कह रहा है कि नहीं नहीं मैं आप तुम्हें इतने कम पैसों में दिलवा दूंगा, तुम पहले पैसे जमा कर दो। तो ये गलती तो आपने बिल्कुल नहीं करनी कि पहले मैं पैसे जमा करवा देता हूँ। पता चले जिसने आपके पैसे लिए फुर्र हो गए यहाँ से और आपके नंबर सब कुछ ब्लॉक कर दिए, तो आप उसको कहीं ढूंढ भी नहीं पाओगे। और साथ ही साथ जमीन जब खरीदने जाए तो अपने साथ कम से कम 4-5 को ऐसे इंसान को लेकर जाए भाई जो ऐसा लगे कि हाँ इनका दबदबा है। ये भी बहुत जरूरी है आज के समय में ना। और चलिए फिलहाल एक गाना सुनेंगे, उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं आप सभी के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन बातें करने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया। अरे बाबा,
2: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120+ रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: करो।
1: हाँ जी, और कुछ मैसेज भी हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी। और इनका कहना है कि रीना जी, बारिश के बाद आपने गर्मी करवा दी, गलत। अब देखिए जी, बादल तो ऐसे छाते हैं जैसे कि इतनी तेज बरसेंगे कि बस कूलिंग वाला फीलिंग आएगा, लेकिन ये बादल जो होते हैं ना कहीं और जाकर बरस जाते हैं। देखिए, लेकिन ये वेदर के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 21 तारीख तक बरसात आने की संभावना है, लेकिन ये नहीं पता कि किस इलाके में बरस जाए। यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और भैया, रात का जो मौसम था ना, बारिश हो रहा है, मज़ा ही आ गया। आज भी ऐसा हो जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं और उसके बाद और भी मैसेज है वो भी शामिल करेंगे और आपके लिए कड़क सवाल भी लेकर आएंगे।

0: आ गए हैं जी आप सभी के लिए एक और ताजा खबर लेकर। अगर आप दुकानदार है तो ये खबर आपके लिए है, जरा कान खोलकर सुन लीजिएगा क्योंकि आज रीना आप सभी के साथ कनेक्टेड श्रोता और समय की बात करूँ तो 6:24 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में कनेक्टेड जी।
1: है मुंबई दिल्ली दिया कुड़िया रात भर नहीं सो दिया
0: जी, तो अब आपकी

उड़ने वाली है, अब नींद कैसे उड़ने वाली है ये बताना बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि पता चले कि अगली बारी आपकी हो, ऐसा ना हो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, बताना बहुत जरूरी है। देखिए आप खासकर जो जंक फूड बनाते हैं, चाउमीन, बर्गर, समोसे, उनके लिए ये बात है कि ये अपडेट आई है बनारस से। ये कहा जा रहा है कि बनारस में एक भैया गए समोसे की दुकान पर समोसे लेने के लिए, लेकिन वहां पर क्या हुआ, समोसे वालों ने बोला कि अभी अभी बनाए हैं तो यही ले जाओ, लेकिन दुकानदार ने जिद लगा लिया कि नहीं मुझे अभी यानी कि गर्म समोसे चाहिए, मुझे नहीं पता। दुकानदार ने मना कर दिया और उसने क्या करा, केस दर्ज करवा दिया। तो भैया इस चीज को ध्यान रखें, समोसे पहले बनाकर ना रखे, यानी कि ताजे ताजे समोसे बनाए और उनको ताजे ताजे समोसे दीजिए, चाहे वेट करवाना पड़ जाए, लेकिन ठंडे समोसे नहीं देने हैं। भैया भाई साहब ने बोला कि मैं ठंडे समोसे दूंगा, गर्म समोसे नहीं दूंगा, अभी नहीं बनाऊंगा तो तुम ले जाओ, लेकिन उन्होंने माना नहीं, केस दर्ज करवा दिया है। अब गलत बात है जी, देखिए दुकानदारी भी करो, ऊपर से केस दर्ज भी कर दिया। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर किसी को ठंडा नहीं पसंद होता है, गर्म ही चाहिए होता है। तो आप भी थोड़ा रेस्ट आपको भी मिल जाएगा, जो दुकान खरीदने आएगा वो थोड़ा वेट तो करेगा, एटलीस्ट उसको पता चलेगा कि हाँ भाई बनने में टाइम लगता है, इंतजार करो। अगर गर्म लेकर जाना है तो, ना ठंडे लेकर जाना तो ले जाओ, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। चलिए फिलहाल एक कड़क सवाल लेकर आने वाले हैं आप सभी के बीच, फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं, उसके बाद लेकर आएंगे कड़क सवाल।

0: हाय क्या बात है जी। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसे सुनने के बाद बिल्कुल भी रुका नहीं चाहता है भाई साहब, डांस करने का ही मन करता है। आर्जेरीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और इसी बीच में आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ कड़क सवाल। अब कड़क सवाल क्या होने वाला है, यानी कि इसका पहले बहुत इस्तेमाल किया जाता था, फॉर एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। फिलहाल आज का कड़क सवाल है, एक थी रानी सजी सजाई, हाथों से आंसू बहाई, धीरे धीरे छोटी होते जाए, कौन है वो? आपने मैसेज करके बताना है जी। नंबर है 9837896896 पर। और मैं आपको बता दूं, जब बिजली चले जाती है ना तो इसी को ढूंढा जाता है। क्या है वो आपने सोचना है और मैसेज करना है 9837896896 पर। एक बार और बताती हूँ, एक थी रानी सजी सजाई, हाथों से आंसू बहाई, धीरे धीरे छोटी होती जाए, कौन है वो? सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल एक और गाना आप सभी के बीच, लेकिन गाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

देखिए, फोटो खिंचवाना बहुत जरूरी है क्योंकि इंसान साथ रहे ना सहे, लेकिन पिक्चर फोन में जरूर कैच होना चाहिए। आज जो रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, इवनिंग मस्ती शो में और समय की बात करूँ तो 6:37 हो चुके हैं। और देखिए, जो बच्चे यानी कि ज़्यादा फीस देकर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, अपने स्टडी नहीं कर सकते हैं, नीट और जेई की जो कोचिंग है उसको नहीं अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फ्री सेवाएं उपलब्ध होने वाली है। और वो कब से होने वाली है वो भी बताएंगे। अरे आप बेधड़क बिंदास रहिए, आरजे रीना के साथ है तो बिल्कुल बताएंगे। लेकिन आज का कड़क सवाल भी मैंने आप सभी से पूछा है, भैया उसका भी तो आंसर देना है अपने, सोच समझ कर, यानी कि सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन हमारा है, एक थी रानी सजी सजाई, हाथों से आंसू बहाई, धीरे धीरे छोटी होती जाए। और ये भी बता दूं, व्हाइट कलर का होता है, लाइट जाती है तो उसको जलाते हैं। भैया अब तो सोच लीजिए आखिरकार क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी महसूस करिए। और साथ ही साथ नीट और जेई के अगर आप यानी कि तैयारी करने वाले हैं तो उसके लिए आप फ्री सेवाएं कहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं वो भी बताएंगे। बस बने रहिए आर्चोरीना के साथ, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो समय हो चुका है यहाँ पर, यानी कि 6:46 हो चुके हैं। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम बात कर रहे थे, यानी कि देखिए, जो भी नीट और जेई की जो एग्ज़ाम यानी कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं कि वो कैसे कर पाए। और इसका जो सुविधा है ना, सिर्फ यानी कि वही उठा सकते हैं, यानी कि मिडिल क्लास बोल लीजिए, जो इतने ज़्यादा ज़्यादा फीस नहीं जमा कर सकते हैं उसके लिए, यानी कि सेवाएं हैं, यानी कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है नीट और जेई के जो तैयारी करने वाले हैं।

0: एआई के साथ यानी कि ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए शुरू हो जाएगी। प्लेटफॉर्म है यानी कि 2 अक्टूबर से ये कहा जा रहा है कि शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि मुख्यमंत्री अभय उदय योजना के तहत आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और साथ ही साथ जो भी आप जेई नीट की परीक्षा शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आपको विकल्प जो यानी कि सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होएगा और साथ ही साथ उसके बाद आप सभी की जो क्लासेस है वो शुरू कर दी जाएगी। और इसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि बस ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और अपने सपने को पूरा करिए। और साथ ही साथ आज का कड़क सवाल भी बहुत आसान पूछा है मैंने, क्योंकि अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज की ही है। यानी कि एक थी रानी, सजी सजाई हाथों से आंसू बहाई, धीरे धीरे छोटी होती जाई। कौन है वो जो छोटी हो जाती भैया, कितनी बड़ी हो और उसको जला दो लेकिन धीरे धीरे वो पिघलती पिघलती छोटी हो जाती है। व्हाइट कलर का होता है, बिजली जाने के बाद इसको जलाया जाता है, उजाला देता है घरों में। इसका नाम बताना है आपने और मैसेज करना है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है। एक कमर्शियल एड ब्रेक के बाद और साथ ही साथ म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम आप सभी के साथ फिर से कनेक्ट होंगे श्रोताओं। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, अरे आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आखिरकार इसका राइट आंसर क्या है।
1: योर ट्यून इन टू एफएम मुरादाबाद 89.6 FM। सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर।

दिखावा। चलिए जी, फिलहाल देखते हैं कि किनका हमारे पास राइट आंसर आता है या फिर अभी भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, इवनिंग मस्ती शो में समय की बात करूं तो 6:56 हो चुके हैं। और आज का कड़क सवाल था हमारा, एक थी रानी सजी सजाई हाथों से आंसू बहाई धीरे धीरे छोटी होती जाए। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर हमारे पास चिन चिने किनका आता है।

बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट होते हैं और ये राइट आंसर भैया आ गया। इनका कहना है कि मोमबत्ती है। विक्की सागर जी का भी कहना है कि मोमबत्ती। मुरादाबाद यूपी से यानी कि रणवीर सिंह जेठालाल जी के कनेक्ट हो गए हैं और आपके प्रोग्राम में हम शामिल है और राइट आंसर होता है मोमबत्ती। हुसैन जी कनेक्ट हो गए हैं दौलतबाग मुरादाबाद से और राइट आंसर पहुंचाते हैं मोमबत्ती। लक्ष्मी जी और बबली अंजान जी गीता कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि आपको प्यार भरी गुड इवनिंग और साथ ही साथ राइट आंसर होता है मोमबत्ती। पीयू जी मुरादाबाद से कनेक्ट हो गई है और इनका कहना है कि राइट आंसर है मोमबत्ती। जैसा मैम आपने बताया व्हाइट, तो मेरे दिमाग में आया कि व्हाइट तो मोमबत्ती होती है, तो मैं क्यों ना मैसेज कर दूं। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए दीपिका जी कनेक्ट होती हैं और बुद्धि बिहार से और इनका कहने की राइट आंसर है मोमबत्ती। ओके, मोमबत्ती राइट आंसर है। चलिए जी अगली मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ यानी कि पूनम जी कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से और इनका कहने की राइट आंसर होता है मोमबत्ती। अक्सर जब हमारे घर में बिजली चली जाती है ना मैडम, तो मोमबत्ती ही जलाई जाती है। क्या बात है, मोमबत्ती सहारा होता है हमारा, है ना जी। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है पारुल जी का और इनका कहने की राइट आंसर होता है मोमबत्ती। लेकिन इवनिंग मस्ती शो के विनर बनते हैं बबलू सनी मुंबई महाराष्ट्र से और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। हम कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
1: और हूँ आपकी दोस्त प्राची।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद।
2: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है
1: दोस्तों। उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गाँव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
1: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
0: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद, मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देसी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गांव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, कान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं, उसको शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं, इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया, इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख खा देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था, और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात के कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है?
1: बहुत कुछ, सुनिए। छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी गांव का युवा अब अपने जिले में ही काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
1: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता
0: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
0: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
0: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हम दोनों की तरफ से नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जल्दी मिलेंगे श्रोताओं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: कहते हैं कि ये दुनिया के सारे रंग हमारी आंखों से ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर यही नजरें धीरे धीरे धुंधली होने लगे और हमें इसका पता भी ना चले तो क्या होगा। डायबिटीज यानी शुगर सिर्फ दिल किडनी या शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आंखों की रोशनी पर भी गहरा असर डालती है। आज हम इसी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और आज आपकी आंख के पर्दे के विषय में तमाम छोटी छोटी बातों पर आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू FM मुरादाबाद। जोरदार तालियां। हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं।
1: थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इस चीज के लिए, और आई थिंक ये बहुत जरूरी है हमारे सारे
0: जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं,
1: बिल्कुल लिसनर्स हैं, हाँ जी, हाँ उन लोग के लिए बहुत जरूरी ये मुद्दा है जो कि पता होना चाहिए।
0: क्योंकि मैम होता क्या है ना ईशा मैम, मैं बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि आंखों को सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि आंखें जो है सिर्फ उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, काला मोतिया और मोतिया बिंद, सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें पता होती है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनपे हमें बात करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम बात करने वाले आंख के पर्दे के बारे में, जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी आंखों का। तो आज इस पर ही बात करने के लिए डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में है। सो मैम मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा आपको हमारे FM स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है।
0: पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लिसनर्स को अपने बारे में बताएं।
1: तो मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ और CL गुप्ता में काम करती हूँ मुरादाबाद, और इसमें बेसिकली रेटिना के बारे में लोगों को पता नहीं होता। रेटिना होता है आंख का पर्दा। तो पर्दा सबसे जरूरी अंग इसलिए है क्योंकि जो भी दिखाई देता है वो उसी के वजह से दिखाई देता है। अगर पर्दा सही नहीं रहेगा तो शायद लोग कुछ ना देख पाए। तो इसलिए पर्दे के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। कोई भी आंख के बारे में सोचता है तो हर कोई सबसे पहले मोतियाबिंद ही सोचता है। सिर्फ मोतिया ही आंख का भाग नहीं होता है, और भी जरूरी हिस्से होते हैं जिसमें से सबसे जरूरी अंग जो है वो है पर्दा। और इसमें काफी सारी बीमारियां होते हैं। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर है, पर इसमें और भी बीमारियां होती है जो कि हम वो वक्त के साथ पता लगता।
0: बिल्कुल। अच्छा मैम सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जरा हमारे लिसनर को।
1: हाँ जी, तो बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम में ही लिखा है कि डायबिटिक मतलब जो भी लोगों को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, वो चीज पर्दे में भी असर करने लग जाती है। तो इसको देखने के लिए हमें पर्दे का ही चेकअप कराते रहना चाहिए। तो ये पर्दा क्या है इसको समझाने के लिए मैं यही कहूंगी कि जैसे मान लीजिए एक कैमरा होता है, कैमरा का जो आगे का शीशा होता है वो तो हो गया आपका लेंस, जिसको हम मोतिये के लिए बोलते हैं। पर उसके बाद भी जब हम फोटो खींचते हैं तो जो फिल्म में सब कुछ कैप्चर होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर फिल्म ही नहीं हुई तो आगे फोटो भी नहीं निकलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो फिल्म है यही हमारा पर्दा होता है, यही हमारा रेटिना होता है। तो अगर यही नहीं रहेगा तो आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें डायबिटीज में सबसे जरूरी चीज जो है वो है पर्दा, वही अफेक्ट होने लग जाती है। इसलिए हमें पर्दे का चेकअप कराते रहना चाहिए, और उसी से ही हम डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियों को पकड़ सकते हैं।
0: सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज आपका साथ निभा रहे आरजे आनंद, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे एक और सवाल के लिए, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
2: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
3: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स। तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आनंद है, शो का नाम है हेलो डॉक्टर, और आज हमारे साथ CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज हम। डॉक्टर साहब मुझे तो सिर्फ अभी तक यही पता था कि आंखों में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आंखों का एक ही डॉक्टर होता है, एक ही स्पेशलिस्ट होता है, और आज भी बहुत सारे लोगों को यही पता है। तो क्या जैसे आपने अभी आंख के पर्दे के बारे में बात करी, क्या इसका कोई अलग स्पेशलिस्ट होता है?
1: हां जी बिल्कुल। तो बेसिकली पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं कि मैंने MBBS और अपना MD दोनों ही दिल्ली से करा है। तो MBBS तक तो हम लोग डॉक्टर हो गए, लेकिन MD में हम बनते स्पेशलिस्ट। जब मैं बनी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, जिसे हम बोलते हैं आंखों की डॉक्टर, पर उसके बाद भी एक सुपर स्पेशलिटी होती है जिसका हम फेलोशिप करते हैं, वो मैंने नारायण नेत्रालय बैंगलोर से किया है। वहाँ पे मैंने पर्दे का पूरा स्पेशलाइजेशन अपना करा, जो कि 2 साल की और होती है स्पेशलाइजेशन।
0: ओके, तो मैम मेरा यही क्वेश्चन था आपसे अभी, आपने बहुत अच्छे से अपने बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा ये बताइए मैम कि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आईएएस के बहुत सारे डॉक्टर होते हैं क्या, मुझे तो नहीं पता था, आप जैसे आंखों के पर्दे की स्पेशलिस्ट हैं अलग से, तो हमारे लिसनर्स को तो ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था अभी तक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या सच में अलग अलग आंखों में जो समस्याएं होती हैं उसके अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कॉर्निया के अलग हो गए, मोतिया बन के, इस तरीके से?
1: हाँ जी बिल्कुल, तो जो मैं ये फेलोशिप की बात कर रही थी, यहीं पर ही आके हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, जहाँ पे बेसिकली कॉर्निया होता है जिसको हम पुतली के डॉक्टर बोलते हैं, बाकी मोतिये का तो होता ही है, उसके अलावा काले मोतिये का अलग होता है, और फिर हम पर्दे के डॉक्टर हो गए, ऐसे और भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं जिसमें लोग करते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आंख का डॉक्टर होने से कंप्लीट हो गया, आंख का डॉक्टर मतलब वो सिर्फ MD है, पर उसके बाद जिसने स्पेशलाइजेशन किया है वो जाके फाइनली एक सुपर स्पेशलिस्ट बनता है, जैसे मैं पर्दे की डॉक्टर।
0: ओके, सो लिसनर्स आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आंख में कोई भी समस्या है तो उसका एक डॉक्टर नहीं है, हमारी आंखों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अलग अलग स्पेशलिस्ट है, जैसे आंख का पर्दा, अभी उसके स्पेशलिस्ट हमारे बीच में मैम मौजूद है। मैम क्या हर डायबिटीज के मरीज को ये बीमारी हो सकती है, और या फिर कुछ लोगों में इसका खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है?
1: तो ये जरूरी नहीं है कि हर डायबिटीज के मरीज को ही ये बीमारी हो, पर हर डायबिटीज का मरीज बिल्कुल एक रिस्क में जरूर होता है, उसको ये डायबिटिक रेटिनोपैथी बनने का रिस्क जरूर हो सकता है।
0: ठीक है,
1: पर जो कुछ मरीज जिनमें ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, वो तब जब या तो उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहे, सही ना रहे, बहुत लंबे समय तक उनको शुगर रहे, और उसके अलावा उनको अगर BP की भी दिक्कत रहती है, साथ में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, और भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है।
0: ओके, तो मैम इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे किसी को कैसे पता चले, या ये बिना लक्षण के भी बीमारी बढ़ सकती है?
1: हाँ जी बिल्कुल बढ़ सकती है, एक्चुअली इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, ये शुरुआत होती है माइल्ड और मॉडरेट से, धीरे धीरे वो सीवियर पे पहुंचती है, और फिर उसके बाद सीवियर के बाद की भी कहानी होती है। जो माइल्ड मॉडरेट स्टेज है, हो सकता है ये पेशेंट को पता ही ना लगे, कोई लक्षण ही ना हो, पर इसके बाद जो स्टेजेस पहुंचते हैं वो ज्यादा सिवियर होने लग जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि मरीज सीधा हमारे पास तब पहुंचे जब उसको लक्षण आया और उसकी सिवियरिटी बहुत बढ़ चुकी हो, तो इसीलिए उसको साल में एक बार ना एक बार कराना चाहिए पर्दे का चेकअप, क्योंकि ये सारी चीजें पर्दे के चेकअप में ही पकड़ में आती है, शुरुआत लक्षण से नहीं होते, शुरुआत साइंस से होते हैं जो कि हम पकड़ते हैं, तो वो
0: ओके जरूरी। ओके, अच्छा मैम अक्सर कुछ लोग कहते हैं भाई शुगर कंट्रोल है तो इसलिए आंखें भी सुरक्षित होंगी, तो क्या ये पूरी तरीके से सही है?
1: नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत बार मरीज तो अपना शुगर नाप रहा है लेकिन उसको नहीं पता उसके पूरे दिन भर में कितना वेरिएशन हो रहा है। दूसरी चीज, कुछ टेस्ट भी होते हैं जो ये बताते हैं एवरेज शुगर कंट्रोल कितना है, वो भी कराते रहना चाहिए लोगों को, पर उसके बावजूद भी अगर सब कुछ सही भी चल रहा है, अगर मरीज को बहुत लंबे समय से शुगर है और साथ में जैसे मैंने बताया BP और इन सब की दिक्कत है, तो भी पर्दे में दिक्कत आना शुरू हो सकती है, इसलिए सिर्फ शुगर कंट्रोल रहने से ही वो चेकअप ना कराए ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, उनको हमेशा साल में एक बार चेकअप कराते रहना।
0: ओके, अच्छा मैम अगर बात करें इनकी डाइट की, इनके खान पान की, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए?
1: देखिए शुगर के मरीज को ऑब्वियसली शुगर कंट्रोल तो रखना ही है, तो उनको अपने शुगर और कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है उसको कम करके रखना होगा, जितना हो सकता है अगर वो प्रोटीन्स बढ़ाए और गुड लो कार्ब में रहते हैं तो ही उनको फायदा देगा।
0: ओके,
1: बाकी उनको डेफिनेटली एक न्यूट्रिशनिस्ट और अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहना चाहिए अपने डाइट के लिए, और जितना हो सके अपना शुगर कंट्रोल में रखें।
0: ओके, सो आई होप लिसनर्स आज आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी जो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है, एंड अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल 9837896896, हमारे स्टूडियो का नंबर है, अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना सवाल हमें जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करते हैं तो हमें भी फॉलो कीजिए, हमारा ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। पानन के साथ है प्रोग्राम में आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर ईशा आचार्य जी, आज उनसे ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं, आंख के पर्दे के ऊपर तमाम सारी बातें हो रही है, और मैम इसी बीच में आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको अपनी आंखों की जांच कब और कितने समय में करानी चाहिए, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है?
1: हाँ जी, तो ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डायबिटीज सबको लगता है शायद एक उम्र के बाद आती है।
0: हाँ जी मैम, और ये जरूरी है जानना कि किस एज में ये हो सकती है, ये प्लीज आप बताइए।
1: तो मेनली सबको यही लगता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, एक एज के बाद जाके आएगी, वो जो हम बोल रहे हैं वो होता है टाइप 2 डायबिटीज।
4: ठीक है,
1: पर अभी ये भी है कि टाइप 1 डायबिटीज भी एक चीज होती है जिसमें जो बच्चा होता है, बल्कि शुरुआत में ही ये डिटेक्ट हो जाता है कि उसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा होता है, तो शुगर अपने आप ही बढ़ता रहता है इन बच्चों का। तो इन लोग को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला जाता है, क्योंकि वो इंसुलिन उनको बाहर से देना पड़ता है तब जाके उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे बच्चों को भी डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। अब कब कब चेकअप होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि वो टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 है। टाइप 2 जैसे कि मैंने कहा, एक उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ के आती रहती है। टाइप 2 डायबिटीज वालों को तो जैसे ही डिटेक्ट हुआ उसी टाइम एक बार पर्दे का चेकअप करा लेना चाहिए। जबकि टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उनके शुरुआत के 5 साल में वो डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क इतना नहीं होता है, तो उनको शुरू के 5 साल के बाद जाके एक चेकअप करा लेना चाहिए, भले ही उसके बाद हर साल एक एक बार चेकअप कराते रहना चाहिए। फर्क क्या है, जो ये यंग लोग हैं जिनमें टाइप 1 डायबिटीज होती है काफी हद तक सिवियर हो सकती है वक्त के साथ, तो उनको भी एक टाइम के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया 5 साल के बाद से उनको रेगुलर चेकअप शुरू करवा देना चाहिए, क्योंकि वो भी उतने ही रिस्क में होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के जितना एक टाइप 2 डायबिटिक होगा। तो इसीलिए उम्र की बात की जाए तो दोनों ही यंग या फिर जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं उन दोनों में ही हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग करती रहनी चाहिए।
4: ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, जैसे कुछ ग्रामीण इलाके में लोग होते हैं, शहर लोग हो या गांव के लोग, अक्सर जांच को टाल देते हैं कि अभी नहीं, फिर करा लेंगे, बाद में करा लेंगे, तो इस तरीके के जो लोग टाल मटोल करते हैं और ये रिस्क लेते हैं अपनी आंखों के प्रति, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए आप
1: ये
4: क्या
1: बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो मैं बोल रही हूँ ये अंधेपन तक मरीज को ले जा सकती है। इसलिए इतना इंतजार ना करे कि अंधापन पहुंच जाए और हम उसके आगे जाके कोई ट्रीटमेंट ना कर पाए। इसलिए उसको उसी स्टेज पे पकड़ना है जब वो ट्रीटेबल हो, जब उसका हम इलाज कर सके, तो इसलिए उनको रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराना ही चाहिए, टालने से कोई फायदा होना नहीं।
4: मैम, अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए तो क्या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है?
1: हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि इसके स्टेजेस होते हैं, सही स्टेज पे सही इलाज किया जाएगा तो रोशनी आ सकती है। एंड स्टेज तक नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि तब आंख की रोशनी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
4: ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी आंखों से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कोई भी आप अगर सवाल करना चाहते हैं, तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो के नंबर के जरिए 9837896896 पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैम, एक और सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्या मोबाइल, लैपटॉप या लंबे समय तक जो स्क्रीन देखते हैं, क्या उनको ये समस्या और ज्यादा गंभीर उनको हो सकती है?
1: नहीं, इसका रिलेशन लंबे टाइम या स्क्रीन यूसेज से नहीं होता है। इसका प्योर रिलेशन होता है शुगर की वजह से। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब ब्लड शुगर पूरे टाइम तक लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो आंखों की जो रक्त की नसें होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। उसकी वजह से कभी कभी या तो सूजन पर्दे में बहुत ज्यादा आ सकती है, या ये नसें अगर फट जाए तो आंख के अंदर अचानक से ब्लड भी आ सकता है। तो ये सारी वजह होती है जिससे रोशनी अचानक से गिर सकती है। तो इसीलिए हमें चेकअप कराते ही रहना चाहिए, क्योंकि एक बार वही जैसे मैंने बताया, अगर बहुत ज्यादा ब्लड आ जाए और धीरे धीरे पर्दा उखड़ने लगे, वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मुश्किलें बढ़ जाती हैं और रोशनी आने की संभावना भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है।
4: ओके मैम, क्या धुंधलापन भी इन सब चीजों से कनेक्ट है क्या, आंखों में अगर हल्का हल्का सा धुंधलापन आने लगे?
1: आंखों का धुंधलापन इसी सब से होता है। अगर पर्दे में सूजन आ जाए या पर्दे में ब्लड आ जाता है या खून आ जाता है तो धुंधलापन इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके अलग अलग इलाज होते हैं जो हम करते हैं।
4: ओके, अच्छा मैम, सपोज किसी को ये प्रॉब्लम है और उसको ये पता कैसे चले कि उसको ये समस्या हो रही है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं?
1: तो जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत स्टेज में तो हो सकता है सिम्टम्स हो भी नहीं पेशेंट को, और धीरे धीरे सिम्टम्स आना शुरू होता है मतलब ऑलरेडी बात बिगड़ चुकी है। तो धुंधलापन से ही शुरुआत होती है, कभी कभी काले तिलमिले जैसे अचानक से दिखने लग जाए तो इसका मतलब आपकी आंख में ब्लड आ रहा है, ये शिकायत हो सकती है। धुंधलापन, काले तिलमिले दिखना, ये सारी चीजें असर करा सकती है।
4: डॉक्टर साहब, एक तो हमारे भारत में मैं कहूंगा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी आंखों में कुछ भी होता है ना, हम तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम कोई भी एक ड्रॉप खरीदते हैं, आई ड्रॉप, और उसको अपनी आंखों में डाल लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना पूछे, तो क्या ये करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है और देखा भी है कि मरीज जाके बस फार्मेसिस्ट से पूछ लेते हैं और दवा डालने लग जाते हैं। वो नहीं जानते किस दवा का अपना खुद का साइड इफेक्ट होता है। वो तो लंबे समय तक डालते रहते हैं, अपना चेकअप टालते रहते हैं, पर तब तक में वो जो दवा है वो अपना साइड इफेक्ट कर चुका होता है। और जब वो हमारे पास आते हैं, बहुत बार उन्हें काले मोती की शिकायत या उनकी पुतली खराब होने की शिकायत, ये सारी चीजें भी हो सकती, तो ये चीज बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। उनको कुछ भी दिक्कत हो, सबसे पहले किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए और उस हिसाब से ही दवा चलानी चाहिए।
4: ओके मैम। सो दोस्तों अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर।
2: ओहो ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
3: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
4: एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप जुड़े हुए हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM के साथ। गाड़ी अगर चला रहे हैं तो आराम से चलाइए, ध्यान सड़क पे और कान रेडियो स्टेशन पे लगाइए। हाँ जी, फिलहाल शो चल रहा है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इसमें हम ढेर सारी बातें कर रहे थे आंखों के पर्दे के बारे में, और अब जाने का समय हो गया है, बहुत सारी नॉलेज हमने शेयर कर दी। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, आपने बीच में गाने भी सुने मुझे पता है। वेल वेलकम बैक है मैम, आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, हमने आपसे ज्यादा सवाल तो नहीं पूछ लिए ना, हमारे लिसनर कह रहे होंगे।

0: कृष्णा जी को परेशान कर दिया आज आनंद ने, इतने सारे सवाल पूछ डाले। वेल मैम, सारे क्वेश्चन वो हैं जो हमारी ऑडियंस से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा क्योंकि अब चलने का समय हो रहा है। वेल, जाने से पहले मैम मैं चाहूंगा जितनी भी डिस्कशन हमने की अगर इनमें से कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में आप बताना चाहें।
1: हाँ जी बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में या तो सूजन बन सकती है या ब्लड आ सकता है या पर्दा उखड़ भी सकता है, तो इनके अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर पर्दे में सूजन वगैरह आता है तो डॉक्टर आपको आंख में इंजेक्शन लगाने के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। जो ब्लड और ये सब आता है, कभी कभी उसमें हमें आंख में लेजर भी करना पड़ता है, पर कभी अगर एंड स्टेज तक पहुंच रहा है और पर्दा उखड़ने की स्थिति आ रही है या जो ब्लड आया है वो सब साफ हो नहीं रहा है तो हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है, जिसे हम विट्रेक्टमी ऑपरेशन कहते हैं। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली ब्लड शुगर कंट्रोल और ये सब आपको ध्यान देना ही है, तो ये हमारा फुल ट्रीटमेंट ऑप्शन होता
0: है। ओके, और मैम चलते चलते कोई एक संदेश जो आप देना चाहें हमारे तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त आपको मुरादाबाद में सुन रहे हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो डायबिटीज से पीड़ित हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी जांच नहीं कराई है, उनको आप क्या संदेश देंगे? और साथ
1: देखिए, अभी सारी जनता के लिए आंखों का चेकअप का मतलब होता है कि बस चश्मे का नंबर ले ले और उनका काम हो गया। तो यही मैंने आज पूरे टॉक में अपना बताया है कि सिर्फ चश्मे का नंबर या सिर्फ मोतियाबिंद, यही दो चीजों से आंख की बीमारियां नहीं होती है, और पर्दे की प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी प्रॉब्लम भी होती है मरीजों को। तो इसलिए साल में एक बार चेकअप होते रहना चाहिए, बाकी डिपेंड करता है। अगर आपकी शुगर की दिक्कत बढ़ गई है तो कुछ डॉक्टर आपको 3 से 6 महीने पे भी बुला सकते हैं, और अगर आपका इलाज भी शुरू हो गया है तो हो सकता है आपको हर महीने भी बुलाया जाए। तो इसलिए इस चीज को नजरअंदाज नहीं करनी है, आपको चेकअप कराते रहना है। और जब भी आप किसी जनरल ऑप्थल्मोलॉजिस्ट पे भी जाएं जो सिर्फ जनरल चेकअप कर रहे हैं, उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है। पर्दे के चेकअप के लिए एक बहुत जरूरी संदेश ये है कि वो हम पुतली फैला के करते हैं, एक ड्रॉप डाला जाता है जिससे थोड़ा धुंधलापन रहता है कुछ समय तक, और वो पुतली फैला के ही हमें पर्दा ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो आप कभी भी कहीं जाए सिर्फ चश्मे का नंबर लेके ना आए, और अगर आप जा रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है, तो आपकी पुतली फैला के प्रॉपर चेकअप की जाए। ये सब चीजें अगर आप भी इन्फॉर्म्ड रहेंगे, तो अगर आपको कोई और डॉक्टर देख रहा है जिसने चेकअप नहीं कर रखा या किसी तरह से मिस हो गया है, आप उनको ये चीज बोल सकते हैं और प्रॉपर थरो चेकअप हो सकता है।
0: थैंक यू सो मच, डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में थी एंड इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से आज हम ढेर सारी बातचीत कर रहे थे मैम आंखों के पर्दे के बारे में, हमने तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर जो आज तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ऑफकोर्स उनको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है, एंड आई एम श्योर आप दोबारा फिर से आना चाहेंगे हमारी मुरादाबाद की जनता के लिए फिर से कुछ और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, और ये बहुत जरूरी था कि आपके जनता तक ये बात पहुंचे
0: डेफिनेटली,
1: और वो इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझे। सबको यही चाहिए कि उनकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहे और वो हमेशा ऐसे ही अच्छे से देखते रहे।
0: क्या बात। सो डॉक्टर ईशा, चलते चलते मैं आपसे एक छोटी सी एडवाइस लेना चाहता हूँ पूरे मुरादाबाद, आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी चलते चलते?
1: हाँ जी, तो मैं एक ही लाइन में इस चीज को समाप्त करना चाहूंगी, दैट राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम कैन सेव योर साइट।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। एंड गाइज, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए ऐसे ही आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, ये तो चल ही रहा था, बाकी रेडियो स्टेशन भी सुनते रहिए गाइज, फिर मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, फिलहाल के लिए घड़ी की सुई मुझे टिक टिक करके इशारा करेगी आनंद अब तेरा जाने का समय हो गया है, बहुत बातें होगी, तो चलिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, पानी पीते रहिए और खूब सारा अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। एक आंखों का बढ़िया गाना छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं मत जाइए, बाय बाय।

0: बाजौली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल शुरू करने की घोषणा की है। इनमें 200 नई पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा, 56 महिला स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं और DTC राजघाट डिपो 1 में बेहतर क्षमता वाले सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये नई पहल राजधानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने और शहर को साफ सुथरी और स्थायी गतिशीलता की तरफ ले जाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने से राजधानी में बसों की कुल संख्या लगभग 6,800 हो जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि DTC ऐतिहासिक दिल्ली करनाल रूट पर इलेक्ट्रिक और वातानुकूलित बसें शुरू करेगा। श्री सिंह ने आगे कहा कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए DTC महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू करेगी। इसके अलावा DTC ने राजघाट डिपो 1 पर एक सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन भी बनाया है। इस सुविधा में 240 किलोवाट क्षमता वाले 4 EV चार्जर लगे हैं, जो भारी व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक कारों दोनों को चार्ज करने में सक्षम है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का काम पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के अंतर्गत करीब 1,45,00,000 गणना प्रपत्र वितरित किए गए और 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और CBI के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जांच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और CCTV रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने चिकित्सा शिक्षा की क्षमता बढ़ाने के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी सीटों के चरणबद्ध विस्तार की योजना बनाई है। इसके तहत नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, मौजूदा संस्थानों का विस्तार और उन्नत चिकित्सा पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3: इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से संबद्ध निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 150 MBBS सीटें प्रस्तावित हैं। इससे स्नातक स्तर पर 300 नई सीटें जुड़ेंगी। इसके अलावा डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटें 125 से बढ़ाकर 200 और मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान में BDS सीटें 50 से बढ़ाकर 70 करने का प्रस्ताव है। स्नातकोत्तर स्तर पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सीटें 260 से बढ़ाकर 295 और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में 22 से बढ़ाकर 42 करने का प्रस्ताव है। वहीं डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज में 24 नई स्नातकोत्तर सीटें प्रस्तावित हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा

0: के इस विस्तार का उद्देश्य दिल्ली के लोगों के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और विशेषज्ञों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया।
2: The impact of climate change,
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने आज 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सम्मेलन की व्यवस्थाओं, समन्वय और समग्र तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को सुचारू, समयबद्ध और सफल बनाने पर विशेष बल दिया गया। बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में NDMC सचिव राहुल सिंह, संयुक्त सचिव शंभू हक्की सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में ऐसे कृषि उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए जो वैश्विक बाजार के मानकों पर खरे उतरें। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को आधुनिक तकनीक और नए कृषि उपकरणों की जानकारी देना जरूरी है। श्री चौहान आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 97वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को इस दिशा में काम करने पर बल दिया।
4: विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान ऐसे 500 विषय आए जिसपे किसानों ने कहा कि हमें तो इस चीज पे रिसर्च की जरूरत, और उसके बाद हमने 52 टीमें बनाई वैज्ञानिकों की, और हमने कहा कि रिसर्च उसमें करो जिसकी जरूरत देश को है, किसानों को है।
1: दिल्ली नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन और जन जागरूकता को लेकर आज एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को नए नियमों की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराना तथा जन प्रतिनिधियों के माध्यम से नागरिकों तक इन नियमों की जानकारी पहुंचाना था। दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने कहा कि निगम द्वारा कचरे के स्रोत पर ही उसे अलग करने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ दिल्ली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली नगर निगम ने आज मटियाला और द्वारका क्षेत्र में साफ सफाई का निरीक्षण करते हुए दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान चलाया। निगम के अनुसार अभियान का उद्देश्य सफाई और नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेना, स्थानीय समस्याओं की पहचान करना और उनके समाधान के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। निगम ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत किए जा रहे समन्वित प्रयासों से बेहतर सफाई व्यवस्था, त्वरित नागरिक सेवाएं और स्वच्छ मोहल्ले सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र तालकटोरा स्टेडियम में 27 अगस्त को सौंपा जाएगा। सरकार ने बताया कि 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जल्द ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसके अंतर्गत जिन महिलाओं ने आवेदन में गलत या अधूरी जानकारी दर्ज की है उन्हें उसमें सुधार करने का दोबारा अवसर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के शुभारंभ के बाद सिर्फ 18 दिनों में करीब 8 लाख महिलाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जबकि 5 लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि इस वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर देशभर में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 45% अधिक है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि कैट देश के विभिन्न शहरों में विशेष स्वदेशी मेले आयोजित करने जा रहा है, जहां महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित राखियों और अन्य उत्पादों की बिक्री की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत कॉरिडोर के पास पतंग उड़ाने और चाइनीज मांझे के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। NCRTC ने लोगों से नमो भारत कॉरिडोर और इसकी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की है। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर 14 अगस्त से 10 दिवसीय पुस्तक मेला चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अनुसार मेले में 20,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जहां लोग अपनी पसंद की किताबें देख चुन और खरीद सकते हैं। ये पुस्तक मेला 23 अगस्त तक सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन नियुक्तियों पर सभी नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नेताओं के व्यापक अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण और सशक्त नेतृत्व से इन राज्यों में भाजपा को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने भी सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने अमरीका की लॉर्डन लैम और एलन क्विन ली को हराया। वहीं लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स में ऑस्ट्रिया के कोलनेस फिलीमोन को हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री

0: सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर नई मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना बनाई और नई दिल्ली में जारी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: विजिट करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
3: तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो?
4: लाइन मार रही हो।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: कि नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है, नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है, रियल में कहते माही और इंस्टा पे आईडी दिल से शायरी है।
1: हेलो जी, हेलो, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद को, और आज का सेशन बहुत ही खास है, बिकॉज आज स्टूडियो में ना मैं अकेला नहीं हूँ। आज का जो ये एपिसोड है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग है ना वो बड़े हैपनिंग है, उन्होंने आते ही माहौल को जो है बड़ा कूल बना दिया। वेल, आज की बातों को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि आज बड़ी स्पेशल होगी। उनमें से एक ऐसा है जिसको ऑफकोर्स आपने बहुत बार सुना है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने कभी सुना ही नहीं होगा मुरादाबाद में। आज पहली बार आप सुनोगे हमारे रेडियो के थ्रू। ऑफकोर्स यार, क्योंकि जब नई नई चीजें रेडियो पे आती है तो बहुत मजा आता है, और आज इसमें सबसे बड़ा योगदान इन भाई साहब का है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। कौन है ये, इनकी आवाज ऑफकोर्स आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए ताली, और अपने लिए भी आप बजा लो ताली। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। कैसे हैं सर आप? हाउ आर यू?
2: आरजे आनंद जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे।
1: मैं बहुत ही फैंटास्टिक हूँ, आई एम वेरी हैंडसम, नो डाउट, वो आपको देख के लग ही रहा होगा। और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता है मैं कितना हैंडसम हूँ, वो तो इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, भले आजकल फिल्टर लगा के बैठते हैं, नो डाउट। खैर एनीवे,
2: ठीक है, देखिए आपका तो वर्किंग शेड्यूल है उसके अलावा कर रहे हैं, लेकिन हम एक्साइटेड थे।
1: चार बार मैसेज भेजते हैं, पांचवी बार में ही आते हैं, इनकी कमाल की बात है। चलिए कोई नहीं, राघव जी थैंक यू सो मच, आप आए बहुत अच्छा लगा, और हमारे साथ में एक मैडम भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप? वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
0: थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे बुलाया। आप कैसे हैं ये बताएं?
1: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम वेरी वेल, और इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है, प्लीज क्रेडिट इनको दीजिए जो आपको यहाँ लेकर आए। सो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपको एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है?
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा ही वेलकमिंग माहौल था, आप लोग ने बिल्कुल आते ही मुझे बिल्कुल यहाँ पे कंफर्टेबल कर दिया कि माहौल अच्छा था,
1: चला देता हूँ माहौल और कंफर्टेबल वाला हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: तो मैम आपने जो है थोड़ी देर पहले ऑफ ईयर मैम कह रही थी कि मेरा अंदाज थोड़ा शायराना वाला होता है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ उस स्टाइल में अपना इंट्रो आप दें।
0: जी जी, मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है, नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है, रियल में कहते माही और इंस्टा पे आईडी दिल से शायरी है।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, दिल से शायरी है, ये आपका इंस्टाग्राम प्रमोट करने का तरीका था ना?
0: अरे बिल्कुल, इसी से ही तो हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पहुँचे हैं।
1: वेरी नाइस, बट एब्सोल्युटली अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है राघव जी आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है आज। देख लीजिए आपके सामने चेयर पे है, बिल्कुल कट टू कट वाली बात होगी आज।
2: नहीं, हेल्थी कॉम्पिटिशन होता है तो हम भी ग्रो करेंगे ना।
1: क्या बात है, ऐसी सोच अगर हमारे यूथ की हो तो भैया मुझे लगता है फिर तो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन क्या 100 मिलियन भी हो जाएंगे,
0: सब फॉलो करने लगेंगे।
1: एब्सोल्युटली, अच्छी बात है ना, रेडियो भी अच्छी लगती है, रियल लाइफ में फॉलो कोई करता नहीं है वैसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सच बात है।
2: नहीं, ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में फॉलो करता है, आरजे आनंद को कौन फॉलो नहीं करेगा।
1: अरे भैया हम भी राघव जी को फॉलो कर रहे हैं, आजकल फॉलोवर इतने बढ़िया तेजी से ग्रो कर रहे हैं आजकल,
0: हर वीडियो पे 1 मिलियन।
2: अरे नहीं, हर वीडियो पे नहीं, लेकिन दूसरी वीडियो 1.4 मिलियन
1: हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल डेफिनेटली। तो गाइस आप सुन रहे हैं ना माहौल कितना हैपनिंग वाला हो रहा है, तो आज का ये सेशन आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने देगा। वेल मैम, आपने तो अपने आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, मैं राघव भाई से डेफिनेटली यहाँ पे बात करना चाहूंगा। राघव भाई पहले तो ये बताओ, आप इतने दिन पहले कहाँ थे? जब मैं आपको बुला रहा था आप तब आए नहीं, अब अचानक से आपका जो है यहाँ पे आवागमन हो गया।
2: थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था, और ऐसे नहीं है कि
1: हमारे लिसनर यार आपसे नाराज हो जाएंगे, आप ऐसे नाराज मत किया करो। अपनी प्यारी प्यारी आवाज,
2: मैं पंक्तियां लाया हूँ उनको मनाने के लिए,
1: जरा दो पंक्तियां मैं चाहूंगा जरूर।
2: आपने कभी इंट्रोडक्शन की बात की तो उसमें मैं बस 2 लाइन है, आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं तो फिर, जितने मुझे सुन रहे हैं उनके लिए खास, आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं तो फिर देख लीजिए इश्क में हारा ऐसा दिखता है।
1: वाह क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ मैम, आपके बारे में थोड़ा सा जानने चाहेंगे हमारे लिसनर्स भी, और मैं भी जानना चाह रहा हूँ आप क्या करती हैं अभी, प्रोफेशनली क्या चल रहा है? आप मुरादाबाद से हैं कहीं और से बिलोंग करती हैं?
0: नहीं नहीं, मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, और मैं फिलहाल मुरादाबाद में पढ़ाई के सिलसिले में आई हुई हूँ। फिलहाल मेरा 3rd ईयर चल रहा है MBBS का, बट अगले महीने में फाइनल ईयर में होंगी MBBS के, क्योंकि फिलहाल मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हाँ जी, मैं इसी चक्कर में मुरादाबाद से आई हुई हूँ।
1: अच्छा, मुरादाबाद आके कैसा लगा आपको?
0: यार शहर तो बढ़िया है आपका मुरादाबाद, रायपुर से तो हम क्या कहें, थोड़ा
2: मुरादाबादी दाल जलेबी खाई कि नहीं आपने?
0: खाई अच्छी थी, अच्छी थी, बाहर ही खाई क्योंकि मैस में तो समझ नहीं आई थी। तो बाहर जरूर ट्राई की थी। नहीं बढ़िया है, हर संडे हम आते हैं बाहर,
2: मैस के तो दाल क्या वो तक खाना भी समझ नहीं आता।
0: मैस छोड़ ही देते हैं ना, मैस की क्यों बात करनी है, बाहर बाहर इसलिए हम हर संडे आते हैं।
2: मैंने सुना है कि MBBS का मैस बाकी अदर कोर्सेज के मैस से थोड़ा बेस्ट होता है।
0: हाँ थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है, थोड़ा पनीर वनीर ज्यादा मिलता है।
1: क्या बात है, तभी मुझे लगता है सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा हो जाता है।
2: नहीं, इनके नोट की गड्डियां भी मोटी होती है,
1: मानना पड़ेगा भाई ये बात। मुझे लग रहा है कि राघव जी ना नोट की गड्डियों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं,
0: उनका थोड़ा अलग
1: है ना फोकस, थोड़ा मैं चाहूंगा फोकस अपना शेरो शायरी की तरफ रखे आज तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं सिलसिला यहाँ पर शुरू करूंगा गाइज, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस एंट्री करेंगे एंड फिर उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। आप कहीं मत जाइए, आई विल बी राइट बैक, एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: चाहिए। वेलकम बैक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। सुन रहे हैं आप आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ऑफ कोर्स आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, मुझे भी लग रहा है यार, क्योंकि इतने प्यारे लोग स्टूडियो में बैठे हैं और आप उनको सुन रहे हैं। बहुत मजा आ रहा होगा आपको भी, मुझे भी आ रहा है। स्पेशली मजा इसलिए डबल हो रहा है क्योंकि वो बैठे बैठे हंस भी रहे हैं और अपने दिल की बात कहने के लिए बेकरार भी हैं। तो बिना किसी देरी के माइक जो है उनकी तरफ हम फॉरवर्ड करेंगे। तो माही जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे लिसनर्स को आप कुछ सुना दें ताकि उनकी शाम और खूबसूरत हो जाए।
1: तो मैं एक बहुत ही प्यारी सी शायरी सुनाना चाहूंगी, और ये
0: प्यारी सी है,
1: प्यारी सी है, जैसे मैं प्यारी सी हूँ,
0: राघव जी।
1: तो मैं कह दूं अगर तो मान जाओगे क्या,
2: मान जाओगे क्या,
1: मैं चुप भी रहूं अगर तो जान जाओगे क्या, मैं कह भी दूं अगर तो मान जाओगे क्या, मैं चुप भी रहूं अगर तो जान जाओगे क्या। और माना हम मिलते नहीं है अक्सर, मगर कर दूं आंखें बंद पीछे से तो बिना सुने बिना देखे पहचान जाओगे।
0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है आपका इतना खूबसूरत अंदाज है कौन नहीं आपको पहचानेगा। ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी राघव जी।
2: मैं कर दूं आंखें बंद पीछे से
1: बिना सुने बिना देखे पहचान जाओगे।
0: क्या बात है, ये मैम आप खुद ही लिखते हैं?
1: मोस्टली खुद ही लिखती हूँ, जो नहीं लिखी होती हूँ मैं बता देती हूँ कि मैंने।
0: ये है असली कॉन्टेंट क्रिएटर जो डिजर्व करते हैं बिग शाउट आउट। बहुत ही बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आया आपको ये लिखने वाला थॉट और कब से आप कर रही हैं?
1: मैं लिख तो 7-8 साल से रही हूँ। पहले मैं सिर्फ देखा करती थी जो राइटर्स आते थे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इतना बढ़िया लिख रहे हैं, मैं भी लिख सकती हूँ। तो मैंने बस उन्हें देखकर सोचा कि ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करा, खुद ही सीखा, खुद ही थोड़ा गड़बड़ भी की बहुत सारी, बट फिर करते करते अब तो 7.5 साल हो चुके हैं लिखते हुए। तो हाँ जी, तो अब आ चुका है, एक लय बन चुकी है कि हाँ क्या करना है, क्या लिखना
0: मतलब
1: है।
0: अब आंख मीच के भी लिख सकते हो।
2: आंख मीच के सोच सकते हैं, लिखेंगे तो आगे।
1: चलो आप भी शब्द बोलने लगे, क्या बात है।
0: राघव जी ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो गाइस आप जो है इनसे अलर्ट रहिएगा, मुझे ज्यादा अलर्ट रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। वेल मैम, डेफिनेटली आपके पास वापस कम बैक करेंगे। राघव भाई मैं चाहूंगा आप भी जो है इस सिलसिले को कंटिन्यू रखें, आप भी वो एक चुटकी सिंदूर को सुना रहे थे मुझे, तो उसको आप ऑन ईयर सुना डालो,
2: एक चुटकी सिंदूर। ओके, तो वैसे तो मैं हार्ट ब्रोकन पीस ही लिखता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ये कह लिए जीवन में एक मोड़ आया था, तो तब लिखा था कि कितना मुश्किल होता है खुद को बांध के रखना।
0: वाह,
2: कितना मुश्किल होता है खुद को बांध के रखना और बात को दिल से निकाल के जुबान पे रखना। कितना मुश्किल होता है खुद को, कितना मुश्किल होता है खुद को बांध के रखना और बात को दिल से निकाल कर जुबान पे रखना। रिश्ता टूटने से बचाना है तो फिर दोस्त अपने गुस्से को ताक पे रखना। रिश्ता टूटने से बचाना है तो फिर दोस्त अपने गुस्से को ताक पे रखना। मैं तेरे सारे नखरे उठाऊंगा देखियो, मैं तेरे सारे नखरे उठाऊंगा देखियो, बस तू मेरी शर्ट का बटन टाक के रखना।
0: वाह,
2: बस तू मेरी शर्ट का बटन टाक के रखना। ना मैं किसी के दिल में नहीं रहूंगा अब, ना मैं किसी के दिल में नहीं रहूंगा अब, तुम बस मेरे नाम का सिंदूर लगा के रखना।
1: क्या,
2: तुम
1: क्या,
2: बस मेरे
1: क्या
2: नाम
1: क्या
2: का सिंदूर लगा के रखना।
0: अब ऐसा ना हो कि इस बार जो सुन रहे हैं वो सब सिंदूरी लगा के बैठ जाए, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
2: ये सबके लिए नहीं है, बस किसी के लिए।
0: मैजिकल लाइन, बट बहुत ही बढ़िया, आपने मजेदार सुना दिया। शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई है यार, मुझे लग रहा है कि सेशन भी कितना बढ़िया होगा ये। तो मैं चाहूंगा कि दो आमने सामने ऐसे धाकड़ लोग बैठे हुए हैं, तो मतलब कुछ बातचीत भी होती रहनी चाहिए, ये शेर व शायरी का माहौल तो बना ही रहेगा। मैं आपसे पूछूंगा राघव जी, आप हर बार 2-3 बार यहाँ मेरे साथ, तो 2-3 बार अकेले आए हो, आज मैम को कैसे पहला आए, कहाँ आपसे इनकी मुलाकात हुई?
2: नहीं, एक्चुअली हम एक जगह परफॉर्म कर रहे थे, तो वहीं पर ही मैम से मिलना हुआ था, और जस्ट दिमाग में आया कि हम कोलैबोरेशन वीडियो बनाएंगे इंस्टा के लिए। और कुछ पोइट्री पीसेज ऐसे होते हैं ना कि जिनको सुनकर लगता है कि इस पोइट्री के साथ शायद मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्यों ना पोइट्री के साथ साथ जो पोएट है उनके साथ भी कनेक्ट किया जाए, उनके साथ जुड़ा रहा जाए। और अब आप एक ही शहर में है तो चाहेंगे कि एक कम्युनिटी में है तो जुड़े रहें।
0: Absolutely.
2: तो बस इसी वजह से मैम से मिलना हुआ था और आज हम यहाँ पर हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये एक बहुत ही अच्छी

0: और मुझे लगता है कि जो एक आर्टिस्ट होता है ना उसको आर्टिस्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, बिकॉज आपकी जब एक कम्युनिटी होगी, एक यूनिटी होगी, तो वो काम और भी बेहतर लेवल पे पहुंच पाएगा। तो गाइज अगर आप भी इनके ग्रुप में आना चाहते हैं तो कैसे आप पहुंच सकते हैं ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि मैं इनके ग्रुप में नहीं हूं, बिकॉज मेरा इज ऑनर नहीं
1: है। फॉलो करना पड़ेगा हम दोनों को और हम बता पाएंगे।
0: मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैम को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, जल्दी से फॉलो कर लो उनको, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आज की डेट में, मुझे ऐसा लग रहा है आपका। आप इंस्टाग्राम बता डालो।
2: एक बात मैं और बता दूं, इंस्टाग्राम तो मैं ही बताता हूं, दिल से शायरी, ठीक है।
0: अरे वाह,
2: आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जितने लिसनर्स सुन रहे हैं, और सिर्फ जो आज माही जैन है सामने बैठी हैं या हम जो बैठे हैं, हम ही इंस्टा पे एक्टिव नहीं है, इसके अलावा आरजे आनंद जी हैं, काफी इंस्टा पे एक्टिव रहते हैं। दूसरा ये कि और कम्युनिटी के साथ भी जुड़कर काम करते हैं, तो वो मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आपने, हाँ बिल्कुल, आप किसी एक कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हुए, आप चाहे वो सोशल हेल्प हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, उनके साथ हो, आप पोएट्री से रिलेटेड प्रोग्राम हो, सिंगिंग से रिलेटेड प्रोग्राम हो, ठीक है, तो आप काफी एक्टिव रहते हैं मैंने देखा है, तो ये बहुत जरूरी है आप अलग अलग लोगों के साथ, एक्चुअली आपकी फील्ड भी ऐसी है ना, तो वो आपको थोड़ा पुश भी करती है इस तरफ।
0: अब देखो राघव कुछ खाने पीने की चीज तो लेकर आता नहीं है, तो सोचा बातों से ही जो है थोड़ा सा कवर अप किया जाए आनंद के सेशन को, तो इन्होंने जो है वो बटरिंग कर दी है, वो मतलब जिसे कह सकते हैं कि 2-4 किलो खून बढ़ा दिया मेरा ये बोल के। सो वेल थैंक यू वेरी मच भाई कि आप इतना अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे खुद को भी लगता है कि यू नो हम जैसे जो आज के यूथ है कुछ ना कुछ करते रहे यार, है ना, और मेरा मेन पर्पज ये होता है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो दिखावा नहीं है, वो इसलिए हम डालते हैं ताकि और भी लोग इंस्पायर हों, जो मेरे जैसे यंगस्टर हैं जो सिर्फ दिल तोड़ते हैं या सिम तोड़ते हैं वो ये ना करें, इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, क्यों मैम?
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: है ना, तो ये सब कुछ करते रहना चाहिए। और बाकी राघव जी से तो हम कुछ ना कुछ आज खा के रहेंगे, आप चिंता ना कीजिए गाइस। एंड अभी आगे बढ़ेंगे एक बढ़िया सा गाना, उसके बाद वी कम बैक, आप कहीं मत जाना, सुनते रहिए आरजे आनंद को। ये जो माहौल है वो ऐसे ही बना रहेगा। अगर आप भी कुछ शेरो शायरी करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो मुझे डीएम करो फटाक से, रेडियो वाला आनंद के नाम से आपको मिलता हूँ इंस्टाग्राम पे, डू फॉलो मी, फटाफट आओ अपना टैलेंट मुझे मेंशन करो, मुझे डीएम करो, हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो। फिलहाल एक अच्छा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। थैंक यू सुनने के लिए यार, आगे भी सुनते रहना, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, डोंट वरी।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: के नाम का मतलब प्यार, और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है। नाम
5: अपनी डायरी लेकर आते हैं, बट आज आप डायरी नहीं लेकर आए, वाई
6: डायरी नहीं?
5: क्या कह रहे हो आप, सब कुछ फोन में है
6: अब? हाँ बिल्कुल,
5: अब जमाना एडवांस हो गया, मैंने भी एडवांस प्रिपरेशन करके रखी।
6: बिल्कुल बिल्कुल साहब, डायरी जो है वो अगर हम एक बैठक में बैठे तो ज्यादा अच्छा लगता है।
5: लेकिन ये बैठक से कम है क्या यार? स्टूडियो है, चेयर है, चार लोग है, पूरा सेटअप है, और क्या चाहिए आपको?
6: थोड़े से लोग और ज्यादा होते हैं ना, जो पोएट्री भी करते हैं ना।
5: ऑलराइट,
6: अच्छा कनेक्ट होते हैं।
5: मुझे लगता है आज मुझे ऐसा ढूंढ के लाना पड़ेगा जो इनके माहौल को थोड़ा सा और स्पेशल बनाए। मेरी जरूरत है नहीं, अब ऐसा लग रहा है।
6: नहीं, नहीं, आरजे, आरजे, आप तो बेस्ट हैं,
5: नहीं
6: लेकिन एक बेस्ट आदमी जो हमारे बीच है अभी तो नहीं है, लेकिन हमने ज्यादा जो पोइट्री करी है FM में वो आरजे राज भाई के साथ।
5: क्या
6: तो
5: बात
6: उनको
5: है
6: तो हमेशा
5: राज तो राजी है, नो डाउट यार। हर इंसान का ना अपना एक कहते ना अपनी USP होती है हर एक इंसान के अंदर, है ना? तो वो हर कोई तो नहीं ले सकता यार, है ना? वे आगे बढ़ते हैं जी। माही जी, आप अपनी बातों को जरा सा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, लेकर आइए। एंड आप कुछ चाय कॉफी के ऊपर बात कर रहे थे अभी ऑफ, तो हम उसकी तरफ जो है रुख करेंगे। तो हमारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं आपकी मखमली आवाज में कुछ अच्छा सुनने का, सो प्लीज कुछ सुना दीजिए।
4: हाँ जी, हाँ जी। तो अक्सर होता है ना कि लड़कियां कॉफी की शौकीन ज्यादा होती हैं और लड़के चाय के दीवाने ज्यादा होते हैं।
5: नो डाउट, नो डाउट।
4: तो उसी पे दो लाइन लिखी थी कि चाय की दीवानी भी बन जाऊंगी,
5: वाह
4: तू पिलाने वाला तो बन।
5: क्या बात है
4: ना, कि चाय की दीवानी भी बन जाऊंगी तू पिलाने वाला तो बन, अरे मैं हर वो वादा मान जाऊंगी तू निभाने वाला तो बन।
5: क्या बात है यार, फैब्यूलस। ये मतलब दिल से निकली बात बोलती, मेरे को ऐसा लग रहा है आपने बिल्कुल एकदम करेक्ट वाली बात जो सीधा जाके टच करने वाली है अभी सारी लड़कियों को। मैडम एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि पूछ लेना चाहिए। ये आपने बोला लड़कियां अक्सर कॉफी की दीवानी होती है और लड़के चाय के, नो डाउट लड़के चाय के दीवाने होते हैं, लेकिन लड़के इतनी कॉफी की दीवानी क्यों होती है? चाय इतनी ज्यादा पसंद की जाती है हमारे भारत में, तो फिर चाय क्यों नहीं पसंद करती लड़कियां?
4: वो तो आपको उनसे
5: चाय पीती है
4: ना, चाय की दीवानी तो क्या
6: मेजोरिटी जो है वो गर्ल्स की वो कॉफी को पसंद करती है।
4: एस्थेटिक बोल लो, आई थिंक आधी लड़कियों को एस्थेटिक्स की वजह से भी वो कॉफी बहुत पसंद होता है, बाकी बारिश आने पे तो चाय, नो डाउट।
6: मैं भी अपनी वाली से पूछ के बताऊंगा
5: भैया, मुझे ये मैं पक्का इस पे जो है और
4: कॉफी पे चर्चा एक बार करनी पड़ेगी।
5: मुझे चाय पे चर्चा बहुत सुना है,
4: बहुत हो गया, अब कॉफी पे चर्चा करनी।
6: लेकिन जो मैडम ने बात करी ना कॉफी वाली, उसके रिगार्डिंग भी मैंने लाइन लिखी थी, वो भी था कि
5: क्या बात, आज कॉम्बिनेशन मिला के लाया लड़का,
6: हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे
5: जी,
6: तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे।
5: वाह,
6: हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे। मेरे शौक वैसे इतने खास तो नहीं, मगर हाँ हम तुम्हें अपना जरूर बनाएंगे, मगर हाँ हम तुम्हें अपना जरूर मनाएंगे। और मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने वाले, मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने वाले, तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे।
4: क्या बात,
6: तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे।
5: गजब, कमाल है। हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे जहां आरजे राघव को हम आरजे बनाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इनकी आवाज फिर आपको और अच्छे से सुनवाएंगे। वेल चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा बोला, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जन्मदिन हालांकि इनका जा चुका है, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पा रहे माही जी।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
6: इसके रिगार्डिंग एक मेरा थॉट था, हाँ वो ये था कि हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे। तो मैंने काफी लोगों को देखा है जिनको जन्मदिन पसंद नहीं आते अपने, मैं उनमें से एक हूँ, ठीक है। लेकिन जन्मदिन का असली मजा तभी है जब आपके जन्मदिन पे सामने वाला खुशी मनाए, तो वो एक स्पेशल होता है। तो वही मेरा एक थॉट था इसके पीछे।
5: आजकल तो लाइफस्टाइल इतना बिजी है, किसी को अपना बर्थडे याद होना हो दूसरे का तो जरूर रहता है।
4: बिल्कुल, बिल्कुल,
5: मुझे ऐसा
4: बिल्कुल
5: लगता है। मैम आप क्या निकाल रहे हैं, कुछ स्पेशल निकाल रहे हैं?
4: मैं वही देख रही थी कि कुछ मैं अगर बोल पाऊँ इस मोमेंट में तो
5: ये तो एक बहुत अच्छी चीज है गाइस कि देखिए यहाँ पर जो है एकदम स्पेशल मोमेंट को और ज्यादा स्पेशल बनाया जा रहा है। सेम चीजें जो है की जा रही है कि अगर उन्होंने कुछ अच्छा सुना है तो वो भी उसमें कुछ अच्छा सुना रहे हैं। आई एम श्योर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा।
4: कंपटीशन जरूर है, अरे कलाकार लोग हैं ना हम, तो कलाकारों का यही होता है कि वो वही बात हो गई। कलाकारों पे मैं कहूंगी कि दुनिया के लिए मैं नाकारा बेकार हूँ, वजह ये है कि मैं एक कलाकार
6: कलाकार
4: हाँ सबको समझती हूँ, हाँ सबको समझती हूँ, शायद समझदार हूँ, वजह ये है मैं एक कलाकार हूँ।
6: बहुत बढ़िया।
4: और तुम्हारे गम और खुशी दोनों की जानकार हूँ।
5: वाह,
4: सबको जानते हैं हम, समझ आ जाता है ना शायरों को कि अरे अब क्या लिखना है, अब क्या बोलना है, कि तुम्हारे गम और खुशी दोनों के जानकार हूँ, वजह ये है कि हाँ मैं एक कलाकार हूँ।
5: बहुत ही बढ़िया, वजह ये है कि मैं एक कलाकार हूँ और तभी आप यहाँ बैठी हूँ कि आप एक कलाकार हैं, नो डाउट। क्यों राघव?
6: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
5: बहुत बढ़िया। तो गाइस ये जो सिलसिला है वो लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। बाकी अगर आप इन लोगों की शेरो शायरी को और इंजॉय करना चाहते हैं, इन लोगों के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ ये लोग एक्टिव हैं, तो वो तो मैं इनसे पूछ ही रहा हूँ। आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स प्लीज एक बार बताएं अगर कोई आपको फॉलो करना चाहे।
4: जी, मेरा हर जगह अकाउंट एक ही है, @dilseshayari, dil_se_shayari, तो हर जगह YouTube, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट,
5: क्या जहां देखना चाहो गाइज हर जगह पे फॉलो कर लो। उन्होंने सब जगह की आईडी बता दी। बाकी राघव भैया आप भी बता दो।
6: हमारा तो बहुत सिंपल है, आप अगर सर्च करते हैं इंस्टा पे एडवोकेट राघव गुप्ता, और अगर यूजर नेम की बात करें @adv.raghavgupta।
5: क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए गाइज आप इनको फॉलो करते रहिए और अभी हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक ही गाइज, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद। यहाँ पर आज बहुत सारी हैपनिंग चीजें चल रही हैं। ऑफ कोर्स मेरा ऐसा मानना है लोकल फॉर वोकल, अपने जो लोकल आर्टिस्ट हैं ना उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और वो प्लेटफॉर्म आरजे आनंद हमेशा आपको देता है ना। अगर आप कुछ अच्छा लिखते हैं, अगर आप कुछ अच्छा बोलते हैं या आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है व्हाटएवर, आप उसको हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपना टैलेंट 9837896896। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप अपना टैलेंट बताइए। हो सकता है नेक्स्ट वीक आप हमारे साथ हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए है। जरूरी नहीं है कि आज यहाँ पर सिर्फ माही है, राघव है, आप में भी बहुत सारी ऐसी माही होंगी, बहुत सारे राघव होंगे जो चाहते तो हैं कि हमें भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, बट एक्चुअली मिल नहीं पाता है। तो एफएम मुरादाबाद है ना आपके शहर का लोकल देसी रेडियो जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी यहाँ आके अपने टैलेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं तो आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। एक अच्छा गाना भी आपने सुना, यहाँ पे राघव और माही मेरे साथ हैं। एक और बहुत प्यारी सी लड़की है बट वो बोल नहीं पा रही है, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, अभी सिर्फ बोलने के लिए दो ही लोग यहाँ पर है। तो आप सभी का वंस अगेन वेलकम। आई होप आप लोगों को एंजॉय लगा होगा, कैसा लगा टैलेंट आप ये बताओ।
1: अरे बहुत मजा आ रहा है सर, पता भी नहीं चला कि आधे घंटे हो गए। जब आपने बताया आधे घंटे हो गए तब पता चला कि अरे इतना टाइम हो गया।
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल, वक्त का पता नहीं चलता।
0: मजा तब आता है ना जब जहाँ पे आप हो वहाँ पे माहौल किस तरह का है।
1: हाँ।
0: वो बहुत मैटर करता है। राघव जी आप बताएं।
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एज ऑलवेज कि मैं तो काफी बार आ चुका हूँ, ठीक है, लेकिन एक बार इस बार न्यू गेस्ट हैं तो उनके साथ भी काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा पहली बार मिल रहे हैं।
0: और मुझे ऐसा लगता है ये चीज होनी भी नहीं चाहिए। आपकी वाइब भी तभी मैच होती है जब आपको ऐसा लगे कि यार हम कितने टाइम से जानते हैं एक दूसरे।
2: बिल्कुल,
0: वो चीज एक अलग ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सेशन जो है ऑलमोस्ट अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है, जहाँ पर हम सभी को बबाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ स्पेशल हम सुन के जाएंगे जो आप हमारे लिसनर्स को जाते जाते सुनाना चाहती हो, या राघव जी जो आप लास्ट में कुछ कहना चाहें स्पेशल। पहले आप ही से शुरू करेंगे मैम माही जी, मैं चाहूंगा आप कुछ स्पेशल सुनाए।
1: बहुत ही अभी प्यारी प्यारी बातें हो गई थी, तो अब मैं उस बात पे आऊंगी कि अब बात नहीं होती, क्योंकि हर किसी की किसी ना किसी से अब बात नहीं होती है। तो उस पे ही है, अब बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, कभी शाम याद आती है तो कभी यादों में मेरी रात नहीं होती। अब जिक्र भी तेरा खुद से मैं कम ही करती हूँ, अब जिक्र भी तेरा मैं खुद से कम ही करती हूँ। हर दर्द को लफ्जों की सौगात नहीं होती, जो टूट के बिखरे थे, जो टूट के बिखरे थे वो भी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे खैरात नहीं होती। हम इश्क में हारे थे, हम इश्क में हारे थे ये मान लिया था हमने, हम इश्क में हारे थे ये मान लिया था हमने, मगर माही हर हार इतनी आसान नहीं होती। और कुछ इश्क अधूरे रहकर भी मुकम्मल लगते हैं, कुछ इश्क अधूरे रहकर भी मुकम्मल लगते हैं, हर मोहब्बत की मंजिल आखिर मुलाकात
0: मुलाकात क्या बात। बहुत ही बढ़िया, लेकिन हमारी मुलाकात बैक टू बैक होती रहेगी। आप जब भी आपको लगे कि हमें कुछ स्पेशल सुनाना है और पूरी मुरादाबाद को सुनाना है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप बिल्कुल यहाँ पर पहुँच सकती हैं। स्टेशन आपको पता है, एड्रेस आपको बता ही दिया है राघव जी, तो अब तो आप डेफिनेटली पहुँच सकती हो। आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत ही मजा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी डेफिनेटली मजा आ रहा होगा, सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। राघव जी आप क्या सुनाना चाहेंगे?
2: एक पोइट्री पीस है, काफी टाइम मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद है, कि अपने दिल को और नहीं दुखाएंगे, अपने दिल को हम और नहीं दुखाएंगे, हम अपनी आंखों को दरिया नहीं बनाएंगे।
0: क्या बात है?
2: रोज दिन गिन गिन कर काट देंगे मगर तेरी तस्वीर को हाथ नहीं लगाएंगे।
0: क्या बात,
2: तेरी तस्वीर को हाथ नहीं लगाएंगे, शहर भर में तेरी जान पहचान हुई तो फिर किसी शख्स से ताल्लुक

0: बात नहीं बनाएंगे और दबी हुई बात में जुबान पर नहीं लाता, जा हम तेरे शौहर को कुछ नहीं बताएंगे, जा हम तेरे शौहर को कुछ नहीं बताएंगे।
1: बहुत ही बढ़िया,
0: बहुत शुक्रिया,
1: खूबसूरत यार।
2: पे एक लाइन में कहना चाहूंगा, किसी नए से मिलो तो मेरे बारे में तो बताओगे ना तुम, किसी नए से मिलो तो मेरे बारे में तो बताओगे ना तुम, अरे मुलाकात की बात छोड़ो मेरे मैयत पे तो आओगे ना।
1: कमाल कर दिया भाई, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। क्या शेरो शायरी करी है इन लोगों ने, मतलब बहुत ही मजा आया। मैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों ने सेशन किया। एंड गाइज, जाते जाते अगर कोई आपकी तरह ऐसे लिखना चाहता है जिसको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ कहाँ से शुरुआत, आप उसको क्या कहना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगे?
2: पहले तो मेरा टिप यही रहेगा कि आप जो भी फील कर रहे हो वो डायरी में लिखो। डज नॉट मैटर कि वो राइम कर रहा है या उसका मतलब किसी और को समझ आ रहा है कि नहीं, बस जो आपके दिल में आ रहा है वो आप पन्नों पे उतार दो। जरूरी नहीं है कि सही है कि नहीं है। और फिर जब आप उतार चुके हो तो उसे रीड करके एक बार समझो और उसे कोशिश करो कि आप फॉर्मेट में लाओ एक। तो आप जब पहले कुछ से शुरू करोगे ना तो उससे होते होते कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। तो मेरा सजेशन इतना ही रहेगा कि लिखो जो आप फील कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो, राइम अपने आप आ जाएगा वक्त के साथ।
1: क्या बात है, लिखने के साथ।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हीरो
1: फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: The impact of climate change,
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
0: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई है वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई है, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है, और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
5: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अगा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुत प्रशिक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी, दादी बोलती है तो दुनिया में सबसे अलग है।
4: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है कि तू क्या चीज है।

दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं।

0: नमस्कार मुरादाबाद, दिल से निकली है बात, दिल तक जरूर पहुंचेगी जनाब। स्वागत है आपका अपने ही शो दिल से दिल तक अखिल में। और अब आते हम हैं थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ी शायरी भरी और ढेर सारी हंसी की। अगर पहन नहीं रखी हो सीट बेल्ट तो पहन लीजिएगा सीट बेल्ट साहब, क्योंकि जाम जो है ना हर जगह मिलने वाला। जो भी जाम आपको कहीं दिख रहा है या कहीं गाड़ी कहीं गलत दिख रही है तो ज़रूर हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें 9837896896 पे। हमें हालचाल भी बताते रहें कि कहाँ ट्रैफिक रुका हुआ है और कहाँ बढ़िया करके चल रहा है। MDA हो, लाजपत नगर हो या फिर हो दिल्ली रोड, कहीं भी अगर आप निकले हुए हैं तो ज़रूर हमें अपडेट करें। तो आज कहते ना भाई साहब, पहले लोग कहते थे कि बेटा पढ़ाई कर लो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अब टेक्नोलॉजी कहती है कि पासवर्ड याद कर लो ज़िंदगी जो है ना और भी आसान हो जाएगी। एक पासवर्ड आपको मोबाइल का याद करना है, एक जीमेल का याद करना है और एक इंस्टाग्राम का। और हाँ जी साहब, अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो वो मकबूल करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक वाला पासवर्ड। और जो शादीशुदा लोग हैं उनको एक पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट याद करना पड़ता है, वो है बीवी के मुंह का। अगर आपको नहीं पता चला ना तो मत करिएगा मेहनत, क्योंकि AI भी अभी तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया। तकनीक ने दुनिया को पास ला दिया, एक बड़ी ऐसी शायरी इसी के ऊपर। तकनीक ने दुनिया को पास ला दिया, दूर बैठे इंसान को खास बना दिया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई यार, इतने सारे कॉन्टेक्ट्स के बाद भी दिल में अपना कौन है ये क्यों नहीं बता दिया। तो साहब कॉन्टेक्ट्स बहुत सारे हैं, कहीं होंगे 250 कहीं होंगे 300, मगर कुछ खास ही नंबर होंगे जब डायल करने वाले होते हैं ना, तो वही 3-4 नंबर डायल हो पाते होंगे, उसके बाद तो भाई साहब वो बाकी के नंबर तो सिर्फ नंबर ही रहा। तो चलिए इस गाने के बाद करेंगे खूब ढेर सारी दिल से दिल की बात। आप मिलाइए सिर्फ 9837896896।
1: ഞങ്ങളെല്ലാം ഡേഞ്ചറാണല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഡേഞ്ചറാണ്.

सीटी मार, बिल्कुल सही कहा जी साहब। अगर आप सीटी मारे तो देख के मारें और अपने वाले को ही मारें, इधर उधर ना मारें, और झप्पी तो आप मार ही सकते हैं। चलिए बताइएगा कौन मारता था सीटी। अगर आपको पता हो कि सीटी कौन मारता था तो ज़रूर हमें मैसेज करें और बताएं कि साहब ये सीटी तो ये मार रहा था। एक ज़माना था जहाँ जब किसी को फ़ोन करो तो एसटीडी बूथ ढूंढना पड़ता था, मगर आज मोबाइल हाथ में है ना तो प्रॉब्लम यह है कि सामने वाला फोन ही नहीं उठाता है। पहले तो चिट्ठी आती थी, प्रिय मित्र आशा है आप कुशल होंगे, ये लाइन तो सभी को याद रहेगी कि सब जैसी चिट्ठी पे आप सबसे पहले लिखें, सब्जेक्ट की जगह पहले ये लिख दें भाई साहब मुझे पूरी उम्मीद है आप कुशल मंगल ही होंगे, और आई व्हाट्सएप पे आ जाता है सिर्फ के, ओ के का भी सिर्फ के लिख देते हैं, हाँ जी भाई साहब आप सही हैं, यहीं पर पूरी फ्रेंडशिप आपकी खत्म हो जाए। तो आप बताइए जब सुबह उठते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना आपके दिन की शुरुआत नहीं हो सकती, चाहे वो ऐप ही क्यों ना हो कोई, या मोबाइल या गूगल या यूट्यूब या कोई यूपीआई या इंस्टाग्राम, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसके बिना आपकी शुरुआत दिन की नहीं हो सकती। हमें मैसेज करें और भेजिए 9837896896, पता चलेगा कि आप उठते हैं यूट्यूब से उठ रहे हैं या उठने के साथ ही पहले एक बार अपना इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं आज कितने लाइक आए या नहीं आए। एक शायरी मोबाइल के ऊपर, मोबाइल हाथ में आया तो दुनिया करीब लगने लगी, हर नोटिफिकेशन पर जिंदगी थोड़ी बिजी लगने लगी, पहले लोग हाल पूछते थे दिल से, अब पूछते ऑनलाइन क्यों नहीं थे भाई। हाँ साहब यही होता है, ऑनलाइन क्यों नहीं थे। चलिए हमारे साथ तो साहब ऑन एयर जाने के लिए सिर्फ आपको कॉल करनी पड़ती है, देखते हैं हमारे साथ कौन है लाइन पे। हेलो नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका सर, कैसे हैं आप? तो जरूर अपना नाम बताइए सभी श्रोताओं को, जो हमारे नए श्रोता हैं और सब सुन रहे हैं आपको, तो जरूर अपना नाम और बताइए किस जगह से।

0: बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया आपने। हमें पता चल गया आपका कि आपका जो ग्राम रामपुर है ना वो खतरनाक। तो क्या कर रहे हैं, मौसम कैसा है आपकी तरफ, छत पर हैं या कमरे में हैं?
1: इस टाइम तो मौसम बना हुआ है और लगता है 2:30 बजे फिर बारिश होगी।
0: तो आप जब तक 2:30 बजे तक बारिश नहीं होगी तब तक छत पे डटे रहेंगे? उन्हें नहीं पता भाई साहब, छत पे वो ऑन एयर पकड़ के एकदम ऑन एयर हुए पड़े हैं। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। और हमारे साथ साथ किसी और को भी आप डेडिकेट करना चाहते हैं तो जरूर बता दीजिए। ठीक है साहब, उम्मीद कामों तक भी ये खबर पहुंच गई होगी और अच्छा लगा आपकी कॉल आई। और कल ठीक इसी समय आपके फिर से हम याद करेंगे 9 से 10 वाले अपने शो में। तब तक आपकी ये फरमाइश ये वाली पूरी करते हैं। नमस्कार। तो इसे जी छत पर बैठे हुए हवा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि एफएम की जो खबरें हैं ना, जो बातें हैं ना, मैं ऑन एयर ही पकड़ लेता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, आजकल तो बच्चे भी इतने स्मार्ट हैं कि मम्मी कहती हैं बेटा पढ़ाई कर लो, तो बच्चा कहता है मम्मी चैट GPT से नोट्स बनवा लिए हैं। तो मम्मी कहती है तो पढ़े, बच्चा कहता है नहीं चैट GPT को भी पढ़ना पड़ेगा। बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं आएंगे आपके पकड़ में। तो चलिए तब तक ईश्वर जी का ये गाना सुनते हैं। कभी कभी कुछ जोक ऐसे होते हैं जिस पर आप ही को हंसना पड़ता है, हंस लीजिए, कभी कभी मुस्कुरा लीजिए। और करते हैं इस गाने के बाद 9 8 9 6 8 9 6।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89 पे। तुम भी बहुत धोखेबाज हो, कभी कभी वादा करके भूल जाते हो साहब। गोविंदा जी की जो जिंदगी है ना, इस समय सेम ऐसी चल रही है, इसी गाने की तरह चल रही है। जैसे इस गाने के अंदर है, सेम आजकल वैसी ही चल रहा है। कभी यहाँ, कभी थाईलैंड, कभी कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हैं गोविंदा जी। चलिए छोड़िए, अपन तो मुरादाबाद में ही रहने वाले हैं, मुरादाबाद की ही गलियों में घूमते रहेंगे। अपने नए लिसनर से बात करते हैं, देखिए वो कहाँ पर हैं और क्या बात लेके आए हमारे लिए। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: हनुमान मूर्ति मुरादाबाद
0: रोहित जी, क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं सीसीटीवी कैमरे का काम करता
0: अरे सर, मतलब आप सब पे नजर रखते हैं।
1: हूँ। बिल्कुल
0: तो रोहित जी, आज कैसा मौसम है, कैसा चल रहा है आज का दिन, क्या क्या क्या मस्ती हुई आपके साथ?
1: सर, मौसम भी बहुत बढ़िया है और आज काम करने के लिए हम इधर साइट से गए थे गजरोला। एक मन्नत होटल बन रहा है न्यू टूल डेस्क के पास में,
0: कहाँ पे? अच्छा,
1: जो है टूल डेस्क के पास में न्यू होटल बन रहा है मन्नत के नाम से, होटल मन्नत, तो वहाँ साइट विजिट के लिए गए थे। हाँ
0: तो वहां पे भी आपकी नजर है मतलब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मौसम बहुत बढ़िया था आज का।
0: नहीं, बहुत ही बढ़िया है। और मौसम तो साहब अभी पूरे महीने ऐसे ही रहना है, कभी आगे कभी पीछे, कभी भीगते हुए रहना ही रहना।
1: बिल्कुल सर, सावन के महीने में बरसात ना हो तो मजा नहीं आता।
0: बिल्कुल सही। तो सुबह सुबह उठने के बाद जब आप मोबाइल अपना खोलते हैं, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक? सच सच
1: बिल्कुल सर,
0: बोलना, सच
1: इंस्टाग्राम
0: सच बोलना रोहित जी, बात मत घुमाना। बिल्कुल सच बताना, ऐसा नहीं कि कोई सुन रहा है तो वो कह रहे यार रोहित तुमने यहाँ पे ही बात घुमा दी।
1: इंस्टा चलाता नहीं हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप पे ही ज्यादा देखता रहता हूँ कि स्टेटस क्या चल, क्या
0: तो अभी आपका
1: प्रोग्रेस
0: क्या
1: चल रहा है
0: स्टेटस है
1: क्या।
0: व्हाट्सएप पे, मैरिड है अनमैरिड है?
1: नहीं अनमैरिड हूँ मैं तो फिलहाल सर,
0: फिलहाल मैरिड है।
1: अनमैरिड।
0: अच्छा, चलिए साहब, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है। फिलहाल मैरिड भी फिलहाल हो जाता है और अनमैरिड तो फिलहाल रहता ही रहता है।
1: हाँ सही बात,
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और किसे डेडिकेट करना चाहेंगे, और कोई शायरी हो, क्योंकि आप फिलहाल वाले हैं तो कोई ना कोई तो शायरी आपके साथ चल ही रही होगी, तो कुछ ना कुछ शायरी बताइए।
1: पहले तो सॉन्ग मेरा है राजेंद्रसानी का टाइगर सॉन्ग,
0: ठीक है साहब, ज़रूर।
1: और एक अपना एक प्रिय मित्र या दोस्त या लाइफ में जो आया वो चला गया, अब नहीं है, बट उसके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ।
0: ज़रूर ज़रूर।
1: आज लिखने का बड़ा मन है मगर क्या लिखूं, टूटे हुए सपने लिखूं या बिखरे हुए ख्वाब लिखूं, जो अपने होकर भी अपने ना रहे उन रिश्तों का क्या हिसाब लिखूं, या फिर उन खामोश रातों का जिनमें खुद से ही की गई बातचीत लिखूं, जो दर्द किसी को बता ना सका वो दर्द लिखूं, या चेहरे पर लगी उस मुस्कान का जिसके पीछे छुपी पूरी बरसात लिखूं।
0: क्या बात है रोहित जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों का आपने इसमें शायरी में इतना अच्छे से प्रयोगाया है कि मज़ा आ गया। चलिए
1: थैंक यू सर।
0: रोहित जी, आपका एक गाना प्ले करते हैं और आप जो हैं फ़िलहाल क्या कहते हैं, सब पे नज़र रखें अपनी, और जहाँ जहाँ इंस्टॉलेशन हो बताते रहें हमें।
1: ओके ओके ओके सर,
0: ओके
1: थैंक यू।
0: सर। तो श्रोताओ, ये थे हमारे रोहित जी जो करते हैं सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम। अगर आपको भी करवाना हो कहीं सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, तो पकड़िए इन्हें, रोहित जी को, बहुत बढ़िया करके आजकल साइट चल रही है इनकी गजरौला के पास, तो कभी भी इनको पकड़ सकते हैं आप। अभी कहते हैं ना कि इंडिया की टेक्नोलॉजी जो है, जो स्टोरी है, सिर्फ स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं रह गई है। आजकल इंडिया का जो स्पेस टेक है, बेंगलुरु की स्पेस टेक कंपनी है डिजिंत्रा AI पावर्ड ऑप्टिकल सेंसर्स के जरिए इन्होंने ऑर्बिट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स और स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। यानी ऊपर आसमान में क्या घूम रहा है ना, उस पर भी हमारी नज़र है साहब। भारतीय है ना, छोड़ेंगे नहीं साहब, ज़मीन के अंदर भी और आसमान के ऊपर भी। तो सोचिए, हमारे दादा दादी कहते थे ना, आसमान में क्या हो रहा है कौन जाने। तो आज का इंडिया कह रहा है रुको जी, सैटेलाइट डेटा अभी निकालते हैं और बताते हैं। तो चलिए, जब तक रोहित जी का एक गाना एंजॉय करते हैं और खूब सारी दिल की बातें करेंगे आपके साथ भी, 9837896896 पे बताइए और मैसेज करिए। क्या खुलता है सबसे पहले भाई साहब, फेसबुक या इंस्टाग्राम? और इन दोनों में से कुछ भी नहीं खुलता है तो मोबाइल में व्हाट्सएप तो है ही आपके। क्या पता वही सारी स्टोरी पता चल जाती होगी, सुबह सुबह दूसरे की स्टोरी देख के पता चल जाता कि पूरा दिन कैसे जाने वाला है। तो चलिए मैसेज करिए 9837896896 पे, तब तक राजा हिंदुस्तानी से करते हैं थोड़ी बातें।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, और खूब सारी मस्ती चल रही है। साफ पता चल रहा है किसके यहाँ पे मोबाइल सुबह सुबह खुलता है, क्या होता है, व्हाट्सएप आता है। मेरे पास एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे ही, कहते हैं सूरत के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, आपकी याद के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। क्या बात है साहब, प्लीज़ प्लीज़ हमारा गाना प्ले कर दिएगा। साहब आपने अपना गाना तो सुन ही लिया होगा, नाम है आपका शंकर लाल यादव जी, निरांशी यादव, नमन यादव, अमित यादव, ऋतु यादव, लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराया। और कहते हैं ना साहब, जब आप पूरा अपना नाम लिखते हैं, पूरा एड्रेस लिखते हैं, पता चल जाता है कि आप सच में हमारे पक्के वाले एकदम एक्यूरेट लिसनर हैं, और हमें अच्छा भी लगता है। कहते हैं कि AI के कारण नई तरह की जॉब्स भी बन रही हैं और कई रूटीन टास्क भी बदल रहे हैं, इसलिए आज का गोल्डन रूल भाई साहब यही है कि AI से डरना नहीं है अपन लोगों को, AI से ना सीखना है कुछ, और AI को ही सीख डालो भाई साहब, क्योंकि अगर AI को एक बार सीख लिया ना तो कई सारी चीज़ें आपकी खुद आसान हो जाएंगी। आने वाला समय शायद ये नहीं पूछेगा आपसे कि आप AI यूज़ करते हैं या नहीं, बल्कि ये पूछेगा आपसे कि आप AI को कितना स्मार्टली यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो और गैजेट्स की बात ही ना हो तो ऐसे कैसा हो सकता है। आजकल जो फ़ोन में कैमरा इतना पावरफुल है कि हमारी शक्ल देखकर फ़ोन खुद ही पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू टेक दिस फोटो। हाँ जी साहब, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपके हैप्पी और सैड मोमेंट्स को वो खुद ही पकड़ लेता है। रियलमी ने 6500 mAh बैटरी वाला एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, और जियो ने जियो AX 3000 यूनिवर्सल वाईफाई राउटर पेश किया है भाई साहब। रेड MI ने नोट 17 प्रो मैक्स 5G को 27 अगस्त को लॉन्च किए जाने की रिपोर्ट की है, जिसमें 10,000 mAh बैटरी और 200 megapixel कैमरा जैसे फीचर्स बताए गए हैं। तो भाई साहब अब 10,000 mAh की बैटरी भी आ गई है, अभी तक हम 6,500 और 7,000 mAh की बैटरी सुन रहे थे, 10,000 mAh की बैटरी भी आ गई। मतलब फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने से पहले शायद इंसान थक जाएगा, मगर ये फ़ोन नहीं थकने वाला साहब। चलिए करते हैं अपने नए लिसनर से बात, देखते हैं वो अभी तक थके या नहीं थके। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, आप सुनाइए सर।
0: क्या कर रहे हैं सर आप जेठालाल जी इस समय?
1: हम सर 2500 सेकंड से आपको फ़ोन लगा रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा था।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो श्रोताओं को, हमारे जो श्रोता जो हमसे आज जुड़े हैं, उनके उनको अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से बोल रहे हैं, पूरा नाम क्या है आपका?
1: रणवीर सिंह जेठालाल।
0: तो रणवीर सिंह जी, आज कैसा मौसम हो रहा है आपकी तरफ?
1: हम तो कहीं दूर रह रहे हैं, तो हमारे तो मौसम सही हो रहा है, आपकी तरफ मौसम सही नहीं हो रहा है लग रहा मुझे।
0: तभी तो हम पूछ रहे हैं साहब, मौसम क्या है आजकल? जो है ना बादल जो है ना छत देख के फट रहा है साहब, कि इस छत पे ज्यादा सूखापन है या ज्यादा कपड़े यहीं पे लग रहे हैं छत के ऊपर, तो चलो आज यहीं इन्हें गीला कर देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप, क्या फरमाइश है आपकी?
1: सोनू निगम जी की आवाज है, वो आसमान वाले जमी पे उतर के
0: कि मेरी छत पे कितना पानी भरा है या नहीं।
1: अरे भाई भाई भाई भाई, क्या बात है, आपके तो मुंह में हर घी शक्कर हो, जो जो कुछ सब नहीं मेरे पास।
0: हाँ साहब, आप धन्यवाद, आपने घी शक्कर खिला दिया है, मैं तो सोचा था गेवर लेके आएंगे, अब इस समय गेवर का मौसम चल रहा है साहब। चलिए चलिए, अभी तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में गेवर खिला दीजिए, समझ लीजिए हमने खा लिया है।
1: अच्छा,
0: तो बहुत अच्छा लगा आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे शेर, अच्छा शेर, यहाँ वैसे इतने शेर घूम रहे हैं इस समय मुरादाबाद में आसपास, तेंदुए, आप जरूर अपना शेर सुनाइए सर एक।
1: नहीं
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सर, अब आपने बोला है तो जरूर सुनेंगे सर।
1: रोना पड़ता है एक दिन मुस्कुराने के बाद।
0: क्या बात है।
1: रोना पड़ता है एक दिन मुस्कुराने के बाद, याद आते हैं वो सब दूर जाने के बाद।
0: बहुत खूब।
1: याद आते हैं वो सब दूर जाने के बाद, दिल तो दुखता है उस शख्स के लिए, दिल तो दुखता है उस इंसान के लिए जो अपना ना हुआ इतनी मोहब्बत जताने के
0: द्वारा। क्या बात कही साहब, आपने बहुत ही सटीक बात बोल दी अपनी बातों में, और आपका और आपने जो इतनी शेर इतना बढ़िया छोड़ा है आपने, मैं इस शेर को अपने पिंजरे में ज़रूर बंद करके रखूँगा सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बहुत अच्छा लगा जेठालाल जी आपसे जुड़ के, रणवीर जी, और बढ़िया एकदम मस्त रहें, खुश
1: अच्छा,
0: रहें।
1: आपको अच्छा लगा, हम अच्छा नहीं लगा,
0: अरे सर हमें पूरी
1: अच्छा
0: पूरी
1: लगा,
0: उम्मीद है
1: अच्छा
0: आपको
1: लगा,
0: अच्छा लगा होगा, पूरा पूरा,
1: बिल्कुल
0: और ये गाना
1: बिल्कुल
0: सुन के आपको और भी अच्छा लगेगा।
1: भाई वाह, क्या बात है क्या बात है, शुभ
0: धन्यवाद
1: रात्रि।
0: सर, शुभ रात्रि। तो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे हंसी मजाक के, कहते हैं ना एकदम पोटली लेके आते हैं अपने साथ, रणवीर जी, जेठा लाल जी जिन्हें प्यार से बोलते हैं, तो उनकी फरमाइश आई है, उनकी फरमाइश का एक गाना ज़रूर हम प्ले करेंगे। और उससे पहले हम कह दें कि हमारे पास एक लिसनर का हमारे मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि सर लोको शेड फ्लाईओवर के पास थोड़ा सा जाम है मगर निकल जाएगी आपकी गाड़ी। तो धन्यवाद अमित कुमार जी, आपने इतना अच्छा मैसेज किया, हमें बताया कि हाँ लोको शेड फ्लाईओवर के पास थोड़ा बहुत जाम है मगर गाड़ी ज़्यादा देर नहीं फंसेगी। तो जो भी वहाँ से गुजर रहा है या गुजरने वाला है अपने हिसाब से आगे पीछे हो जाए तो मैनेज कर ले साहब, फ़ोन पे बोल दे जी मैं 10 मिनट लेट आऊँगा, पता चल गया नहीं पता चल गया, क्योंकि FM पे पता चल गया कि वहाँ पे थोड़ा सा जाम है। तो करते हैं इस गाने के बाद एक बार फिर लास्ट कॉल लेंगे, खूब मजे वाली बातें करेंगे 9837896896 पे।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: इस वाले मोबाइल पे नहीं होगा, आपका पेटीएम दूसरे मोबाइल पे चल रहा होगा। तो साफ पता रहता है सबको कि जो जो रख रहे हैं ना, दो दो मोबाइल कभी कभी हो जाते हैं कन्फ्यूज, कर देते हैं किसी दूसरे मोबाइल से स्कैन, मगर असली पैसा जो होता है वो तो होता है दूसरे मोबाइल में। हमारे पास हमारे एक लिसनर का मैसेज आया है, वो कहते हैं मेरे लिए टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है गूगल मैप। क्या बात है साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो रास्ता पूछ लो कि भैया स्टेशन किधर है, सामने वाला कहता है सीधे जाओ जी, फिर वहाँ से जहाँ मंदिर आ जाए वहाँ से लेफ्ट हो जाओ, एक पेड़ आएगा और बस गूगल मैप आपको घुमाता रह जाएगा। तो कभी कभी हो जाता है। इस गूगल मैप से मुझे कहानी किस्सा याद आया कि एक बार एक दो दोस्त अपने ट्रैवल कर रहे थे गूगल मैप के थ्रू, और कोई फ्लाईओवर बनना था जो कि पूरा नहीं बना हुआ था, और भाई साहब चढ़ गए उस फ्लाईओवर पर, पता नहीं चला बीच में से गाड़ी कर गई जंप। कभी कभी साहब आप भी बहुत ही सावधानी से करें इस्तेमाल इस गूगल मैप का। सारी ही चीज़ें जो है ना कभी कभी बिल्कुल सही नहीं होती हैं, कोई एकाध चीज़ ऐसी आपके पल्ले पड़ जाती है जहाँ पता नहीं चलता और आप उसके भरोसे चलते हैं, जंगलों में चले जाते हैं साहब, कोई ना कोई जरूर आपके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी की कहानी तो ज़रूर होगी। गूगल मैप यूज़ करते करते स्कूटी से घूम गए पूरा बाजार मगर नहीं पहुँच पाए एग्जैक्ट लोकेशन। तो चलिए करते हैं अपने नए लिसनर से बात, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं आज। हेलो दिल से दिल तक अखिल संघ, क्या नाम है आपका साहब? नमस्कार जी, आपकी आवाज़ बड़ी दबी दबी से आ रही है, कहाँ ज़्यादा बरसात हो गई क्या?
1: नहीं, बारिश तो खैर हुई थी और अभी हल्की बूंदाबांदी अभी हुई है।
0: ओके, तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सिद्दीकी साहब, कैसा मौसम है इस समय आपकी तरफ अमरोहा में? तो क्या काम करते हैं सिद्दीकी जी आप? चांदी के वर्क का एक गाना भी तो है, चांदी जैसा कुछ है ऐसी कुछ। हाँ, बिल्कुल सही, क्या बात पकड़ी है साहब, वो कि लोग एकदम बात पकड़ लेते हैं, ये बात पकड़। जुड़वा मूवी का कौन सा? सोना चांदी। चलिए चलिए कोई बात नहीं साहब, याद आ जाएंगे आपको। आपकी एनिवर्सरी कब होती है, शादी हो चुकी है आपकी? तो वो तो याद है आपको डेट, या वो भी आप अभी ये कह सकते हैं कि भाई साहब मुझे याद नहीं आ रही इस वक्त पे? साहब उसे जरूर याद रखिएगा, पता चला फिर आज का खाना भी आपका गाला मुंह ले लिया। खाना खाने के बाद भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, खाना खाने से पहले मत भूलना, है ना? तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप, क्या फरमाइश आपकी? क्या बात है साहब, क्या बात है, आप अभी भी जो है बिल्कुल फिराक में हैं। मुझे लगता है शादी को ज्यादा साल नहीं हुए आपकी। चलिए साहब ये रखेंगे सीक्रेट, क्योंकि हमें भी पार्टी लेनी है आपसे जब कभी आपकी होगी अगली बार। तो पता चला साहब आया ही नहीं मुझे। जरूर साहब, जरूर जरूर, तो जरूर आपका ये गाना प्ले करते हैं, बहुत अच्छा लगा सिद्दीकी जी आप जुड़े और अपने सारी ऐसी मजाक कर लेता। धन्यवाद। श्रोताओं हमारे साथ अमरोह से जुड़े थे सिद्दीकी साहब और कह रहे थे गाना कि गोरी कब से हुई जवान, तो जरूर उन्हें बताएंगे गोरी कब से हुई जवान। चलते हैं अब, क्योंकि अब हमें आना है कल की 9 से 10, खूब सारी होनी है बातें। और जाने से पहले एक शायरी तो आप सभी के लिए कहते जाएंगे। कभी खतों में महीने तक मोहब्बत रहती थी, कभी खतों में महीनों तक मोहब्बत रहती थी, आज मैसेज में 2 मिनट की नाराजगी है। तकनीक ने दूरी तो मिटा दी लोगों की, मगर दिलों की दूरी अभी भी बाकी है। तो साहब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, बिल्कुल सोच समझ के इस्तेमाल करना।

मगर अपने रिश्तों में ह्यूमन टच देना मत भूलिएगा, क्योंकि ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी वाला टच तो चलता ही रहेगा यार, ये तो हमें करना ही है, इसके साथ तो चलना ही, मगर जो मज़ा ह्यूमन टच का है ना, साहब हाथ पकड़ के चलो भाई, आज मेरे साथ चलना भाई, आज तो हमें खाने में बताशे, तो साहब ये इसकी तो बात ही तो चल कोई नहीं। आप लोगों से होगी फिर कल मुलाकात। इस गाने के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त, कि कल फिर मिलें आपसे 9 से 11 खूब सारी गुफ्तगू। अगर आपको भी करनी हो ऐसी तो 9837896896 आप ही के लिए है सरकार, और कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.

0: You are listening to Coke Studio Pakistan on Saavn.
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: लोग मुझसे कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, अच्छे लोगों से मिलोगे तो अच्छा ही लगेगा ना। हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। आनंद के साथ जुड़ चुके हैं एक और खूबसूरत से माहौल में, और ये माहौल आज का और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, और भी ज्यादा शायराना वाला जो ये माहौल है अब होने वाला है। और आज की जो ये अमेजिंग सी वाइब है, इसमें हम सिर्फ शायरी नहीं, बहुत सारी चीजें आज आपके लिए लेकर आए हैं। और एक बहुत ही कमाल के शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, गीत संगीत का सिलसिला भी चलेगा, और प्रोग्राम जो है ये और खूबसूरत हो ही जाता है जब ये जनाब हमारे बीच में आते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ, जरूर मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको इनकी बात या मेरी बात कुछ भी पसंद आए तो आप इस बीच हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 के शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो आइए सर का स्वागत करते हैं। सर, एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप?
3: धन्यवाद आनंद, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसा कि ये माहौल भी है, मौसम भी है।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: तो इसमें आपने मुझे याद किया, आपने मुझे अपना समय दिया। श्रोताओं के लिए मैं उनसे रूबरू होने का मेरा सौभाग्य मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है।
2: क्या बात है, और आपने अपना नाम तो बता ही दिया होगा।
3: नाम तो कोई नया नहीं है,
2: लेकिन हमारे लिस्टनर को, हमारे जो लिस्टनर है ना, वो हर बार नए नए होते हैं।
3: जी, तो मेरा
2: पता तो होना चाहिए।
3: जी जी, मैं बता दूं, खाकसार को मनोज वर्मा मनु कहते हैं, आपके ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, और जैसा कि पहले भी ये बात हो चुकी है, शायरी में और कविता में दोनों में ही कुछ कहने की, कुछ सीखने रहना प्रयास रहता है।
2: बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है हर शायर के अंदर, हर कलाकार के अंदर ये खूबसूरत प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए, है ना?
3: जी,
2: आप जिस फील्ड में हैं, यहाँ पर हर दिन एक नई चीज, हर घंटे एक नई चीज जन्म लेती है।
3: नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये सृजन की बात है।
2: हाँ।
3: जैसे प्रकृति, जैसे नेचर अपने आप को क्षण क्षण चेंज करती है, वैसे ही जैसे जैसे प्लॉट मिलते हैं, वैसे वैसे एक कलाकार या एक लेखक या एक शायर या एक गीतकार वहां से उसे उस ऊपर वाले की नियामत से, जो माँ सरस्वती का वरद हस्त उसे प्राप्त होता है, उसके अनुकंपा जो उसे प्राप्त होती है, तो उससे वो बनाता है।
2: क्या बात है, इतनी शुद्ध हिंदी ये अगर बोलेंगे तो आज मैं अच्छा अनाउंसर बन ही जाऊंगा। मतलब इतनी अच्छी हिंदी तो मैंने पढ़ी नहीं, जितनी आज मैं सीख रहा हूँ।
3: आप ऑलरेडी बहुत अच्छे अनाउंसर हैं।
2: आपसे बात करके मुझे एक चीज लगती है साहब की, मतलब ऐसे लगता है मैं किसी प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ, साक्षात कोई मेरे साथ मेरा रेडियो साथी बैठा है, क्योंकि आप इतने अच्छे से शब्दों का उच्चारण करते हैं, इतनी बढ़िया वॉइस क्वालिटी है, तो वो थोड़ा सा एक फील हो जाता है मुझे। चलिए आज आपको बताइए,
3: आनंद जी आपकी ये जर्रा नवाजी है,
2: ये तो सर
3: वरना हम इस काबिल कहां।
2: सर ये तो आपका प्यार है,
3: लेकिन ये है कि चूंकि मामला चाहे आपका है या हमारा है,
2: जी जी,
3: उसमें शब्दों से जुड़ा है।
2: बिल्कुल,
3: तो अधिकतर ये कोशिश रहती है कि प्रोनाउंसिएशन उसका सही हो सके, जहां हम अपने उस शब्द को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो उस एनवायरमेंट में बैठने लायक हो, उस बात को अपनी अदा करने लायक हो, तो बस यही हमारी सफलता होती है।
2: यही चीजें सीखने सिखाने में बहुत आनंद आता है आनंद को, और जब ऐसे अच्छे लोग आते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। तो लिसनर, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुन के वापस आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए,

0: तो वेलकम बैक एक बार फिर से मनु जी, मैं आपकी तरफ सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब भी आप स्टूडियो में आते हैं तो आपको यहाँ का वातावरण कैसे लगता है? बाहर निकलने के बाद एक अलग माहौल होता है, स्टूडियो में आने के बाद, माइक के पास करीब आने के बाद आपको कैसा लगता है?
1: जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी एग्जाम हॉल में कोई विद्यार्थी परीक्षाएं देने जाता है।
0: अरे वाह, क्या बात है। लेकिन आपके दिल के करीब है ना, क्योंकि इन सब चीजों से तो आपका जुड़ाव पहले से ही रहा होगा, आई एम श्योर।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल क्या है कि यही तो हमारी जान भी होती है।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: ये जो माइक है, ये जो श्रोताएं हैं, तो इसके बिना तो कोई रचनाकार कुछ नहीं है, कोई कलाकार कुछ नहीं है।
0: क्या बात है,
1: उसकी जो जान बसती है वो उसके श्रोताओं में बसती है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो डर भी कि हम अपने श्रोताओं को अच्छे से अच्छा दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें, बस यही चीज है।
0: कई मर्तबा हमने इनसे बात करने का प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया कनेक्शन। फाइनली जैसे तैसे बातचीत करके आज हमने इनको बुला ही लिया। उपस्थिति तो कल ही थी लेकिन किसी कारणवश कल हो नहीं पाए, कल ये बारिश में कहीं भीग गए, क्योंकि आजकल मौसम भी सुहाना हो रहा है। मुरादाबाद की बारिश ऐसी है पता ही नहीं चलता है कब आ जाती है साहब।
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: सुबह में धूप है तो शाम में बारिश है।
1: आजकल मौसम इसी तरह से मेहरबान है।
0: मैंने आज आपको बुलाया, आप समझ रहे ना मेरा इशारा, आज हम अपने श्रोताओं को कुछ नया देने वाले। मौसम इतना खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है और मतलब बारिश की जो बूंदे है वो कहीं ना कहीं एक शायर के मन के हिसाब से देखा जाए तो कैसी होनी चाहिए, क्या कहता है एक शायर इस मौसम में, क्योंकि हर एक मौसम का अपना एक लहजा होता है सर, है ना, अपना एक मजा होता है हर एक मौसम का।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही।
0: देखते हैं मनु जी क्या इस पे आपको बताने वाले हैं आज।
1: नहीं बात सही है आपकी, देखिए बारिश का जो मौसम है ये अपने आप में क्या क्या समेटे हुए है, अब मैं क्या बताऊं। दरअसल क्या होता है कि बारिश के इस मौसम में जिसके साथ जो बीती होती है वो वही अनुभव करता है।
0: बिल्कुल सही बात।
1: अगर बात नायक और नायिका से कही जाए तो जिनको अपने साथी की कुर्बत, जिनको सानिध्य हासिल होता है, वो उसी तरह से यहाँ पर प्रफुल्लित होते हैं, और जो जुदाई में होते हैं वो वैसे ही बेचैन हो जाते हैं। और अगर हम सोचें कि इसका जो वास्तविक मतलब है, तो एक किसान आंख उठा के ऊपर देखता है कि कब ऊपर से बारिश बरसेगी और कब मेरी धरती सोना उगलेगी। तो ये मौसम हर किसी के लिए अपने अलग अलग मानी रखता है, हम शायरों के लिए भी, हम रचनाकारों के लिए भी ये उसी तरह से है।
0: क्या बात है। और उन्हीं में से एक रचनाकार मनु जी हैं, इनके जो शब्द हैं वैसे सर करके बाहर निकल रहे हैं मोतियों की माला की तरह, एकदम एकदम सही फ्लो में और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यही खूबसूरती होनी भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, गाने का हो, सुनाने का हो, चाहे बोलने का हो, क्योंकि हर किसी में हर एक कला नहीं होती सर, राइट।
1: बिल्कुल,
0: हर किसी की कला बहुत अलग है, हम किसी को जज भी नहीं कर सकते हैं। हर किसी के बोलने का तरीका अलग है, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप पूरी एक पूरी डायरी लेकर आए हैं और बड़ी खूबसूरत लाइनों में आपने कुछ लिखे हुआ है, तो ये आप खुलते हैं?
1: हाँ,
0: राइटिंग तो बड़ी प्यारी है सर आपकी, सर्दी में डायरी देख रहा हूँ, बड़ी सुंदर सी क्यूट सी लिख के लेकर आए हैं और काफी पुरानी भी लग रही है मुझे।
1: माँ सरस्वती की कृपा है जो शब्द उतरते हैं,
0: ये पुरानी डायरी है, जरा ये बताए आप लिसनर को।
1: ये सिलसिला तो चलता रहता है असल से।
0: क्या, अरे क्या बात है दोस्तों, आपको हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन करा सकते हैं। आप महसूस कर पा रहे होंगे हमारी इन बातों से कि हम अभी डायरी खोल रहे हैं और डायरी में जो लिखावट है वो शायद आप महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि एक शायर की कलम से जब बातें निकलती है ना तो वो सिर्फ बातें नहीं होती है, उसमें एक जज्बात होते हैं, राइट, उसमें इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती है।
1: बेशक, अगर ये इमोशंस ना होते तो शायद शायर ना होते।
0: क्या बात, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं। और अभी तो सिर्फ हमारी बातें हुई हैं, अब सिलसिला शुरू होगा, तो सिलसिले से पहले एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे और कुछ मनु जी से बेहतर सुनेंगे। आज मौसम इतना अच्छा है, मौका इतना बढ़िया है, सब कुछ तो हमारे आसपास है, तो इसको और ज्यादा इंजॉय करेंगे। आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही जुड़े रहिए, सुन रहिए FM मुरादाबाद 89.6 RJ आनंद के साथ।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो, आपका अपना फेवरेट देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद, और हमारे साथ मनु जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। ढेर सारी बातें कर रहे हैं। शायद मैं इनका नाम थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट नाम मुझे भी अच्छा लगता है। सर का भी शायद ये प्यारा सा शॉर्ट वाला नेम है, इसको हम ले सकते हैं ना?
1: इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ये मेरा उपनाम है, इसी से मेरे रचनाकार हूं, क्या पता चलता है।
0: तो बहुत सारे ऐसे आपके श्रोता और साथी हैं जो आपकी आवाज सुनकर आपका चेहरा इमेजिन कर रहे होंगे, अच्छा ये वही मनु जी हैं जो हमेशा मुस्कान लिए घूमते रहते हैं, जब भी इन्हें मिलो मुस्कुराते हुए मिलते हैं,
1: आप कह सकते हैं।
0: तो अभी जो है हम चाहेंगे सर, अभी आप मुझे ऑफ एयर कोई गीत सुना रहे थे, उसकी दो लाइनें अगर हमारे श्रोताओं के लिए हो जाएं। मौसम इतना अच्छा है, मॉनसून भी कहीं ना कहीं दस्तक दे ही चुका है अब।
1: बिल्कुल, बल्कि अपने शबाब पर है इस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: आपने गीत की बात रखी है तो मौसम से ही मुताल्लिक मैं एक गीत रखता हूं आपके सामने।
0: जरूर,
1: और बल्कि उसे अपने श्रोताओं के लिए गुनगुनाने की भी कोशिश करता हूं। ये एक देखना है कि मैं कहां तक सफल हो सकता हूं।
0: अरे वाह।
1: मौसम बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुशनसीब हूं कि उसके करीब हूं, मैं कितना खुश नसीब हूँ। मौसम में बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ। अब गीत अपने अंतरों में चलता है।
0: जी।
1: मैंने जिसे प्यार किया, प्यार का इजहार किया, उसने भी प्यार से मेरे प्यार का इकरार किया।
0: वाह।
1: मैंने जिसे प्यार किया, प्यार का इजहार किया, उसने भी प्यार से इस प्यार का इकरार किया। आज

0: वो इसे अपने ही परिवेश में अपने ही तरीके से इसका आस्वादन करे, इसको महसूस करे, इसे फील करे, तब उसका एक मजा अलग होता है और वो गीत सार्थक होता है। जाहिर सी बात है, मौसम में बरसात है, बरसात का जो मौसम है तो इसमें नायक और नायिकाओं की जो स्थिति होती है उसके दो ही पहलू होते हैं, या तो संयोग या वियोग, या तो मिलन या जुदाई। तो सबका अपना अपना मजा भी है और ये गीत भी उन्हीं कड़ियों को लेकर के चलता है। आप ये समझिए कि बस ये आगे चलता रहेगा और चीजें खुलती रहेगी।
1: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन सर एक चीज तो आपने बड़ी अच्छी बोली इस पूरे में, जो मुझे भी मैंने नोट करी कि जैसे आपने बताया ना कि जो एक रचनाकार होता है वो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है।
0: बिल्कुल,
1: वैसे
0: बिल्कुल
1: ही कोई अनाउंसर है, उद्घोषक है, कोई एक्टर है, वो किसी एक का नहीं होता, वो सबके लिए होता है। क्योंकि वो कोई भी बात अगर बोल रहा है तो वो किसी एक के लिए नहीं बोल रहा, वो सबके लिए बोल रहा है। कोई रचनाकार अगर कोई रचना लिख रहा है तो उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो हर एक सुनने वालों को लगेगा कि वो मेरे लिए है, है ना।
0: बिल्कुल,
1: वो फील और वो मैजिक आपकी उस शब्दों में होना चाहिए, उस रचना में होना चाहिए कि जो उसे पढ़े सुने उसको ऐसा महसूस हो कि तो मेरे लिए लिखा है मनु जी ने, तभी वो सक्सेसफुल भी हो,
0: तभी उसके सार्थकता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि ये हर कला के क्षेत्र में ऐसा है।
1: जी जी,
0: क्योंकि जब ऊपर वाला किसी बंदे को किसी कला से किसी हुनर से नवाजता है,
1: जी जी,
0: तो जाहिर सी बात है कि वो फिर अपना अपने लिए नहीं रह जाता।
1: ये बिल्कुल सही बात है,
0: है ना। जैसे कि साहित्य की बात है, आप मुझे याद आता है मेरा नाम जोकर, आपने पिक्चर देखी होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी।
0: उसमें जो आदरणीय राज साहब ने, राज कपूर साहब ने जो अभिनय किया था, उस अभिनय में एक आपने देखा होगा कि उनकी अपनी माँ उस समय उस दुनिया में नहीं रही है और उन्हें अगला शो करना है जो पब्लिक के लिए करना है, तो उन्होंने उस अपनी उन भावनाओं को भी दरकिनार करते हुए जो उनके श्रोता थे, जो उनके दर्शक थे, उसके लिए अपना समर्पित हो करके पूरा अपना प्रोग्राम दिया।
1: ये तो खैर मैं यहाँ पे तो इस चीज को तो मैं भी अग्री करता हूँ कि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में भी चल रही होती हैं लेकिन हम सब वो गेट के बाहर ही छोड़ के अंदर आते हैं। ये बिल्कुल सच है। अभी भी मेरी लाइफ में, मैं हर इंसान अगर जीवन में आया तो उसकी जिंदगी में परेशानियां आना जेन्युइन है, बहुत नेचुरल सी बात है। इंसान है हम यार, यही तो है नहीं, है ना, हम कंप्यूटर तो है नहीं, जो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी सबकी जिंदगी में आती है। लेकिन जब हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, जब हमारे सर पे एक ठेकरा होता है कि भाई उसे अब हमें निभाना है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं।
0: नहीं सर, आप कह रहे हैं सही बात है, लेकिन बात यह है कि जो AI का आपने देखा होगा आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी इंसानों की तरह सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। वो फील कर रहा है कि वो अपनी बात को उन भावों के साथ रख सके जो उसका ओनर है।
1: लेकिन फिर भी सर इंसान तो इंसान ही होता है,
0: इंसान तो इंसान है,
1: जिसको ऊपर वाले ने बनाया है वो इंसान है, और जिस इंसान ने AI बनाया है भले वो इंसान का रूप ले ले लेकिन बनाया तो उसे भी इंसान ही है।
0: जी जी, इंसान बनाया और अशरफुल मखलूक कहा, यानी कि सभी जातियों में सबसे ऊपर बताया गया है उसे।
1: तो बस, तो यही तो हम आपसे सुनना चाह रहे थे। तो मनु जी की और मेरी बातों की जो ये चैन है वो लगातार जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरा नाम जोकर मूवी का नाम इन्होंने जिक्र किया, उस मूवी के बारे में राज कपूर साहब का जिक्र हुआ है, तो उन्हीं की फिल्म का एक बढ़िया सा गाना, कोई गाना जो आपके जहन में हो मेरा नाम जोकर।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
6: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
5: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
6: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
5: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258।

0: 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं। और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलाना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं। और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण

0: को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहीं और मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसमें महिला स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी, उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भाभी ये अभियान क्यों आरंभ किया जा रहा है?
2: देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान देगा। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण, स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
1: भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बताइए कि इन शिविर में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी?
2: देखिए, इन शिविर में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जाँच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी अनीमिया की जांच भी की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
1: शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी क्या?
2: हाँ बिल्कुल, यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चों की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी, साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीका लगवा दिया जाएगा तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
1: भाभी, ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
2: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तेल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तेल कम खाएं, सब्जी, दाल, हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
1: भाभी, पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है, बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
2: देखिए, छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जियां, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में रहेगा। बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जियाँ, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहाँ बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहाँ उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
2: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
1: तो भाभी, सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
2: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
1: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
2: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ना पानी, ना शहद, ना दाल, ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
1: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
2: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल, मैश करके खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
1: यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
2: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
2: देखिए, बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दें तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को 2 गुना सहारा मिलता है।
1: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
2: बहुत आसान है। बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें। इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
2: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
1: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
2: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर है। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
1: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
2: फायदा सीधा है। स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गाँव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र किया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
2: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकत्र क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
1: और डिजिटलकरण क्या होता है?
2: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
2: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
1: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान, आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
1: दोस्तों, आज के सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं,
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
1: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत से ही लाभ कई प्रोग्राम में दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक विशेष खास मुद्दे पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत से ही लाभ कई के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।